शुभ सवेरा, नमस्कार। ₹90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं सुनीता सिंह, अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज मंगलवार है। विक्रम संवत 2083 के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि और शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 सितंबर सन 2026। इस समय 7:04 और 25 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आप सभी के लिए आज का दिन मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज 22 सितंबर है। आज हमारी जो प्रातःकालीन प्रसारण सभा है उसमें क्या कुछ लेकर हम हाजिर हुए हैं इसकी जानकारी तो आपको हम देंगे ही। उसके पहले आज के दिन की बात करते हैं, आज की तारीख की बात करते हैं। 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गैंडों की पांचों प्रजातियों के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने मौजूद खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। ये दिवस सन 2011 से मनाया जा रहा है। आपको हम बता दें श्रोताओं कि गैंडा पृथ्वी के सबसे प्राचीन जीवों में से एक है। माना जाता है कि गैंडे लगभग 5 करोड़ वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। आज दुनिया में गैंडों की कुल संख्या 27,000 से भी कम रह गई है और 5 में से 4 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनकी 5 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? भारतीय या एक सींग वाला गैंडा, दूसरी प्रजाति है जावा गैंडा, तीसरी प्रजाति है सुमात्राई गैंडा, चौथी प्रजाति काला गैंडा और 5वीं प्रजाति है सफ़ेद गैंडा। गैंडों के सामने सबसे बड़े खतरे में अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास का नष्ट होना शामिल है। गैंडे के सींग के लिए होने वाले अवैध शिकार उनकी संख्या घटने का प्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन भी उनके अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। श्रोताओं, भारत में मुख्य रूप से एक सींग वाला भारतीय गैंडा पाया जाता है। ये भारतीय वन्य जीव विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विशेष रूप से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित कुछ संरक्षित क्षेत्रों में ये पाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस केवल गैंडों को बचाने का संदेश नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि किसी जीव का अस्तित्व केवल जंगल का विषय नहीं है, बल्कि पृथ्वी की जैव विविधता और हमारे अपने भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। गैंडे की रक्षा का अर्थ उसके जंगल, उसके आवास और उस पूरे प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करना है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। तो श्रोताओं, ये जो जानकारी थी इसे आप अपने जानने वालों तक पहुंचाइए, ताकि हर व्यक्ति जागरूक हो, गैंडों के महत्व को समझे और उनके संरक्षण की दिशा में कदम उठा सके। और श्रोताओं, अब आइए आपको एक संक्षिप्त सा परिचय दे दें आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सबसे पहले आप जीवन सौरभ कार्यक्रम सुनेंगे, उसके बाद अक्षय निधि और फिर भक्ति संगीत का प्रसारण होगा। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। 8:30 बजे प्रकृति की पुकार कार्यक्रम में मृदा यानी मिट्टी की चर्चा होगी। योग संवाद कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9 बजे। आज की चर्चा का विषय देव के स्वरूप का विवेचन और सत्कार्य की प्रेरणा। हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे प्रसारित होगा। भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय युवा वैज्ञानिक, ये विषय रहेगा। नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा का प्रसारण होगा सुबह 10 बजे। 10:30 बजे आज़ाद हिंद कार्यक्रम में हम बात करेंगे मृगेंद्र कुमार दत्त की। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज आपको हम जानकारी देंगे आयुर्वेद पर। और 11:30 बजे सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एक छोटा सा अंतराल और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।

0: अगर आपके होठों पर मुस्कुराहट है तो कारण भीतर है, अगर आपकी आंखों में आंसू हैं तो भी कारण आपके भीतर है, अगर आपके जीवन में संतोष है तो कारण भीतर है, अगर जीवन में बेचैनी है तो भी कारण आपके भीतर है, अगर आपके जीवन में चिंता है, अवसाद है तो कारण आपके भीतर है, और अगर आपके जीवन में आनंद है तो भी कारण आपके भीतर है। कहने का अर्थ ये कि अपने मनोभावों के निर्माता आप हैं। आपकी जो भी भावनाएं हैं, आप जो कुछ भी जीवन में महसूस करते हैं, अपनी विचार पद्धति के कारण ही महसूस करते हैं। जैसी आपकी विचारधारा होगी, जिस दिशा में आपकी सोच होगी, आपकी अनुभूति भी बिल्कुल वैसी होगी। जैसे ही इस बात का बोध होता है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हमारे भीतर घटित हो रहा है वो केवल और केवल हमारे कारण है, तो दुख अधिक देर तक हमारे भीतर टिक नहीं सकता। जीवन सौरभ
1: न जी भर के देखा न कुछ।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक, देवता ब्रह्मणस्पति एवं इंद्रा ब्रह्मणस्पति, छंद जगती एवं त्रिष्टुप।
1: स समनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मति धनादित सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथा। हे स्तुत्य ब्रह्मणस्पति देव, युद्ध में अग्रणी होकर संगठित रूप से आक्रमण करते हैं। सर्वदर्शी ब्रह्मणस्पति देव जब अन्न और धन को धारण करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से सूर्य उदित हो जाता है। विभु प्रभु प्रथमं मेहनावतो बृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विषः। व्यापक सामर्थ्य प्रदान करने वाला, सब प्रकार सुखदाई सिद्धिदाई यह धन महाबलशाली बृहस्पति देव ने सबके द्वारा चाहे जाने पर बरसाया है, जिसका भोग दोनों प्रकार की ज्ञानी और अज्ञानी प्रजाएं करती हैं। यो वरे व्रजने विश्वथा विभुर महामु रणवः शवसा ववक्षिथ स देवो देवान प्रति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता परिभूर ब्रह्मणस्पति। सर्वव्यापी आनंददायी ब्रह्मणस्पति देव प्रत्येक युद्ध में अपनी सामर्थ्य से अपनी महत्ता को प्रकट करते हैं। सभी देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मणस्पति देव समस्त विश्व में संव्याप्त रहते हैं। विश्वं सत्यं मघवाना युवो रिदा पश्चन प्रमिनन्ति व्रतं वाम अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पति हविर्नोन्नम युजेव वाजिना जिगातम। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव और हे ब्रह्मणस्पति देव, आप दोनों सत्य व्रतधारी हैं। आप दोनों के कर्तव्य और नियम अडिग हैं। जुए में जुड़े अश्वों के समान आप दोनों हमारे हविष्यान्न को ग्रहण करने के लिए यज्ञ स्थल में आए। उता शिष्ठा अनुशृण्वन्ति वह नयः सभेयो विप्रो भरते मति धना वीडुद्वेषा अनुवश ऋण माददिहि सह वाजी समिथे ब्रह्मणस्पतिहि। युद्ध में बलशाली ब्रह्मणस्पति देव सभ्य ज्ञानी जनों के उत्तम धन को ही स्वीकार करते हैं और बलशाली शत्रुओं से द्वेष करते हैं। द्रुत गति से जाने वाले अश्व भी उनकी बात सुनते हैं, वे ऋण से उऋण करते हैं। ब्रह्मणस्पतेर भेवद्यथा वशम सत्यो मन्युर्महि कर्मा करिष्यतः योगा उदाजत्स दिवे वी चाभजन महीव रीति ही शवसासरत पृथक। महान कार्य में निरत ब्रह्मणस्पति देव का कार्य उनकी अभिलाषा के अनुसार सफल होता है। ब्रह्मणस्पति देव ने गौवों को बाहर निकालकर विजय प्राप्त की। सतत प्रवाहित नदियों की भांति ये गौएं स्वतंत्र रूप से चली गईं। ब्रह्मणस्पते स्वयमस्य विश्वः रायः श्याम रथ्यो वयस्वतः वीरेषु वीराम उपप्रिंधि नस्त्वं यदीशानो ब्रह्मणा वेशि मे हवम्। हे ब्रह्मणस्पति देव, हम सभी व्रतों के पालक तथा अन्न युक्त धन के सदैव अधिपति रहे, आप सभी के नियंता हैं। अतः ज्ञान पूर्वक की गई हमारी स्तुतियों को स्वीकार करके हमें पराक्रमी संतति प्रदान करें। ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयम् च जिन्व विश्वम् तद्भद्रम् यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे संसार के नियंता ब्रह्मणस्पति देव, देवगण जिसे अपना संरक्षण प्रदान करते हैं उसका हर प्रकार से कल्याण होता है। अतः आप हमारे सूक्त को जानकर हमारे पुत्रों को परिपुष्ट बनाएं, ताकि उत्तम संतति से युक्त होकर हम यज्ञ में आपकी महिमा का गान कर सकें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, सुबह जैसे ईश्वर ने आकाश पर शांति का एक सफेद सा पन्ना खोल दिया हो, जैसे हर किरण उस कोरे पन्ने पर कोई अनकही सी प्रार्थना लिख रही हो, ऐसे पवित्र और निर्मल क्षणों में आइए संगीत का सहारा मन को दें और भक्ति के सुरों से आज की सुबह को संवारें। इन दिनों गणेश उत्सव जारी है, घर घर में बप्पा विराजित हैं और चौराहों में, नगरों में, स्थान स्थान पर उनकी झांकियां लगी हुई हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी गणेश वंदना से करते हैं।

श्रोताओं, हर सुबह दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती है। कभी यूं भी होता है कि वो चुपचाप मन के भीतर आती है और उजाला रख जाती है। आज की सुबह भी ऐसी एक सौगात लेकर आई है। आइए इसे प्रभु के नाम और मधुर संगीत के साथ स्वीकार करें।

श्रोता, भोर की हवा में जैसे मंदिर की घंटियों की अदृश्य गूंज सुनाई देती है, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे मौन होकर आरती करती हों उस विराट तत्व की। इस पवित्र वातावरण में संगीत बने मन की प्रार्थना और भक्ति बने दिन की पहली सुंदर अनुभूति है।

श्रोताओं, सूरज रोज उगता है लेकिन हर सुबह हमारे लिए एक नया अर्थ लेकर आती है। कभी वो उम्मीद होती है, कभी विश्वास और कभी भीतर लौटने का अवसर। तो आज कुछ पल अपने मन के नाम कीजिए, भक्ति के सुरों के साथ स्वयं से भेंट कीजिए।

श्रोताओं, जैसे ओस की बूंद फूल को बिना कोई शब्द कहे उसे ताजगी दे जाती है, वैसे ही भक्ति भी मन को बिना शोर किए निर्मल कर जाती है। सुबह के इन शांत पलों में संगीत की धुनों के साथ आइए हम भी मन पर जमी थकान की परत को धीरे धीरे उतारें।

श्रोताओं, भोर प्रकृति की वो चिट्ठी है जिसमें हर दिन एक नया संदेश लिखा होता है। बीती रात चाहे जैसी रही हो, आज फिर उजाला संभव है। इसी विश्वास को भक्ति संगीत के साथ महसूस करें और अपने भीतर उम्मीद का एक दीप अवश्य जलाएं।

श्रोताओं कहते हैं कि दिन की पहली धुन अगर मन को छू जाए तो शायद पूरा दिन थोड़ा अधिक सुंदर हो जाता है। इसीलिए सुबह के इन पलों को यूं ही गुजर जाने मत दीजिए, बल्कि भक्ति संगीत के साथ मन को वो सुर दीजिए जिससे दिन भर सुकून आपके भीतर गूंजता रहे, बजता रहे।

0: तो श्रोताओं, ये थी आज सुबह की भजन यात्रा। उम्मीद है इस भजन यात्रा में आपने एक सुकून की प्राप्ति की होगी, शांति की प्राप्ति की होगी और निश्चित तौर पर एक सकारात्मकता आपके भीतर उतरी होगी। इसी तरह एक नए दिन में प्रवेश कीजिए इन्हीं भावों के साथ और एक सफल दिन गुजारिए। इस कार्यक्रम से अब अनुमति चाहती हूँ मैं, आपकी दोस्त सुनीता सिंह। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया,
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत भूमि में ऐसी पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और देश हित के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही भारत के एक महापुरुष थे जिन्हें हम सभी आदर और सम्मान से दादा भाई के नाम से जानते हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वो थे दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी शासनकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और भारत के आरंभिक राजनेताओं के अग्रज और सामाजिक नेता थे दादा भाई। 4 सितंबर सन 1825 को दादा भाई का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि दादा भाई के पूर्वज बड़ौदा के पास नवसारी के रहने वाले थे, जो सुगंधित फूलों और इत्र की खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। उनके पुरखे चांदजी कामदिन बेहद खुशबूदार लाजवाब इत्र तैयार करने की कला में माहिर थे, जिनकी प्रसिद्धि नूरजहां बेगम के कानों तक पहुंची और उन्हें इनाम के बतौर जागीर दी गई। 4 की छोटी सी बाल्यावस्था में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन उनकी मां ने बेहद समझदारी से दादा भाई का पालन पोषण किया, साथ ही उन्हें शिक्षित करने में भी पूरा सहयोग दिया। दादा भाई हमेशा कहते थे कि वो जीवन में जो भी बन सके सिर्फ अपनी माँ की वजह से। देशभक्ति की भावना और चरित्र निर्माण में सदैव अपनी जननी और मातृभूमि के लिए वो ऋणी रहे।

दादा भाई नौरोजी के समय सौभाग्य से उन दिनों शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हुआ करती थी, जिसका फायदा उन्हें ये मिला कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। इस बात का बेहद गहरा प्रभाव उनके जीवन पर और उनके विचारों पर भी पड़ा और वो जीवन पर्यंत मुफ्त शिक्षा के ऋणी रहे। उनका विचार था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे शिक्षा प्राप्त करने की सहूलियत मिले। दादा भाई बचपन से ही होशियार और मृदुभाषी थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पहले दौर में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई और एक मेधावी छात्र के तौर पर अपना स्थान सुरक्षित किया था। उसी संस्था में शिक्षक के रूप में जीवन का आरंभ किया और वहीं गणित के प्रोफेसर भी बन गए। भारतीयों के लिए तो उन दिनों किसी शैक्षणिक संस्थाओं में ये सर्वोच्च पद था जो उन्होंने हासिल करके दिखाया था। लेकिन अचानक से जीवन में एक नया मोड़ आया। कपास के प्रसिद्ध व्यापारी बंधु कैमास ने दादा भाई को अपने व्यापार में साझेदारी का न्योता दिया। लंदन के लिवरपूल में उनका कार्यालय बनवाने के लिए वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन फर्म में अफीम और मदिरा का व्यापार भी होने लगा। दादा भाई को ये पसंद नहीं आया, वो फर्म छोड़कर वापस भारत लौट आए। इंग्लैंड में रहने से उन्हें इंग्लैंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालतों की तुलना करने का अवसर मिला और भारत की दुर्दशा देखकर पहले से भी ज्यादा बेचैन हो उठे। दादा भाई नौरोजी ने सन 1859 में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी नाम से खुद की एक फर्म शुरू की, जो मुख्य रूप से कपास का व्यापार करती थी। इंग्लैंड में शिक्षा पाने वाले भारतीय विद्यार्थी धीरे धीरे दादा भाई से प्रभावित हुए बिना न रह सके और इस अवसर का लाभ उन्होंने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों की भलाई के लिए लगा दिया। एक और उद्देश्य था जो दादा भाई साधना चाहते थे, वो ये था कि सरकारी प्रशासकीय संस्थाओं का अधिक से अधिक भारतीकरण करने का आंदोलन तीव्र हो। उनके प्रयास कुछ हद तक सार्थक भी रहे और जो विद्यार्थी उनके संपर्क में आए उनके विचारों के समर्थक हो गए। उनमें सुप्रसिद्ध मोहनदास करमचंद गांधी और फिरोज शाह मेहता जैसे नाम प्रमुख हैं।

लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध के सुधार के लिए हुई। दादा भाई की लिखी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़कर कितने ही अंग्रेज भारत से सहानुभूति रखने लगे और भारतीयों की स्थिति से अवगत हुए। सन 1886 में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 6 सालों बाद वो ब्रिटेन की लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनकी दलीलों का परिणाम सकारात्मक हुआ और भारत के सैनिक और असैनिक आए। साथ ही व्यय की जांच के लिए वेल्बी कमीशन बैठाया गया। वो ब्रिटेन की सभा से भारत के प्रति अपना पक्ष हमेशा रखते रहे। उनका कहना था कि अंग्रेजी राज की खराबियां तभी दूर हो सकती हैं जब अंग्रेज घरेलू मामलों से भारतीयों को स्वशासन के अधिकार सौंप देंगे। 81 साल की परिपक्व आयु में दिसंबर सन 1906 में दादा भाई तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वो संयम और कठोर परिश्रम को अच्छी सेहत का राज कहते थे और स्वयं पालन भी किया करते थे। लगभग आधे दशक तक दादा भाई ने भारतीयों के विश्वास का मान रखा, भारत की जनता की अटूट श्रद्धा को सदैव सर्वोपरि सम्मान दिया। वो भारतीयों के संदेशवाहक और राजदूत थे जिन्होंने ब्रिटेन और भारत के संबंधों के सुधार और भारतीयों के अधिकारों के लिए कभी समझौता नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के बीच एक अहम स्थान भी बना लिया। 30 जून सन 1917 को भारत के पितामह अपने समस्त भारतीय परिवार को छोड़कर इस संसार सागर से विदा हो गए। ये दादा भाई के कार्यों का प्रभाव था। जो पुण्य काम उन्होंने प्रारंभ किया उसे गांधी जी जैसे उत्तराधिकारी मिले। कोटि कोटि नमन हमारे ऐसे पितामह दादा भाई नौरोजी को।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूँ वर्षा सिंह।
2: और मैं हूँ दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: मैं झूमूं झूमूं मैं गाऊं।
1: अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हो और इतना खूबसूरत गाना भी गा रही हो।
2: हाँ, आपने ठीक कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों?
1: बताइए, आप ही बताइए क्यों।
2: दरअसल आज मैं सुबह काफी लंबी सैर करके आई हूँ और बाहर सुबह इतनी सुहानी लगी कि मन खुश हो गया। हरे भरे पेड़, कलकल बहता पानी और ठंडी ठंडी बयार, मन को इतना अच्छा लगा कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था।
1: बात तो सही कही आपने, प्रकृति की गोद है ही इतनी खूबसूरत कि वहाँ से उन नजारों से नजर ही नहीं हटती है।
2: मैंने तो सोच लिया है, जब भी फुर्सत मिलेगी तो बाहर इन नजारों के बीच जरूर जाऊंगी।
1: वर्षा, आप जानती हैं
2: जी
1: कि प्रकृति ने हमारे लिए चारों ओर ऐसी चीजें और ऐसा वातावरण दिया है कि हमारे मन को तो भाता ही है, साथ ही हमें ये स्वस्थ भी रखता है। यही तो है परी और आवरण, यानी पर्यावरण हमारी धरती का।
2: जी हाँ, पर्यावरण प्रकृति का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है जो हमें मिला है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सब इसे संभाल कर और बना कर रखें।
1: बात तो सही कही आपने, ये एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र है जहाँ हम जीवित रहते हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं।
2: हाँ, पर्यावरण से मतलब उस परिवेश से है जिसमें हमारी पृथ्वी विद्यमान है। पशु पक्षी, सूर्य का प्रकाश, जल, पेड़ पौधे, हवा और हम मनुष्य तथा सभी जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
1: हाँ, इसके संतुलन को बनाए रखने में भी सभी की समान भागीदारी है। थोड़ी भी गड़बड़ी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाएगी।
2: हाँ, हर जीवित प्राणी अपनी विशेषताओं के साथ विकसित होता है। जैसे जलीय प्राणी पानी में सांस लेते देखे जा सकते हैं, और हवा में रहने वाले तो हवा में रहते ही हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इन्हें अपने वातावरण से यदि हम अलग करें तो इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही पर्यावरण हर एक जीव के आसपास की दुनिया है जो उन्हें जीवित रखती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, पर्यावरण पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, जीव जंतु और मनुष्यों जैसे जीवित और वायु, जल और भूमि जैसे निर्जीव तत्वों से बना है।
1: प्रकृति ने अपनी कार्य प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।
2: इनमें हम मनुष्य उन सभी प्राणियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और उनका उपयोग करते हैं।
1: हाँ जी, अब जैसे हवा की बात करें तो ये न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए भी जरूरी है। हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है।
2: बिल्कुल सही कहा दीपक, जीवन देने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और नाइट्रोजन जैसी कई गैसें वायुमंडल में पाई जाती है।
1: और इस पर्यावरण में जलमंडल भी नदियों, महासागरों, समुद्रों आदि जैसे कई जल निकायों से बना है।
2: इसी तरह स्थल मंडल चट्टान और मिट्टी से बना है और जीव मंडल सभी जीवित प्राणियों का घर है।
1: वर्षा, हम ईश्वर प्रस्थ दुनिया में रहते हैं, इसमें से कुछ तत्व प्राकृतिक और कुछ हम मानवों द्वारा निर्मित है। हमारे आसपास की चीजें ही मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं।
2: लेकिन पर्यावरण के बिगड़ने के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। पर्यावरण का विनाश एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान हम मनुष्यों को ही करना चाहिए।
1: जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और पेड़ पौधे, ये सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। हम मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालते हैं।
1: अब देखिए ना वर्षा जी, हमारी अच्छी बुरी आदतें जैसे पेड़ पौधों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना, ये सब पर्यावरण को प्रभावित करता है।
2: बिल्कुल सही कहा, हमारी गलत आदतें जैसे पानी दूषित करना या जबरन पानी को बहाना, वृक्षों की जरूरत से ज्यादा कटाई करना, ये सारी बातें पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।
1: हाँ वर्षा जी, अब तो वो समय आ गया है कि हम अपनी इन बुरी और गलत आदतों के कारण पर्यावरण को प्रभावित करने का नतीजा प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर भुगत रहे हैं।
2: हमारे पर्यावरण में जैविक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
1: सामान्य शब्दों में अगर इसको समझें तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों और प्रक्रियाओं तथा घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है।
2: पर्यावरण तो हमारे चारों ओर रहता है और हमारे जीवन की हर एक घटना इस पर निर्भर होती है। यानी किसी भी जीव जंतु के बीच ऐसा संबंध होता है जो पर्यावरण आश्रित होता है।
1: हाँ, पर अब मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण हम कह सकते हैं कि इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण।
2: आपका कहना बिल्कुल सही है दीपक। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति अब नष्ट होती जा रही है। हर जगह घने जंगलों को काटकर समाप्त किया जा रहा है।
1: हाँ, जबकि हमारे कवियों और लेखकों ने इन्हीं प्राकृतिक मनोहारी रूपों को अपने शब्दों में बांधा है जिसे हम पढ़ते हैं, परंतु जो खूबसूरती देखकर उन्होंने लिखा है वो अब देखने को नहीं मिलती है।
2: आपका इशारा किस ओर है दीपक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद सतपुड़ा के घने जंगल।
1: शायद नहीं, आपने बिल्कुल सही समझा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में इन प्राचीन जंगलों का कितना अच्छा वर्णन मिलता है। कितने घने होंगे ये जंगल जब उन्होंने इन्हें देखकर इस कविता की रचना की होगी।
2: हाँ, कविता की एक पंक्ति में उस रूप का ऐसा सुंदर विवरण है और ऐसा सुंदर चित्रण है कि जब उसे पढ़े तो हमें दिखाई भी देने लगता है।
1: लेकिन वर्षा जी, बड़े अफसोस की बात है, आज वृक्षों की कटाई और बड़ी इमारतों को बनाने और नए नए उद्योगों को शुरू करने के कारण प्राकृतिक पर्यावरण बुरी तरह से नष्ट हो रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा, घने वृक्षों को काटकर नष्ट करना, पर्यावरण और प्रकृति से खिलवाड़ कर हम मनुष्यों ने अपनी ही आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा कर लिया है।
1: कभी कभी लगता है वर्षा जी, प्रकृति से हमने बस लिया ही है, हमने कुछ भी नहीं दिया। अनगिनत वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलता धुआं, दूषित पानी और मशीनों की आवाजें, ये सबके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा दीपक, इसी कारण हमें नित नई और ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका इलाज हमारे चिकित्सा जगत की समझ से बाहर है।
1: और इस कड़ी में हम वैश्विक स्तर पर फैली बीमारी COVID-19 की भयावहता को देख चुके हैं, जिसके कारण हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश से लाखों लोगों की जानें गईं।
2: इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को बदले, उसमें परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। इस बात की आवश्यकता अब हमारे लिए पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि हम अब इस ओर पहल का कदम नहीं बढ़ाएं बल्कि दौड़ पड़ें।
1: बिल्कुल ठीक कहा वर्षा जी, क्योंकि यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं और मानव जाति और अन्य प्राणियों की रक्षा करना चाहते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही होगा।
2: हम सभी ने सदा से पर्यावरण के सभी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया है। तकनीकी आपदा के कारण भी हम दिन प्रतिदिन प्राकृतिक तौर तरीकों को छोड़ नहीं रहे बल्कि उसकी महत्ता को नजरअंदाज कर रहे हैं।
1: हाँ, जबकि पृथ्वी पर रह रहे हर प्राणी की जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रकृति द्वारा दी गई उन अनमोल वस्तुओं के महत्व को समझे और इसे संरक्षित रखे, क्योंकि हमारे आसपास अपने जीवन को बचाने के लिए इसका कोई सानी नहीं है।
2: तभी तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी पर्यावरण को बनाए रखने के प्रति गंभीर थे और इसी वजह से उन्होंने प्रकृति को माता के रूप में माना और ये भी जाना कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है।
1: ये बड़ी सुंदर बात कही आपने। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सफाई को महत्व दिया और ये माना कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है और प्रदूषण जीवन के लिए खतरा।
2: जी हाँ, उन्होंने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ों की आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग की बात पर बल दिया और पानी का सीमित उपयोग किया उन्होंने सदा अपने शिष्यों को भी पर्यावरण के महत्व और संरक्षण की शिक्षा दी।
1: जी हाँ, अपनी शिक्षा में उन्होंने प्रकृति के साथ रहने और उसके नियमों और सिद्धांतों को अपनाया। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को देवी देवता के रूप में देखा, उसकी पूजा की और कहा कि इसी में हमारा सुख, शांति और समृद्धि है।
2: जी हाँ, उनकी कही गई बातें और उनकी दी गई शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमें अपने उन पूर्वजों की शिक्षा को अपनाकर पर्यावरण को बचाना ही है।
1: बिल्कुल सही बात कही वर्षा। इसके लिए हमें आत्मनियंत्रण की भी जरूरत है। हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं कि हम भूलते जा रहे हैं कि इन्हें पूरा करने के कारण हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी कितना कुछ सह रही है।
2: अब देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में ही कितना अंतर आ गया है। ज्यादातर घरों में देर से सोना और प्रातः काल की बेला गुजरने के बाद उठना और फिर अलसाते हुए अपने कामों को करने का प्रयास करना,
1: जबकि प्रातः काल और सूर्यास्त से पहले का समय प्रकृति के सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण समय में से होता है। इस समय सारा वातावरण साफ, शांत और ताजा होता है।
2: सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को मोह लेती हैं और कहते हैं ना, प्रातः काल सूर्योदय के समय वातावरण में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे मन को और शरीर को तरोताजा कर देती है।
1: और हमारे शरीर को मिलने वाली ये ताजगी हमें पूरे दिन स्फूर्ति से भर देती है, ऊर्जावान बनाए रखती है। तभी तो कहते हैं कि सुबह की सैर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है।
2: बिगड़ता पर्यावरण वर्तमान समय में विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। आवश्यकता है कि हम सब मिलकर और व्यक्तिगत रूप से भी इसको बचाने में जुटें और सभी को प्रेरित करें।
1: प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करें, प्रकृति के महत्व को समझें। ये सभी जीवों का आश्रय स्थल है, इसलिए मानव जीवन के लिए ये समझना बड़ा आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण, जहां हम सब साथ रहते हैं और इस पर केवल हम मनुष्यों का ही नहीं बल्कि हर जीव, जंतु और वनस्पति का अधिकार है, इसे सुरक्षित और साफ सुथरा बनाए रखें।
2: ये प्रकृति का अनमोल उपहार कई चीजों से मिलकर बना है, जैसे वायुमंडल या हवा, जल मंडल या पानी, स्थल मंडल या चट्टाने और मृदा यानी मिट्टी, जैव मंडल या जीव जंतु और सौर ऊर्जा।
1: इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर्यावरण को तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण। इन सभी पर हम अपने अगले कार्यक्रमों में विस्तार से चर्चा करेंगे।
2: तो दो पंक्तियों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। आइए प्रण करें।
1: धरती डगमग डोलती आते नित भूकंप,
2: करो प्रकृति दोहन नहीं मिट जाए हड़कंप।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। अब वक्त है इजाजत लेने का।
1: इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी। मैं था आपके साथ दीपक निमा।
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार।
2: प्रकृति की पुकार। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम योग संवाद। उसके पहले एक छोटा सा अंतराल।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, जीवन की राह में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके सामने मन ठिठक कर पूछता है, ये क्या था? हमारा कर्म, हमारी नियति या कुछ और? हम अक्सर उस शक्ति को जो हमारी समझ से परे है दैव कह देते हैं और फिर अपने प्रयासों को उसके सामने छोटा मान बैठते हैं। लेकिन योग वासिष्ठ दैव को केवल भाग्य की रेखा मानकर स्वीकार करने के बजाय उसके स्वरूप पर गहराई से विचार करता है। ये ग्रंथ हमें उस दृष्टि तक ले जाता है जहाँ दैव कोई ऐसा आदेश नहीं जिसके सामने मनुष्य विवश होकर बैठ जाए, बल्कि जीवन में हमारे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे संकल्प और हमारी चेतना सब मिलकर उस दिशा का निर्माण करते हैं जिसे हम कभी कभी दैव का नाम दे देते हैं। और यहीं से जन्म लेती है सत्कर्म की प्रेरणा, क्योंकि यदि हमारे कर्म ही जीवन की धारा को दिशा देते हैं तो हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म को अधिक निर्मल, अधिक सार्थक और अधिक कल्याणकारी बनाने का उत्तरदायित्व भी हमारा ही है तो आज योग संवाद में आइए योग वासिष्ठ के इसी गहन संदेश की ओर चलें कि दैव वास्तव में क्या है, उसका स्वरूप क्या है और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को किस प्रकार अधिक उज्जवल बना सकता है। आइए समझें कि दैव को जानने की यात्रा अंततः हमें कैसे अपने कर्मों को पहचानने तक ले जाती है, और ये भी कि सत्कर्म केवल जीवन को बदलने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग भी है। आज इस चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद कार्यक्रम में।
2: नमस्कार।
1: पिछले अंक में बहुत ही रोचक चर्चा रही और वहीं से हम आगे बढ़ते हैं कि हमने बात की थी पुरुषार्थ की और प्रारब्ध की, और कई बार पुरुषार्थ को देखकर कर्म करना मनुष्य बंद कर देता है। तो जब उद्योग का नाश होता है या कर्म से मनुष्य विरत होता है तो उसका परिणाम क्या होता है?
2: उसका परिणाम ये होता है कि वो फिर अपने पुरुषार्थ, जिसके द्वारा वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करता है, वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दैव के भरोसे बैठे रहने वाले लोग अक्सर आलसी हो जाते हैं और आलस्य से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। तो ऐसे में बार बार इस बात के लिए वशिष्ठ जी राम को प्रेरित कर रहे हैं कि राम, ये विभिन्न लोगों को जो देख करके आपके अंदर ये वैराग्य आया है कि ये कर्म से अपने अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो अभीष्ट है ये इनका प्रयत्न तो है, लेकिन जो पूर्व के जो कर्म हैं, ये कर्म भी वर्तमान में आने वाले परिणामों में अपनी भूमिका, महती भूमिका निभाते हैं।
1: जी जी।
2: इसलिए कई बार हम लोग अच्छा करने के बाद भी उस कर्म के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं करते और कहते हैं कि शायद हमारे में कोई कमी रह गई। नहीं, ये भाव भी हमारे चित्त में न आए, क्योंकि हमारे अंदर अगर ये भाव भी आएगा तो फिर हम कर्म करने में जो कुशलता है वो बाधित होगी।
1: जी जी।
2: तो इससे वो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें पूर्व का जो कर्म जिसे प्रारब्ध कर्म कहा गया उसकी भी भूमिका हो सकती है या होती है। तो इसलिए आप फोकस किसी चीज पे होइए तो सिर्फ कर्म पर होइए। कर्म ही वो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा आप कर्म फल को बदल सकते हैं। कर्म फल कभी भी नहीं बदलता बिना कर्म में परिवर्तन के। कहा भी जाता है कि जो आप आज कर रहे हैं अगर वही आप कल भी करेंगे तो कल भी वही प्राप्त होगा जो आज प्राप्त हुआ है।
1: बहुत ही सुंदर बात, बिल्कुल,
2: है ना?
1: बिल्कुल।
2: तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिणाम बदले, आप मनचाहा परिणाम पाएं, तो निश्चित ही आपको ऐसे कर्म करने पड़ेंगे जिन कर्मों के द्वारा आप मनचाहे परिणाम की सिद्धि कर सकें।
1: जी, बहुत ही सुंदर संदेश ये हो गया। देखिए, कई बार होता है ना कि मनुष्य कहता है कि साल हो गए, बरस बीत गए, हमारा जीवन वैसा ही चल रहा है, जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। लेकिन देखने की जरूरत यह है कि आपके जीवन में परिवर्तन जो नहीं हो रहा है, आपके कर्मों में क्या परिवर्तन
2: हुआ। बिल्कुल।
1: अगर आपकी दिनचर्या में, आपके कर्म में परिवर्तन होगा तभी फिर जीवन में परिवर्तन होगा।
2: जी।
1: तो ये बात वहां भी जाकर जुड़ती है।
2: एक सामान्य बात देखिए ना, कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो हर आदमी अच्छे परिणाम का मतलब अपेक्षा लेके बैठा है, लेकिन जब उससे पूछो, उसी से पूछो कि जिस परिणाम की कामना आप करके बैठे हैं या जिस परिणाम के प्राप्त होने पर आपको आनंद होगा, उस परिणाम को पाने के लिए क्या कर्म जो आप कर रहे हैं ये संतोषजनक है, वही कह देगा कि नहीं है।
1: नहीं है, बिल्कुल।
2: वो इस बात को भी जानता है कि हमारा कर्म इस योग्य नहीं है कि हम उस परिणाम को हासिल कर सकें, लेकिन वो परिणाम को पाना चाहता है और कर्म पर जोर लगाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से फिर वो परिणाम नहीं मिलता, उसके जीवन में दुख आता है।
1: सारा श्रम कामना में है, कामना करता है,
2: कामना करता है।
1: श्रम के लिए मतलब कर्म की तरफ उसका रुझान नहीं है
2: जी।
1: अच्छा, मन और शरीर कैसे काम करते हैं इसकी भी चर्चा मुझे नजर आई थी अंक में, तो मैं चाहती हूँ कि इसकी भी व्याख्या आप करें
2: जी। साक्षी जो चेतना है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस, चाहे वो बॉडी कॉन्शियसनेस हो, चाहे माइंड कॉन्शियसनेस हो, चाहे वो डिवाइन कॉन्शियसनेस हो, किसी भी

0: बहुत बड़ा महत्व है कि सद्विचार होने चाहिए। आप खुद ही जो कर्म कर रहे हैं और जिस परिणाम को आप पाना चाह रहे हैं, इसको अगर आप शांतिपूर्वक विचार पूर्वक देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आप कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच भेद है। और वो भेद जब तक वो गैप भरेगा नहीं, तब तक आपको पूर्णता की न प्राप्ति होगी, ना आप संतुष्ट हो पाएंगे, ना सुखी हो पाएंगे। जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो जीवन की विडंबना यही है, हमारी चाहना और हमारा कर्म, इन दोनों के बीच का योग नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कभी दुख का भी वियोग नहीं होता, दुख बना होता है हमेशा।
1: जी जी।
0: तो योग जो है वो दुख के संयोग का वियोग कराता है, गीता में भगवान ने कहा।
1: जी जी।
0: और ये तभी होगा जब दुख का संयोग जिन कारणों यानी जिन कर्मों से हो रहा है उन कर्मों को परिवर्तित किया जाए, तो निश्चित ही परिणाम अपने आप बदल जाएगा। तो मन के अनुसार शरीर व्यवहार करता है और वही व्यवहार फल की सिद्धि का कारण बनता है। तो लोक में जहां जहां जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहां वैसे वैसे पौरुष के उपयोग के द्वारा लौकिक वैदिक फल की भी सिद्धि होती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि जो साक्षी चेतना है उसमें जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी, उसी तरह के विषय के अनुसार जो है मन में विचार आएगा और उसी विचार के अनुसार कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी। ऐसा कहा भी है इन्होंने कि मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वही तो पौरुष है। अब आप देखिए कि आपका पौरुष आपके पुरुषार्थ के नष्ट करने पर लगा है। पौरुष का मतलब यह भी है कि आप कह लें, संकल्प कर लें कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आपने मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों को नहीं करने में लगा दिया। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ कि आप जीवन में अच्छा चाहेंगे नहीं।
1: हाँ।
0: आप नहीं करेंगे ये संकल्प आपने ले लिया, लेकिन आपके जीवन में बुरा हो या आप नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जीवन में अच्छा हो, लेकिन मैं कुछ अच्छा ना करूं ये नहीं संभव हो सकता। तो इसलिए बार बार यहाँ पर वशिष्ठ जी इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों को सजग कर रहे हैं कि आप अपने प्रयत्न को करें और प्रयत्न के द्वारा जो है आप संसार में जो कामना चाहते हैं उसकी सिद्धि हो सकती है।
1: तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि जिस तरह का हमारा विचार होगा उसी तरह का हमारा कर्म भी हो जाएगा, इससे उसका परिणाम निर्धारित होगा।
0: महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य दैत्यराजों के गुरु बने हैं।
1: अच्छा।
0: तो बिना पुरुषार्थ के इस संसार में अगर कोई किसी प्रकार के फल की कामना करता है तो ये निहायत ही बेमानी होगी और ये कभी भी संभव नहीं है। आपको बिना पुरुषार्थ के आप चाहें कि मनचाह परिणाम पालें, ये संभव नहीं है।
1: अच्छा, ये बताएं कि संपूर्ण शास्त्रों का सारांश क्या है?
0: जी, संपूर्ण शास्त्रों का सारांश वो कह रहे हैं कि शास्त्रों के अभ्यास और गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न से जो है पुरुषार्थ की सिद्धि की जा सकती है और यही जो है संसार में समस्त शास्त्रों का सार संग्रह है कि कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए, यही सारे शास्त्र कह रहे हैं।
1: जी,
0: कि आपको हमेशा प्रयत्न शुभ कर्मों के प्रति, यानी जो कर्म आपको शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करे
1: जी,
0: उस पर ध्यान देना है।
1: और
0: जहां जहां भटकाव की स्थिति है, जहां आपको लगता है कि ऐसा करके, और एक बात और देखिए कि अगर हम निरपेक्ष होकर के अपना आत्मन्वेषण करें
1: जी,
0: तो आपको लगेगा कि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता।
1: बिल्कुल, ये सच है।
0: लेकिन हम हमेशा दूसरों से अपनी पुष्टि चाहते हैं या दूसरे हमको नया नया चीज बताने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आदमी को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जिसको गोस्वामी जी कहते भी है कि उपदेश कुशल बहुतेरे पर सिखवन के बुद्धि घनेरे। तो जितना भी आदमी के पास बुद्धि है वो सब वो दूसरों को ठीक करने में लगाने में लगा है, उस बुद्धि का तनिक भी उपयोग अपने को ठीक करने में
1: नहीं
0: लगाना चाहता। आप देखें जगत में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इसकी लंबी लिस्ट लेके लोग बैठे हैं कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाए कि जो आप चाह रहे हैं उसमें आपका योगदान क्या है, तो शायद वो मौन हो जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के बदलाव हमेशा अपने आप से शुरू करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ी मूर्ता लोगों में है कि लोग सोचते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। सच ये है कि जब आप बदलते हैं तो दुनिया में बदलाव की संभावना होती है। जितने भी महापुरुषों की कहानी है वो कभी भी आप देखिए तो दुनिया में क्या हो रहा है इसको बदलने के लिए नहीं, सबसे पहले वो बदलाव उन्होंने खुद में किया है।
1: बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि अगर आप दुनिया को बदलने चले तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि वो संभव नहीं है।
0: जी,
1: तो आपने बताया कि शास्त्रों का अभ्यास, गुरु का उपदेश और प्रयत्न ये संपूर्ण शास्त्रों का सारांश है।
0: हाँ, ये जो तीनों जब मिलेंगे तो आपके अंदर जो होगा, अशुभ कर्म से आप अपने चित्त को हटाएंगे और शुभ कर्म में अपने चित्त को लगाएंगे, तो फिर ऐसे में परिणाम तो फिर शुभ होगा ही होगा। तो इसके लिए ये तीनों की जरूरत है। गुरु का मतलब यहाँ ये भी ध्यान रखें कि ऐसा गुरु जो शास्त्रों में जो ज्ञान है उस ज्ञान का वो सजीव रूप हो। इसीलिए देखिए, गुरु के जो पदचिन्हों की पूजा हम करते हैं, गुरु चरण की बात हमेशा होती है। तो गुरु चरण का मतलब क्या है? लोग कहते हैं कि आपके पदचिन्ह बता रहे हैं कि आप क्या हैं। तो जो ज्ञान हम दूसरों से सुन रहे हैं, वही ज्ञान जब गुरु देता है तो वो ज्ञान हमारे जीवन में अंगीकार क्यों होता है? क्योंकि गुरु उस ज्ञान के अनुसार उसी पथ का अनुगामी होता है। गुरु ऐसा नहीं है कि ज्ञान उसका कुछ और है और कर्म कुछ और है, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसे अपन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि मेरे मन के दर्पण को गुरु के चरण धूल से साफ किया जाए। अब आप सोचिए कि आप दर्पण के धूल साफ करते हैं, वो कहते हैं कि गुरु के चरण की धूल से मन का दर्पण साफ करो। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु के चरण की धूल जो है वो पदचिन्हों की तरफ इशारा कर रही है कि गुरु जिस राह का अनुगामी है, जिस तरफ चल रहा है, क्योंकि वो सदचिंतन करता है, सदव्यवहार करता है। और संसार के लोग हो सकता है सद की बात करते हों, सदविचार तो करते हों, लेकिन सदकर्म नहीं करते हों। तो गुरु सदकर्मी होता है, इसीलिए वो प्रेरक है। और अपने यहाँ तो वैदिक परंपरा में कहते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, क्योंकि बच्चे में देवत्व का जो विकास है वो माँ और पिता के द्वारा आएगा। और उसके बाद जिस आचार्य के पास जाता है उस आचार्य में भी देवत्व होना चाहिए, आचार्य देवो भव, तब वो दैवी गुणों से संपन्न होगा। और दैवी गुणों से संपन्न होकर के ही वो शुभ कर्म का कर्ता बनेगा। शुभ कर्म का कर्ता बनेगा तो शुभ फल की प्राप्ति भी करेगा, जीवन में संतोष भी होगा, शांति भी होगी। तो ऐसे में ये बात बताई गई, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? प्रयत्न तो करना ही होगा, क्योंकि दैवी और आसुरी संपदा ये हर मनुष्य में है।
1: जी,
0: भगवान गीता में कहते हैं कि दो तरह की संपदाएं मनुष्य में पाई जाती हैं। जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो आपके अंदर पहले तो देवत्व का खुद विकास होना चाहिए। आप सामान्य जीवन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एक जीवन को जन्म दिया। अब वो जीवन किन पदचिन्हों पर चलेगा और उस पर चल करके सुरक्षित पल्लवित और पुष्पित होगा, वो पदचिन्ह तो आप ही के द्वारा निर्धारित करने
1: पड़ेंगे। और अक्सर मातृ देवो भव पितृ देवो भव को जिस अर्थ में लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि माँ जो है वो देव है, देव है, जबकि भव की बात,
0: भव की है, बनो
1: बनो
0: है, हो नहीं तुम,
1: वो है नहीं, बनने की बात है। तो ये एक संदेश है उसमें,
0: संदेश है।
1: जी। अच्छा, तो आपने सत्कर्म सद्बुद्धि की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो सद्बुद्धि है वो विकसित कैसे होती है?
0: सद्बुद्धि विकसित होती है सदशास्त्रों और सत्संग के सेवन से। बिना इसके जो है आप सद्बुद्धि के साथ नहीं हो सकते, दुर्बुद्धि आपकी होगी, क्योंकि विषय जो है वो हमेशा आपके इंद्रियों को अपने वश में कर लेगा। तो विषयानुगामी जो लोग हैं वो दुर्बुद्धि के शिकार होंगे, एन केन प्रकारेण उन विषयों की प्राप्ति में लग जाएंगे। सद्बुद्धि जो है आपको विवेक देगी, विवेक के द्वारा आप सद का चिंतन करेंगे और सत्संग कर पाएंगे। सत्संग का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि बैठ के सद चर्चा सुने, ये नहीं है। शब्द देखिए, शब्द ये कह रहा सत्संग, संग कि सत का संग करो, यानी सत के साथ आप रहो, सत व्यवहार में लाओ। लेकिन हम लोग सत्संग सिर्फ वाणी मन वचन से करना चाहते हैं, कर्म से नहीं। जब तक सत कर्म में नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं होगा।
1: तो सत के साथ रही,
0: सत के साथ रही,
1: बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है इसमें श्री राम के मन में बहुत से प्रश्न थे जो उन्होंने अपने गुरु के समक्ष रखे और जिसका निराकरण वो कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने भी श्री राम के सम्मुख कुछ प्रश्न रखे हैं, इस पर अगर चर्चा हो तो।
0: अच्छा, बिल्कुल
1: जी।
0: वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि श्री राम बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर पराक्रमी बुद्धिमान और पंडित हैं वे किस दैव की प्रतीक्षा करते हैं? कितना सुंदर सवाल। जैसे अगर ये कहें कि हम आज भी अगर ये सवाल बच्चों से कहें कि आप जिन भी सलाका लोगों को जानते हैं, सलाका पुरुषों को जानते हैं, वो क्या दैववश हैं? आप देखिए प्रेरक प्रसंगों में कैसे कैसे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी आपदाएं आती हैं कि लगता है जीवन यहीं समाप्त हो गया, लेकिन वहां उस जगह पर वो ऐसा संकल्प लेते हैं कि पूरी दुनिया उनको देखने की तरफ उत्सुक हो जाती है।
1: जी जी।
0: और वहां पर वो इतिहास रच देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मन का संकल्प और आपका प्रयत्न पूरा परिणाम बदल देने, यानी पूरी आपकी जो कह सकते हैं जो आपने अर्जित किया है, चाहे प्रारब्धवश और चाहे अपने प्रयत्न से, वो पूरा परिणाम बदल देने का सामर्थ्य रखता है आपके सदसंकल्प और सदकर्म के द्वारा। तो ऐसे में वो कहते हैं कि बताओ कौन दैव की प्रतीक्षा किए हैं। इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष के प्रभाव से ब्रह्मणत्व प्राप्त किया। जो विश्वामित्र आपको लेने आए हैं, ये अपने पौरुष से जो ब्रह्मऋषि बने हैं, राजर्षि से ब्रह्मऋषि का इन्होंने यात्रा की है, ये पौरुष का परिणाम है और किसी साधन से नहीं मिला है इनको। अब ये दैव के भरोसे बैठ जाते तो ये सिद्ध होता क्या?
1: नहीं होता।
0: तो कहते हैं राम जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी देव पुरुष जो पराक्रमी है, बुद्धिमान है, पंडित है, वो दैव की प्रतीक्षा में रह करके अपने उन गुणों को विकसित किया है। वो जो कुछ भी किया है वो प्रयत्न से सिद्ध किया है, यानी क्रियमाण जो आपका वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ से उसकी सिद्धि हुई है, इसलिए पुरुषार्थ ही करने योग्य है। और दैव का जो है सहारा लेना, मैं समझता हूं कि ये बुद्धिमत्ता नहीं है, दैव भी पूर्व का पुरुषार्थ है, न कि कोई ऐसी घटना जो अनायास घटी।
1: अनायास घटी है, बिल्कुल। तो वशिष्ठ जी ने ये प्रश्न श्री राम के समक्ष रखा और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी के समक्ष श्री राम ने एक जिज्ञासा रखी कि दैव क्या है, जो लोक में प्रचलित है। तो इसे समझाइए कि वशिष्ठ जी ने कहा क्या।
0: श्री राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह दैव क्या है, किसे कहते हैं दैव? ये राम जी कहते हैं क्योंकि लोक में तो राम जी भी देख रहे हैं ना कि दैव भरोसे लोग बैठे हुए हैं। और आपने सुना होगा रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा, जब विनय कर रहे हैं राम जी, तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि ये लोक प्रचलन में तो है तो इसको बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, अवश्यंभावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ अशुभ भोग है उसी को दैव शब्द कहा जाता है। अब देखिए कितना सुंदर कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा किए हुए कर्म का जो फल भोग है, चाहे वो शुभ हो
1: चाहे वो अशुभ हो,
0: तो ऐसे में वो किसका परिणाम है? वो कर्म का परिणाम है। लेकिन उस फल को लोगों ने दैव नाम दे दिया। तो हम लोगों ने कर्म फल को दैव नाम दे दिया, जबकि कर्म फल कर्म के अधीन है, दैवाधीन कर्म नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कर्म के अधीन जो फल है उसको हम दैव कहते हैं, ये वशिष्ठ जी कहते हैं, उसी को दैव कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है उसी को दैव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यंभावी फल है वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित होता है।
1: जी। तो ये बहुत ही सुंदर व्याख्या उन्होंने की। और देखिए कर्म की इतनी बात हुई कि कर्म से ही सारे समाधान है। तो मन में एक सहज प्रश्न आता है कि मनुष्य के कर्म का निर्धारण कौन करता है?
0: क्या बात है। वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम, मनुष्य के मन में जो पहले से अनेक प्रकार की वासनाएं थीं, वे ही इस समय कायिक वाचिक और कर्म रूप में परिणत हुई हैं। मन की जो वासनाएं हैं वही आपके शरीर के कर्मों के माध्यम से, वचन के माध्यम से, और शरीर में जो आपकी स्थिति है वो उस रूप में वो परिणत होती हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र ही वैसा कर्म करता है। अब आप देखिए किसी व्यक्ति के कर्म से उसके मतलब चित्त की वासना या उसके मन की वासना को भी आप आसानी से जान सकते हैं। वो कोई और कर्म कर ही नहीं सकता जो उसके मन की वासना से अलग हो।
1: बिल्कुल।
0: अब यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा घोष है ये कि मन में जो वासनाएं होती हैं, शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जन्म मरण का जो चक्र है वो भी मन की वासनाओं की वजह से है, तृष्णा की वजह से है कि मन में तृष्णा रह जाती है, इस नाते उस भोग के लिए फिर आपको एक शरीर धारण करना पड़ता है। अगर तृष्णा शांत कर दी जाए तो फिर जन्म मरण का जो भवरोग जिसको आप पूछा था तो वो भवरोग से मुक्ति मिल जाएगी। भवरोग जन्म और मरण ही है मूल रूप से देखें तो।
1: जी। अच्छा, मन की बात इतनी हुई तो ये बताएं कि मन की कितनी संज्ञाएं हैं, कितने नाम हैं?
0: वशिष्ठ जी कहते हैं मन को विभिन्न नामों से या विभिन्न संज्ञाओं के द्वारा कहा गया है। मन को चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की ही संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है।
1: चित्त वासना
0: कर्म, दैव और निश्चय, ये सब मन की ही संज्ञाएं हैं जिसको व्यक्ति कठिनता से समझता है, लेकिन है ये सत्पुरुष कहते हैं ये सब मन के ही विभिन्न नाम हैं, क्योंकि ये सब मन में ही उत्पन्न होते हैं। निश्चय भी आप मन से करते हैं, कर्म भी बिना मन के नहीं होता। दैव जो कह रहे हैं आप फल, वो फल भी किसी कर्म का ही परिणाम है, तो वो भी मन का ही हिस्सा है।
1: हाँ।
0: चित्त में जो साक्षी चेतना है, उस चेतना में जो विषय का चिंतन होता है, उसी विषय के अनुसार मन विचार करता
1: जी
0: है
1: जी।
0: और उस विचार के अनुसार शरीर कर्म करता है। तो ऐसे में मन और शरीर का दोनों का गहरा संबंध है। तो शरीर के द्वारा जो कर्म होता है या चित्त में जो वासनाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं मन की ही संज्ञाएं हैं, उसको एक रूप में मन का नाम दिया जा सकता है।
1: अच्छा, अभी हमने बात की कि कर्म का निर्धारण वासना से होता है, तो वासना का बहाव किस तरह से होता है?
0: वशिष्ठ जी राम से कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा शुभ कर्म की तरफ लगाए और अशुभ मार्ग से हटाए। तो वासना का जो बहाव है वो देखें तो वो शुभ और अशुभ, इसलिए देख सकते हैं वासनाएं दो प्रकार की मानी गई हैं, शुभ वासना और अशुभ वासना। अब ये दोनों किसी न किसी फल की वासना में हमेशा फल की कामना होगी, क्योंकि फल तो रहेगा ही, तभी तो शुभ कर्म करके आप शुभ वासना की पूर्ति करेंगे और अशुभ कर्म करने लगे तो अशुभ वासना की पूर्ति होगी। तो ऐसे में जो ये दोनों बहाव है, वासनाएं इसी रूप में बहती हैं, शुभ और अशुभ नदी जैसे बहाव है, दो पार्ट हैं उसके। ठीक है,
1: और जिस वासना के हम अधीन हुए उस तरह का हमारा कर्म हो जाता है,
0: कर्म हो जाता है, या उस तरह का कर्म करके हम उस फल को प्राप्त करते हैं,
1: उस फल को प्राप्त करते हैं।
0: तो वो कहते हैं कि ऐसे में जो विवेकवान लोग हैं उनको अशुभ मार्ग से, यानी जो अशुभ वासना की तरफ आपका चित्त बह रहा है, वहां से हटा करके शुभ मार्ग में उसको लगाना चाहिए, ऐसा प्रयत्न कर। और ये होगा कैसे? प्रयत्न से होगा, प्रयत्न पूर्वक, यानी पुरुषार्थ के द्वारा ये सिद्ध होगा। आप सोचें कि अपने आप हो जाएगा, दैव भरोसे बैठने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप पुरुषोचित कर्म करेंगे तब जाकर के इसकी सिद्धि होगी।
1: अच्छा, इसमें चित्त के विषय में भी चर्चा है आगे, तो मैं चाहती हूँ ये बताएं आप कि मनुष्य का चित्त कैसा होता है, क्या बताया गया है?
0: वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। जैसे आप बच्चों को देखते हैं ना, बच्चे कैसे खेलते रहते हैं, क्षण भर में वही खिलौना फेंक देंगे, फिर दूसरे की मांग करेंगे, मतलब कहीं चित्त में स्थिरता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का चित्त है वो शिशु के समान चंचल है, उसे अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में जाता है। इसलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य मार्ग में लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मन शांत बैठेगा। एक संत है वो कहते भी हैं कि शांति जो है, शांत अमन की अवस्था है
1: जी।
0: मन की अवस्था नहीं है। मन तो हमेशा प्रवाह में होगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: वासना की जो नदी है,
1: हाँ।
0: जो शुभ और अशुभ वासना की नदी जो प्रवाहित है, ऐसे ही उस प्रवाह के साथ मन प्रवाहित है। तो मन को जब शुभ मार्ग में आप लगाएंगे तो वो अशुभ मार्ग का त्याग कर देगा, और जब अशुभ मार्ग में रहेगा तो शुभ मार्ग अपने आप छूट जाएगा। तो ऐसे में मन जो है हमेशा प्रवाह में रहेगा।
1: तो एक तरह से बच्चों की तरह उसकी प्रकृति है, और उसको उस तरह से हमें समझना चाहिए। तो शशिकांत जी, आज बहुत ही अच्छी चर्चा रही, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और इतनी सुंदर व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की दैव के स्वरूप का विवेचन और सत्कर्म की प्रेरणा विषय पर। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

छोटी सी बात। दोस्तों नमस्कार, हमारे सेगमेंट छोटी सी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, इस सेगमेंट में अक्सर हम आपसे छोटी छोटी बातों का जिक्र करते हैं, छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं जो बहुत बड़े फायदे हमें दे जाती हैं। जी हाँ, छोटी सी बात जिसके परिणाम हैं बहुत बड़े। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आजकल बहुत सी बातें आप भूल जाते हैं? समय पर कोई चीज याद नहीं आती, या कोई सामान कहाँ रखा, अभी तो हाथ में था, जाने कहाँ रख छोड़ा, ऐसा होता है? अक्सर होता है ना कि चाबियां अभी तो हाथ में थी, जाने कहाँ रख दी, और फिर पूरे घर में एक बवाल, एक तहलका कि भाई गई कहाँ चाबी, और काम बिगड़ जाता है। या यूं ही चश्मा उतारा और जाने कहाँ रख दिया, और अब जब जरूरत हुई तो फिर वो मिलता ही नहीं। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो हमारा आज का ये सेगमेंट छोटी सी बात आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। शोध बताते हैं कि संगीत सुनने से आपकी याददाश्त पर बहुत सकारात्मक असर होता है। हम सबको तो पहले से ही पता है कि संगीत सुनने से सेहत से जुड़े हुए कई अद्भुत लाभ होते हैं। लेकिन अब जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिजीज में प्रकाशित हुए नए अध्ययन बताते हैं कि संगीत सुनने से याददाश्त मजबूत होती है, ध्यान और संगीत मूड, नींद और जीवन के स्तर में सुधार लाता है। ध्यान और मेमोरी में सुधार से संबंधित शोधों से पता लगता है कि संगीत भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक है। यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया में किए गए एक अध्ययन में छात्रों को 2 सप्ताह के लिए माइंडफुलनेस क्लास या न्यूट्रिशन क्लास लेने के लिए कहा गया। जिन छात्रों ने माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, उनकी मेमोरी में सुधार हुआ। एक और शोध किया गया। इस शोध के मुताबिक संगीत सुनने से दिमाग क्रिसमस ट्री की तरह चमकने लगता है। जी हाँ, इसलिए संगीत को चमत्कारिक कहा जाता है। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में उन 60 वर्ष के व्यक्तियों का चुनाव किया गया जिनकी व्यक्तिपरक संज्ञानात्मकता में गिरावट आई थी। ये अल्जाइमर बीमारी के लक्षणों के बहुत करीब थे। भागीदारों को 2 मस्तिष्क शरीर अभ्यास करने के लिए दिए गए थे। उन्हें शुरुआती ध्यान के लिए कहा गया या संगीत सुनने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा गया। ऐसा 12 सप्ताह तक हर रोज 12 मिनट करने के लिए कहा गया। अध्ययन की अवधि की समाप्ति पर दोनों दलों ने व्यक्तिपरक स्मृति और संज्ञानात्मक बोध में पर्याप्त सुधार दर्ज किया, और साथ ही डिमेंशिया की शुरुआती स्टेज में होने वाले नकारात्मक प्रभावों में भी बहुत सुधार देखा गया। शोध में पाया गया कि एकाग्रता प्रोसेस की गति में बहुत इजाफा हुआ है। हालांकि अभी वैज्ञानिक पूरी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि कौन सा संगीत आपके दिमाग के लिए अच्छा है, पर आपको अपनी पसंदीदा ट्यून जरूर सुननी चाहिए। वैसे कहते हैं कि बांसुरी पर बजाई कोई धुन आपके दिमाग पर चमत्कारिक असर रखती है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की छोटी सी बात। हमें उम्मीद है कि आपको इससे जरूर लाभ होगा। अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ है, आप भी चीजों को रख कर भूल जाते हैं, या कोई बात बिल्कुल समय पर याद नहीं आती, या किसी व्यक्ति से मिले और अचानक लगा कि इससे मुलाकात तो हुई थी, नाम भी पता था, लेकिन एग्जैक्टली उस वक्त आपको याद नहीं आता है कि कहाँ मुलाकात हुई थी और इनका नाम क्या है, तो अगर ऐसी बात आपके साथ हो रही है, ऐसी कोई समस्या आपके साथ हो रही है, तो संगीत सुनना शुरू कीजिए। संगीत सुनिए, आपको याद रहने लगेगा। छोटी सी बात।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आप सभी को मनीषा
2: और विजयकांत का नमस्कार। श्रोताओं, भारत केवल विविधताओं और संस्कृतियों की धरती नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभाओं की जन्मभूमि भी रहा है। इस देश ने समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, ज्ञान, साहस और कर्मठता से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया।
1: भारत की प्रतिभा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रही। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य और दर्शन के माध्यम से विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से समाज के यथार्थ को आवाज दी और लता मंगेशकर ने अपनी स्वर साधना से भारतीय संगीत को विश्व भर में पहचान दिलाई।
2: और जब बात आधुनिक भारत की प्रतिभाओं की होती है तो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, खिलाड़ियों, कलाकारों और युवाओं की उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सफलता हो, ओलंपिक में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हो या विश्व मंच पर भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ, हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा अपनी चमक बिखेर रही है।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
2: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाए। क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वह खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: स्वागत है आपका ज्ञान, जिज्ञासा और खोज की उस दुनिया में जहां हर सवाल एक नई संभावना को जन्म देता है, जहां एक छोटा सा प्रयोग भविष्य की बड़ी खोज बन सकता है और जहां युवा मस्तिष्क अपनी सोच और प्रतिभा से दुनिया को चौंका सकते हैं।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति समर्पित है भारत के उन युवा वैज्ञानिक मस्तिष्कों को जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और परिणाम आया तो 5 के गले में सजा स्वर्ण पदक। यह उपलब्धि केवल 5 विद्यार्थियों की सफलता नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक सोच, हमारे शिक्षकों की मेहनत और हमारी युवा प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है और यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण भी है।
1: श्रोताओं, ये कहानी उस भारत की है जो सदियों से ज्ञान की धरती रहा है, जिसने दुनिया को शून्य का रहस्य समझाया है, जिसने विज्ञान, गणित और दर्शन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिस धरती पर आर्यभट्ट ने आकाश को समझने का प्रयास किया, जिस भारत ने सीवी रमन की खोज से प्रकाश की दुनिया में नई रोशनी पैदा की और आज उसी भारत की युवा प्रतिभा ने भौतिकी के विश्व मंच पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया है।
2: किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों में नहीं होती बल्कि उन युवा मस्तिष्कों में होती है जो ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में उस देश का भविष्य लिखते हैं। श्रोताओं, ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है।
1: 5 युवा, 5 प्रतिभाएं और 5 स्वर्ण पदक। जी हाँ श्रोताओं, आज भारत ऐसे ही 5 युवा मस्तिष्क पर गर्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ 5 पदकों की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्रतिभा की, परिश्रम की, ज्ञान की और उस भारत की जिसकी युवा शक्ति भविष्य के नए अध्याय लिख रही है।
2: ये उन 5 युवा सितारों की कहानी है जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर अपने ज्ञान से रोशन किया भारत का नाम, भारत का मान और भारत का तिरंगा। आज विज्ञान पत्रिका में जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, कितनी कठिन होती है इसकी परीक्षा, कैसे चुने जाते हैं भारत के ये युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी और आखिर कैसे भारत ने विज्ञान के इस विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खुलने जा रहा है विज्ञान की दुनिया का एक नया पन्ना।
1: आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है IPHO। इसकी स्थापना 1967 में पोलैंड के वार्सो में हुई थी। IPHO का आयोजन प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में किया जाता है, जिसमें 5 महाद्वीपों के 80 से अधिक देशों के प्रतिभाशाली युवा भौतिकी विज्ञानी भाग लेते हैं। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए भौतिकी विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता है। इसे आप भौतिकी का ओलंपिक भी कह सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता और प्रायोगिक कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखना है।
2: भौतिकी सिर्फ किताबों में लिखे सूत्रों का नाम नहीं है, यह उस जिज्ञासा का भी नाम है जो पूछती है यह दुनिया काम कैसे करती है, आकाश में तारे क्यों चमकते हैं, प्रकाश की गति कैसी है, पदार्थ के भीतर छिपे रहस्य क्या हैं। और जब इन सवालों की तलाश में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा विद्यार्थी एक मंच पर आते हैं तो भारत भी अपनी प्रतिभा के साथ वहां मौजूद होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के विश्व मंच पर भारत के 5 युवा विद्यार्थियों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। लेकिन श्रोताओं, यह उपलब्धि केवल 5 पदकों की कहानी नहीं है, यह उस वैज्ञानिक भारत की कहानी है जिसने वर्षों से अपने युवाओं में जिज्ञासा, तर्क और खोज की भावना को विकसित किया है।
1: ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO एक वैश्विक ओलंपियाड है जो प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। IPHO का उद्देश्य जटिल समस्या समाधान और प्रायोगिक मूल्यांकन के माध्यम से माध्यमिक छात्रों के भौतिक ज्ञान का आकलन करना है। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने और अपने ज्ञान का परीक्षण करने का शानदार अवसर मिलता है।
2: IPHO में भाग लेने के लिए छात्रों को पहले राष्ट्रीय स्तर की भौतिकी ओलंपियाड उत्तीर्ण करनी होती है। प्रत्येक राष्ट्रीय टीम में 5 छात्र होते हैं और प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया IPHO भौतिकी में शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करता है।
1: छात्रों का माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन छात्रों ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी कर ली है वो भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा शुरू न की हो। राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के लिए अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। IPHO का पाठ्यक्रम विशेष रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए तैयार किया गया है।
2: भौतिकी ओलंपियाड कार्यक्रम 5 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय मानक भौतिकी परीक्षा यानी NSEP। भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ IAPT द्वारा NSE परीक्षा आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय मानक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा कक्षा 12 के भौतिकी पाठ्यक्रम को कवर करती है। IPHO में भाग लेने के पात्र हो जाते हैं। अभिविन्यास सह चयन शिविर OCSC। भारतीय राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड से लगभग शीर्ष 35 छात्रों को अभिविन्यास सह चयन शिविर के लिए चुना जाता है। HBCSE छात्रों को उनकी अवधारणाओं, प्रायोगिक ज्ञान, समस्या समाधान और कौशल पर काम करने के लिए इस शिविर का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के लिए प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण शिविर छात्रों को भौतिकी की अवधारणाओं पर प्रशिक्षित करता है और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भागीदारी अंतिम चरण IPHO या अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड है, जिसमें सभी प्रतिभागी देशों के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। IPHO परीक्षा के दो चरण होते हैं, व्यावहारिक और सैद्धांतिक परीक्षा।
1: इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO विद्यालय स्तर की भौतिकी की विश्व चैंपियनशिप है। इसका 56वां संस्करण 5 से 12 जुलाई 2026 तक कोलंबिया के बुकार मांगा शहर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 85 से अधिक देशों के 381 छात्र शामिल हुए। ये सभी अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ भौतिक विद्यार्थी थे।
2: भारत ने कोलंबिया के बुकारा मंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उसकी टीम के सभी 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते और देश ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल किया।
1: श्रोताओं, ये उपलब्धि एक ऐसी प्रतियोगिता में हासिल हुई जिसमें 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया था, जो विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में इसकी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। देश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब फिजिक्स ओलंपियाड के वैश्विक मंच पर हमारी पूरी टीम ने एक साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले 2018 में भारत ने ये कमाल किया था।
2: स्वर्ण पदक जीतने वाले 5 भारतीय छात्र पुणे महाराष्ट्र से कनिष्क जैन हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से रिद्धेश अनंत बेंडाले, द्वारका, नई दिल्ली से ऋषित गर्ग, मुंबई महाराष्ट्र से श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी अहमदाबाद गुजरात से। कनिष्क, रिद्धेश, ऋषित, श्रेष्ठ और स्वरित, आप सभी को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। आशा है कि देश के अधिक से अधिक लोग आपकी इस ऐतिहासिक सफलता को जानेंगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे।
1: JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करने वाले और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA के लिए चयनित कक्षा 12वीं के छात्र कनिष्क जैन ने इसे बेहतरीन अनुभव बताया। कनिष्क के अनुसार कोटा में जो अकादमिक सपोर्ट उन्हें मिला वो सर्वश्रेष्ठ था। फाइनल मुकाबले में दुनिया भर के प्रतिभावान छात्रों से मिलने का मौका मिला। संस्थान की मजबूत पढ़ाई बेहद उपयोगी साबित हुई।
2: ऑफिशियल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के इतिहास में कोटा कोचिंग के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन शानदार रहा। संस्थान के छात्रों ने अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 188 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें 90 गोल्ड, 75 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
1: कठिन 4 चरणों को पार कर मिली सफलता में हम आगे बात करें तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए छात्रों को कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की ओर से आयोजित NSEP परीक्षा में कोटा के 138 छात्र चुने गए। इसके बाद होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा आयोजित दूसरे चरण में 20 छात्रों ने अगले दौर में जगह बनाई
2: और तीसरे चरण के ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया। इसमें 4 छात्र कोटा कोचिंग के थे। आखिरी चरण में कोलंबिया के बुकारा मांगा में आयोजित फाइनल मुकाबले में 87 देशों के 381 दिग्गजों के बीच भारतीय टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर तिरंगा लहराया।
1: इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत का प्रभावशाली रिकॉर्ड और भी मजबूत हुआ है, जिसमें पिछले एक दशक में प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम पर जगह बनाई है। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञात प्रश्नों को तेजी से हल करना सिखाते हैं, जबकि ओलंपियाड में ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वहाँ पहले गहरी समझ, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता ही काम आती है।
2: और इसलिए यह उपलब्धि केवल 5 छात्रों की नहीं बल्कि उन शिक्षकों, वैज्ञानिकों और संस्थानों की भी है जिन्होंने वर्षों तक इन प्रतिभाओं को निखारा। HBCSE के अनुसार भारत के लगभग 64% ओलंपियाड पदक विजेता आगे चलकर PhD करते हैं, लेकिन लगभग 32% ही भारत में स्थायी रूप से कार्य करते हैं। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रशिक्षित करने में तो हम सफल हैं, लेकिन उन्हें देश में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। IPHO का सिलेबस केवल 12वीं तक सीमित नहीं है, इसमें स्नातक स्तर के ये टॉपिक शामिल हैं: यांत्रिकी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, विद्युत और चुंबकत्व में ट्रांजिएंट्स, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकीय भौतिकी, प्रकाशिक तरंगे और आधुनिक भौतिकी के बेसिक्स।
1: ये सफलता देश के राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम की मजबूती को दर्शाती है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है। HBCSC ओलंपियाड कार्यक्रम के लिए भारत के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है और एक कठोर बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया, ओरिएंटेशन कैंप और गहन कोचिंग के माध्यम से विज्ञान और गणित में प्रतिभाशाली पूर्व विश्वविद्यालय छात्रों की पहचान, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, हमारे युवा भौतिकविदों की ये अभूतपूर्व उपलब्धि राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।
2: उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 स्वर्ण पदक जीतना और संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त करना भारत के छात्रों की प्रतिभा, समर्पण और वैज्ञानिक सोच के साथ HBCSE TIFR ओलंपियाड कार्यक्रम के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने छात्रों के अभिभावकों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता कई और युवाओं को विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी और वैज्ञानिक शिक्षा और नवाचार में भारत की स्थिति भी मजबूत करेगी। DAE ने भारतीय टीम के नेताओं, HBCSE TIFR के प्रोफेसर अन्वेष मजुमदार और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की डॉक्टर लीना जोशी, वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों, IISER कोलकाता के प्रोफेसर आनंद दास गुप्ता और गोगेट जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरी की निशा केलकर के साथ वैश्विक प्रतियोगिता के लिए टीम तैयार करने के लिए HBCSE में फिजिक्स ओलंपियाड मेंटर पूल को भी बधाई दी।
1: HBCSE के निदेशक प्रोफेसर अर्णब भट्टाचार्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भारत की निरंतर सफलता, दशकों से जारी निरंतर मार्गदर्शन, संस्थागत सहयोग और शिक्षकों एवं छात्रों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को वैश्विक पहचान दिलाने में DAE के वर्षों के निरंतर समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में मिली सफलता विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी और वैज्ञानिक प्रतिभाओं के पोषण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश के भविष्य के नेतृत्व के लिए मजबूत नींव बनाने के प्रति DAE की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
2: JEE जैसी परीक्षाएं विद्यार्थियों को कठिन प्रश्नों को कम समय में हल करना सिखाती हैं, लेकिन ओलंपियाड में दुनिया कुछ अलग ही है। यहाँ प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसे आपने जीवन में पहली बार देखा हो। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, यहाँ सिर्फ याददाश्त नहीं जिज्ञासा काम करती है, सिर्फ सूत्र नहीं सोच काम करती है, सिर्फ अभ्यास नहीं नई समस्या को समझने की क्षमता काम करती है। और यही कारण है कि इन 5 युवाओं की उपलब्धि इतनी विशेष है।

0: इन युवा प्रतिभाओं ने ये साबित किया है कि भारत की प्रयोगशालाओं, विद्यालयों और कक्षाओं में बैठी प्रतिभा को यदि सही अवसर मिले तो वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकती है। तो आइए आज इन 5 युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को दिल से सलाम करें, उनके माता पिता को बधाई दें, उनके शिक्षकों को नमन करें, उनके प्रशिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों का अभिनंदन करें और अपने देश के हर उस बच्चे से कहें, सपने बड़े रखो, सवाल पूछो, जिज्ञासु बनो और सीखने से कभी मत रुको, क्योंकि अगला स्वर्ण पदक, अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज और भारत का अगला विश्व स्तरीय वैज्ञानिक शायद आपके बीच ही बैठा हो।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।
0: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वो खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: आप सुन रहे थे भारत के 5 युवा भौतिकी सितारों की ये स्वर्णिम गाथा। भारत की प्रतिभा को सलाम, जय हिंद। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन विजयकांत नायक और
0: मनीषा चतुर्वेदी,
1: लेखन विनीता जैन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
1: ससुराल गेंदा फूल,
0: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति गीत।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े के अवसर पर हिंदी भवन में 7 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ। भव्या पब्लिकेशन की ओर से आयोजित मेले में विभिन्न विषयों और विधाओं की हजारों पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे और बाल कल्याण केंद्र के निदेशक महेश सक्सेना इस अवसर पर मौजूद रहे। इसके बाद युवा गीत प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अनन्या उपाध्याय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

श्रोताओं, हिंदी पखवाड़े के तहत निराला सृजन पीठ मध्य प्रदेश शासन संस्कृति परिषद की ओर से सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में मातृभाषा कविता लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्टूडेंट्स को कविता की शुरुआत करने से लेकर उसे प्रभावी बनाने तक की बारीकियां समझाई गईं। उन्हें बताया गया कि कविता के लिए केवल भावनाएं ही नहीं बल्कि भाषा, शब्द चयन, आंतरिक लय, प्रवाह और शिल्प की समझ भी जरूरी होती है। निराला सृजनपीठ की निदेशक डॉ. साधना बलवटे ने कहा कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में ही सहज रूप से सोचता, स्वप्न देखता और अपनी संवेदनाओं को महसूस करता है। भावनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में अधिक स्वाभाविक होती है। उन्होंने छात्राओं को कविता में आंतरिक लय और प्रवाह बनाए रखने के साथ रचना को लगातार तराशने की बात कही। सुप्रसिद्ध लेखिका डॉ. कुमकुम गुप्ता ने कविता को मनोभावों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति बताते हुए छात्राओं को कविता के शिल्प पक्ष की जानकारी दी।

का जरूरी है कि सबको कुछ न कुछ बनना है? सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है, फिर कुछ और। मंच पर गुड़िया का ये सवाल सिर्फ उसके किरदार का संवाद नहीं रह जाता, बल्कि दर्शकों के बीच बैठे हर उस व्यक्ति से सवाल करता है जो जिंदगी में सफलता को किसी पद, पहचान या बाहरी रूप से जोड़कर देखता है। इसके तुरंत बाद माँ सरला की आवाज सुनाई देती है। सब जनों को लड़की का सांवला रंग भी काला ही दिखता है। सभी को चाहिए गोरी नारी, सुंदर लड़की। मन की सुंदरता कोई नहीं देखता। और एक घरेलू शादी की कहानी सामाजिक सोच के आईने में बदल जाती है। भारत भवन में बाबा कारंत की स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय प्रणति समारोह का समापन सोमवार को मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के कलाकारों की प्रस्तुति गुड़िया की शादी के साथ हुआ। फुल हाउस शो में लोग बाहर तक खड़े रहे। समता सागर लिखित इस नाटक का निर्देशन संजय श्रीवास्तव ने किया। संजय श्रीवास्तव ने बताया कि नाटक को 2023 में विद्यार्थियों के साथ तैयार किया गया था। 2025 में इसे नए सिरे से बनाया, तब से लगातार हाउसफुल शो हो रहे हैं। भोपाल के अलावा दिल्ली, प्रयागराज, रीवा और दमोह में भी इसके 20 शो हो चुके हैं। कहानी का केंद्र गुड़िया की शादी है, लेकिन इसके बहाने परिवार, रिश्ते, परंपराएं और लड़की को लेकर समाज में बनी धारणाएं सामने आती हैं। शादी की तैयारियों के बीच होने वाली बातचीत, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, पारिवारिक स्थितियां कहानी को आगे बढ़ाती हैं। हास्य और व्यंग्य के बीच नाटक धीरे धीरे रंग रूप को लेकर समाज की सोच पर बात करने लगता है। गुड़िया का एक और संवाद, हम जिस रंग रूप के साथ दुनिया में आए हैं वही सबसे सही है, नाटक के मूल भाव को स्पष्ट करता है। उसका कहना, अपने आप से झूठ मत बोलो, जो हो जैसे हो उसे स्वीकार करो और खुश रहो, कहानी को आत्म स्वीकृति के संदेश के साथ जोड़ता है। गुड़िया के किरदार में प्रीति बिरहा ने आत्मविश्वास और सहजता को बनाए रखा। उसके संवादों में सवाल भी थे और अपनी पहचान को लेकर स्पष्टता भी थी। सरला के किरदार में माँ की चिंता और सामाजिक दबाव दोनों दिखाई दिए। खासकर सांवले रंग को लेकर उसका संवाद

और श्रोताओं, एक जानकारी आपके लिए, रंग फुलवारी नाट्य महोत्सव कल से आरंभ होने जा रहा है। यामिनी कल्चरल और वेलफेयर सोसाइटी का 3 दिवसीय 8वां रंग फुलवारी नाट्य महोत्सव का आयोजन कल यानी 23 सितंबर से किया जा रहा है। समारोह के पहले दिन नाटक सदगति का मंचन किया जाएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित इस नाटक का निर्देशन रविन्द्र मोरे ने किया है। वहीं दूसरे दिन 24 सितंबर को नाटक सावित्री बाई फुले का मंचन होगा। रेणु बर्मैया ने इसे लिखा और निर्देशित किया है। आखिरी दिन 25 सितंबर को नाटक सन 1925 का मंचन किया जाएगा। तो इस रंग फुलवारी नाट्य महोत्सव में आप आमंत्रित हैं। 23 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर के नाटकों का अवलोकन कीजिए। 25 सितंबर को नाटक सन 2025 का मंचन होगा, अवश्य आप पधार सकते हैं। आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। उम्मीद है कि आपके आसपास की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक हलचलों से आप अवगत हुए होंगे और इन हलचलों में, इन आयोजनों में आप शामिल भी होंगे। इसके साथ ही परिक्रमा का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा अंतराल हम लेंगे और उसके बाद कुछ देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति खास आपके लिए होगी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

श्रोताओं, इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। आइए आपको कुछ देशभक्ति गीत सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं श्री कृष्ण सरल की इस शब्द रचना से। संगीत निर्देशन उमेश वीनस तरकसवार का।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति रचनाएं। हमारी इस प्रसारण सभा में अभी बहुत कुछ खास है आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल, देश के लिए। जी हाँ, रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजाद हिंद।
1: नमस्कार मित्रों, आजाद हिंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन। आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूं इतिहास।
2: और मैं हूं तारीख। मेरा भी नमस्कार आप सभी आजाद हिंद के श्रोताओं को। इतिहास
1: जी,
2: मेरी तो एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल होता है
1: कि आज कौन सी शौर्य गाथा है।
2: जी बिल्कुल, है ना? बताइए ना।
1: जी, आज फिर बारी है बंगाल के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बंगाल और बंगाल

0: और मास्टरदा, ऐसे कितने और भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान से देश को आजादी दिलाई।
1: इतिहास
0: जी,
1: अभी भी आपने नहीं बताया कि वो कौन से क्रांतिवीर हैं जो हमारी आज की गौरव गाथा के नायक हैं।
0: जी, आपके साथ हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो आज हम बात करते हैं एक नहीं दो क्रांतिकारियों की, और वो हैं मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण रॉय।
1: जी हाँ,
0: 1930 का साल, पूरे देश में क्रांति की आग फैली हुई थी। हमारे राजनेता देशभक्त अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए थे, और हर एक क्रांतिकारी, हर देशभक्त और हर भारतवासी की एक ही अभिलाषा थी, और वो थी भारत की आजादी।
1: आजादी पाने की इसी अभिलाषा ने बंगाल के क्रांतिकारियों में भी जोश भर दिया। बंगाल के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था।
0: जी,
1: देश के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का शिकार था।
0: मिदनापुर में उन दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय चाहते थे कि अपने देश का ही नागरिक वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने प्रण किया कि हम मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तब तक मारते जाएंगे जब तक उस पद पर कोई भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया।

0: मिदनापुर के एक विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी को बुलाया गया। 7 अप्रैल 1931 को प्रदर्शनी का उद्घाटन करने शाम 7:30 बजे श्री जेम्स वहां आए। विद्यालय के कई कमरों में प्रदर्शनी लगाई गई थी।
1: विद्यालय के पहले कमरे में जेम्स पेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी के बाकी हिस्सों को देखने के लिए वो दूसरे कमरे में पहुंचे। वे जैसे ही कमरे में घुसे, एक नौजवान ने रिवॉल्वर निकाली और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वो वहां से भागे, एक दूसरे क्रांतिकारी ने उनका पीछा किया और उन पर लगातार गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरे विद्यालय में भगदड़ मच गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए कलकत्ता से खास डॉक्टर भी बुलवाए गए। डॉक्टर आए और ऑपरेशन से जेम्स पेड्डी के शरीर से एक गोली निकाली।
0: अगली सुबह एक ऑपरेशन और किया गया और उनके शरीर से एक और गोली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हालत इसके बाद भी लगातार बिगड़ती गई और 8 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का जो प्रण किया था, उसकी पहली कड़ी में वे सफल रहे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी की मौत से अंग्रेज सरकार बौखला गई, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे वो झुके नहीं। जेम्स पेड्डी की जगह एक और अंग्रेज को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका नाम था रॉबर्ट डगलस।
0: रॉबर्ट डगलस ने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम संभाल तो लिया, लेकिन वे शुरू से डरे हुए थे
1: जी।
0: उन्होंने अपने भाई और कुछ मित्रों को पत्र भी लिखे जिसमें उन्होंने इस डर का भी जिक्र किया। सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए, लेकिन क्रांतिकारियों के इन धमकियों से सरकारी कामकाज रोका तो नहीं जा सकता था। 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। श्री डगलस इस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। मीटिंग में कई सदस्य हिस्सा ले रहे थे। मजिस्ट्रेट डगलस फाइल के कागजातों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे। इतने में दो नौजवान डगलस के कमरे में घुसे। दोनों ने एक साथ डगलस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 8 गोलियां डगलस के शरीर में समा गई।
1: गोलियां चलाकर दोनों नौजवान भागे। पुलिस ने पीछा किया। उनमें से एक पुलिस की गोली से घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी का नाम था प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। उसकी तलाशी ली गई और जेब से एक पर्चा निकला जिसमें लिखा था, हिजली जेल में कैदियों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों का ये हल्का प्रतिरोध है। हमारे बलिदानों से अंग्रेज सरकार को ये सबक लेना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जाग जाना चाहिए।
0: हिजली जेल में कैदियों पर 16 सितंबर 1931 की रात जेल के सिपाहियों ने मिलकर लाठियों से प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर दत्त नाम के 2 क्रांतिकारी मारे गए। इसी घटना के बारे में प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा था जो उनकी जेब से बरामद किया गया था।
1: घायल डगलस को अस्पताल ले जाया गया। खड़गपुर से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी बुलवाए गए, लेकिन डगलस को बचाया नहीं जा सका। प्रद्योत भट्टाचार्य को पुलिस ने बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया।
0: प्रद्योत भट्टाचार्य पर विशेष अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1933 की सुबह प्रद्योत भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई।
1: रॉबर्ट डगलस की मृत्यु के बाद पीईजी बर्क को मिदनापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। पिछले 2 अधिकारियों की हत्या से नए अधिकारी बर्क घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के और भी कड़े इंतजाम किए थे।
0: 2 सितंबर 1933 को मिस्टर बर्ग की टीम टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। श्री बर्ग निर्धारित समय पर मैदान पहुंचे। उनके अंगरक्षक भी उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बर्ग मैदान में उतरे और खेलने लगे। जिस खिलाड़ी से गेंद छीनने के लिए वे आगे बढ़े, उस खिलाड़ी ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां चला दी। उन पर गोली चलाने वाले क्रांतिकारी का नाम था मृगेंद्र कुमार दत्त। उसके साथ खड़े दूसरे खिलाड़ी ने भी बर्ग पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले इस दूसरे क्रांतिकारी का नाम था अनाथ बंधु पांजा। 6 गोलियां खाकर मजिस्ट्रेट बर्ग जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई।
1: पास में खड़े पुलिस अधिकारी ने मृगेंद्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बर्ग के अंगरक्षकों ने उस पर गोली चला दी। क्रांतिकारी मृगेंद्र नीचे गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पांजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृगेंद्रनाथ दत्त की मौत अस्पताल में हो गई।
1: इसी बीच खेल के मैदान को पुलिस ने घेर लिया। खेल को रोककर सभी दर्शकों की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद 3 और क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन क्रांतिकारियों में निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय थे।
0: इन 3 पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय को 25 अक्टूबर और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को मिदनापुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
1: अपने 3 अधिकारियों की मौत के बाद अंग्रेज सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों से आखिरकार हार माननी पड़ी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर एक और भारतीय को ही चुना गया।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की, क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: श्रोताओं, हमारी आजाद जमी, आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि जान है तो जहान है। बिल्कुल सच, 100% सही बात है ना। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो ये दुनिया खूबसूरत है। जो कुछ हमारे पास है उसका हम मजा ले सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम बीमार हो गए, अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो फिर कुछ भी हमारे पास हो, दुनिया की सारी दौलत हो, सारे सुख और सारी सुविधाएं हो, लेकिन वो सभी कुछ बेमजा हो जाती हैं। तो इसी बात के मद्देनजर आपसे हम करते हैं स्वास्थ्य चर्चा। कुछ छोटी छोटी बातें जिनका आप ख्याल रखें तो आप रह सकते हैं चुस्त दुरुस्त, जिंदगी आपकी खुशनुमा रह सकती है और आप हमेशा मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल, हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ हैं वैद्य आचार्य प्रदीप त्रिपाठी जी। आप आयुर्वेद रत्न, नारी परीक्षण, स्वास्थ्य और प्रकृति की बेहतर समझ से दूसरों को भी स्वास्थ्य लाभ हेतु मार्गदर्शन देते हैं। आप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश शाखा के महासचिव थे। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में छात्र समूहों के साथ आप बहुत सक्रिय शख्सियत हैं। जड़ी बूटियों पर आपकी काफी शोध कार्य है। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम आज आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है और किस सिद्धांत पर काम करता है।
2: देखिए, आपका बहुत ही मूलभूत प्रश्न है जो लोगों के मन में आयुर्वेद को लेकर होता ही है, क्योंकि ये एक ऐसी जीवन पद्धति, एक ऐसी लाइफ स्टाइल, अगर इसको हम दो शब्दों में विभाजित करने की कोशिश करें तो आयु और वेद
1: जी,
2: दो चीज। वेद तो वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान का भंडार, जैसे अपने जानते हम चार वेद, उसी पे से आधारित वेद है। और दूसरा है आयु का विज्ञान। तो आयु को मतलब स्वास्थ्य को जीने की कला, ये जो इस पद्धति का विकास हुआ यही आयुर्वेद है। और जो आयुर्वेद के सिद्धांत की जहां तक हम बात करते हैं, तो आयुर्वेद से अलग परे हटके भी भारत की संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि हम पंच महाभूत से बना हुआ हमारा शरीर है, प्रकृति है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका मिश्रण से ही सब कुछ निर्मित है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत भी, मूल सिद्धांत इसी पे काम करता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर तीन प्रकार के चीजों से मिश्रित है, जिसको हम दोष के रूप में कहते हैं। तो आपने सुना होगा वात पित्त कफ, आयुर्वेद में आग कफ जाना जाता है। ऐसा ही एक कहा जाता है धातु, जो शरीर की स्ट्रेंथ है, विभिन्न रूप में शरीर में अलग अलग रस, मज्जा, मांस इत्यादि है, जिसको हम धातु के रूप में परिभाषित करते हैं। और तीसरा है मल, जो विजाती तत्व, टॉक्सिन शरीर में है, उसको ऐसे तीन भागों में विभाजित करके मानव शरीर की कल्पना की गई है। इससे संबंधित इसको जीने के लिए हर प्रकार की चीजें जो प्रकृति में है, जैसा कि मैंने बताया, सब चीजों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति में इन चीजों से जो भी मिश्रित है उसका शरीर पर प्रभाव है, और इस प्रभाव का आकलन, इस प्रभाव का शरीर पर प्रभाव, उससे होने वाली अच्छी बातें, उससे होने वाली नकारात्मक चीजें, इसको जीने की कला ही आयुर्वेद है।
1: आपने कहा कि जीवन जीने की कला ही आयुर्वेद है, लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कला विस्मृत हो रही है लोगों के दिलो दिमाग से। क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद के बारे में, लगभग सृष्टि के जब प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ, तभी से समकालीन आयुर्वेद का भी उद्भव है, ऐसा माना जाता है। इसलिए जो अभी तक प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध है, जिसको हमने अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब कहा है, इन सब में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का उल्लेख आता है
1: जी।
2: तो प्रकृति के उद्भव से लेके आज तक आयुर्वेद है
1: जी।
2: और अगर कोई चीज इतनी पुरानी है, इतनी सनातन परंपराओं से चली आ रही है प्रकृति में, तो निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर, चूंकि मनुष्य जब से प्रकृति में मनुष्य आया है तब से उसका शरीर है, और शरीर पर पड़ने वाला सारा प्रभाव आज भी वैसा ही है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप पंच तत्व से हम निर्मित है, तो उन पंच तत्व को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, चाहे वो मानवीय हो, चाहे वो वैज्ञानिक कारणों से विकास के कारण आ गए हो, या अन्य अन्य कारणों से नैसर्गिक रूप से कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, उन सबका प्रभाव मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाला है। अब कई सारी चीजें हमने कई बार अपने यहाँ कहा जाता है ना फुटप्रिंट, तो पुराने ऐसे लोग, मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीजें मिली, जीवन के बहुत सारे प्रमाण मिले, तो उसको हम फुटप्रिंट के रूप में याद करते हैं
1: जी।
2: तो अभी मानव उत्पित फुटप्रिंट है एक पॉलिथीन, तो प्रकृति में जो तत्व था ही नहीं, मानव ने विकास के कारण, अपनी आवश्यकताओं के कारण, उसकी सहजता के लिए उसने एक चीज का इजाद किया, उसका नाम पन्नी था, पॉलिथीन था। और धीरे धीरे पॉलिथीन, जो कि प्रकृति में नष्ट नहीं हो सकती
1: जी,
2: वो पॉलिथीन हमारे जीवन में शामिल हो गई। एक फुटप्रिंट पॉलिथीन के नाम से भी प्रकृति में है, वो पानी को प्रभावित कर रही है, वो मिट्टी को प्रभावित कर रही है, वो सामान्य जन जीवन में प्रकृति के जो पांचों तत्व मैंने बताया सबको जाने अनजाने में प्रभावित कर रही है, वायु को प्रभावित कर रही है
1: जी।
2: तो जो चीज प्रकृति ने दी ही नहीं थी,
1: हाँ,
2: हमने अपनी आवश्यकता के लिए उसको विकसित किया, और वो टॉक्सिसिटी से भरपूर थी, अब वो पन्नी हमारे शरीर को प्रभावित करने वाली जब तक उसका अस्तित्व है। तो जीवन शैली में जो भी ऐसी चीज है जो विजाती है, जो टॉक्सिसिटी रखती है, वो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालने वाली है। अब मनुष्य को उसके जीने की कला सीखना चाहिए
1: जी,
2: उसके साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है। विकास समय की आवश्यकता है,
1: बिल्कुल।
2: उस विकास को हम मनुष्य, जो रिसर्च हमारी है, जो रिसर्च के हमारे सारे दुनिया जिसमें कर रही है काम, अगर वो प्रकृति के अनुकूल हो तो वो अपने आप मानव के लिए अनुकूल हो जाएगी, मनुष्य जीवन के लिए। इवन जितने भी जीवित जिनको हम कहते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कुछ भी, सब पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रकृति के साथ हमको सामंजस्य बिठाना होगा, संतुलन बिठाना होगा, और विकास करते समय हमको हर उन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा जो प्रकृति के लिए हार्मफुल है
1: जी।
2: ये सब चलता रहेगा, इसके चलते चलते हम अपने स्वास्थ्य के लिए जितना मूल मंत्र है उसको समझना चाहिए। आयुर्वेद भी बस इतनी ही बात कहता है कि आपके शरीर में जो भी तत्व जाने वाला है वो आपकी शरीर की प्रकृति रुचि के अनुसार होना चाहिए। कई लोग से पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, वो बताते हैं मुझे पौधे लगाना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है
1: जी।
2: वैसे शरीर की भी रुचि होती है
1: जी।
2: हर शरीर अपने हिसाब से कहता है कि मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे नमकीन खाना पसंद है, मुझे कड़वा अच्छा नहीं लगता है, मुझे और किसी प्रकार का रस अच्छा लगता है। तो जैसे मनुष्य की मानवीय रुचि है, वैसे शरीर की भी अपनी एक रुचि है। अगर उस रुचि को मनुष्य पहचान ले, उसके अनुसार जीना चालू कर दे, तो कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है।
1: यहाँ मेरा एक मन में बहुत बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि अपने शरीर की रुचि को पहचानिए, लेकिन अभी जो एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि शक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए, मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए, और किसी को अगर मीठा अच्छा लग रहा है तो ये सबके लिए एक जैसी चीज जो सुनने में आ रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप?
2: प्रकृति ने आपको मीठे के नाम पे कुछ दिया था, गन्ना दिया था, अनाजों की और फलों में नैसर्गिक मिठास दी थी
1: जी।
2: हम उससे कदम एक आगे बढ़े और हमको लगा कि नहीं, हमको तो कुछ और ज्यादा मीठा चाहिए
1: जी।
2: हमने अपनी पूर्ति के लिए, उस अतिरिक्त स्वाद के लिए जो प्रकृति ने नहीं दिया था
1: जी,
2: प्रकृति ने जो दिया, उस समय एक कदम आगे बढ़े और हमने शक्कर का निर्माण किया
1: जी।
2: तो हमने निर्माण तो किया, लेकिन निर्माण करते समय, शक्कर बनाते समय जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस में हम उन सब केमिकल को शामिल कर लिया जो शरीर के लिए नुकसानदायक
1: जी।
2: शरीर की आवश्यकता तो थी, लेकिन क्या रासायनिक युक्त शक्कर की आवश्यकता नहीं थी?
1: नहीं थी।
2: हम क्यों, हमारे पास प्रकृति ने भरपूर संसाधन दिए थे उसकी पूर्ति के लिए, भरपूर फल ऐसे दिए थे, भरपूर सब्जियां ऐसी दी थी जिसमें नैसर्गिक
1: मिठास होती है,
2: लेकिन हम उससे एक कदम आगे गए। और जो कहते हैं ना उपयोग और उपभोग, तो हमने उपभोग के लिए कई सारी चीजों को विकसित कर लिया, यही आयुर्वेद और यही संतुलन, सामंजस्य प्रकृति के साथ, सामंजस्य मनुष्य के स्वयं के शरीर के साथ, सामंजस्य संतुलन का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग, ये तीनों ही शब्द आजकल बहुत सुनने में मिल रहे हैं, इनका आपस में क्या संबंध है, या ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं?
2: हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज के समय बहुत प्रासंगिक है
1: जी।
2: हमारे एक अवधारणा बहुत पहले से ही प्रचलित है, भारतीय दृष्टिकोण हर चीज को समग्र रूप से देखने का है, सबको समान रूप से सम्मिलित करके देखना। जब आयुर्वेद जब पहले आया था, जिस समय आयुर्वेद का उदय हुआ, जब मैंने बताया तो प्रकृति के साथ साथ ही आयुर्वेद है, कुछ भी अलग नहीं था, ये सब एक ही ब्रांच से निकले हुए अलग अलग शाखाएं थी। धीरे धीरे धीरे समय काल परिस्थिति में, जैसे कि होता ही है, लोगों को अपनी एक ब्रांच पकड़ के उनको लगता है कि हम इसको अकेले लेके बढ़ने वाले, अकेले लेके चलने जा रहे, तो वैसा ही आयुर्वेद के साथ हुआ। और प्राकृतिक चिकित्सा अलग हो गई, योग अलग हो गया। इवन दो प्राकृतिक चिकित्सा को देखने वाले लोगों ने, कई बार तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे आश्चर्य भी होता है, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन

0: में ही था, आयुर्वेद के ही ये सब अंग हैं ऐसा हमारा मानना है। लेकिन दुनिया की दृष्टि, भारत को, भारत के विचार को समझने के लिए अभी शायद बहुत समय लगेगा। तो विश्व स्तर पर जो लोग शोध करता हुए, जिन्होंने अलग अलग ब्रांचों पर रिसर्च की, जब हमारे यहाँ कई सारे, हम कहते ही हैं कि भारत में बहुत सारे बाहर के लोग आए, भारत का ज्ञान लिया और भारत से बाहर गए।
1: जी,
0: जब वो बाहर गए तो उन्होंने अपनी जो भी सोच समझ उनकी जितनी भी था, हमारे पूर्वजों ने और हमारे जो विषय विशेषज्ञ थे, हमारे जो जानकार लोग थे, उन्होंने तो कभी इसको अलग अलग नहीं किया। लेकिन जब ये ज्ञान वहां से वापस लौट कर आया तो ये बिल्कुल विभाजित हो गया, इसको कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि ये सब अपूर्ण हो गए। तो इसलिए कई सारी बीमारी आती है तो हम उसको कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में ये करिए, लेकिन अब नहीं हो पाता है, ठीक नहीं हो पाता है, तो प्राकृतिक चिकित्सक या फिर आयुर्वेद या फिर योग सब उसको हाथ जोड़ के मना कर देते हैं। अगर इसको समग्र रूप में देखा जाता तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बीमारी ऐसी होती जिसका समाधान आयुर्वेद या उसकी विभिन्न प्रकार की शाखाएं नहीं कर पाती। तो इसलिए समग्र रूप से इसको देखना चाहिए, इसको आयुर्वेद से निकली हुई भारतीय जीवन पद्धति में ही विभाजित विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस मानना चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर हम आयुर्वेद को समग्रता से देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता का भी हमारे भीतर जागरण होता है। लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में, अब तो यहाँ तक बात आ गई कि लोग घर बनवाते वक्त ये भी ख्याल रखने लगे हैं कि अस्पताल पास में है या नहीं, कितनी दूरी पर है। आयुर्वेद और हमारे यहाँ की पद्धति ये कहती है कि आप स्वस्थ होइए, परंतु अभी हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने बीमार होने की चिंता ज्यादा कर रहा है, वस्तुतः हम ये नहीं सोच पाते कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति को और आयुर्वेद को आप किस तरह देखते हैं?
0: देखिए, आयुर्वेद का मंत्र है स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे।
1: जी,
0: स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद है।
1: जी,
0: अब व्यक्ति बीमार हो गया तब फिर उसको चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती
1: जी।
0: है, और आयुर्वेद में उपचार बहुत छोटा सा भाग है। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे इसलिए उसको क्या आहार होना चाहिए, क्या उसका विहार मतलब उसकी दिनचर्या क्या होना चाहिए, उसका रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए, आम भाषा में बोलूं तो इस पे पूरा आयुर्वेद का फोकस है।
1: जी,
0: और मॉडर्न मेडिसिन में उसमें बीमारों के उपचार के लिए विधान है।
1: जी,
0: आयुर्वेद का सिद्धांत जो मैंने पहले आपको बताया वो है बीमार व्यक्ति का उपचार के लिए। तो ठीक है, आयुर्वेद ने बहुत कुछ कहा भी है, लेकिन उससे ज्यादा भाग जो है 70% आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे, इवन दो जो माँ बच्चे को जन्म देने वाली है वो बच्चा स्वस्थ हो, उसके लिए 1-2 साल पहले से आयुर्वेद में कहा गया।
1: जी,
0: तो गर्भ संस्कार जिसको कहा है वो गर्भ संस्कार कहा है वहां पर। संस्कार मतलब एक गर्भ धारण करने से पहले एक बहन को, एक माँ को अपने शरीर को किस प्रकार से रखना चाहिए कि ताकि उसका बच्चा जो होने वाला है भविष्य में, जो जन्म आने वाला है प्रकृति पर, वो भी किस प्रकार से स्वस्थ हो, आयुर्वेद तो वहां से सोचना चालू करता है।
1: आपने जब बात कही गर्भ संस्कार की तो मुझे एक चीज और याद आ रही कि दादी नानी के नुस्खे में बच्चों के लिए पहले घुट्टी बनाना और बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये दादी नानी के नुस्खे वापस फिर से छाने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: एक तो ये बहुत अच्छा है कि आयुर्वेद किसी न किसी रूप में हमेशा से आम जनमानस के बीच में बना हुआ है।
1: जी
0: हाँ, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। किसी समय जब ये सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था, पुस्तकें छपा करती थी, उस समय बहुत सारी दादी के 100 नुस्खे, नानी के नुस्खे ऐसी किताबें आती थी, मुझे याद है।
1: जी।
0: उसके पहले भी जब पुस्तकें नहीं हुआ करती थी तो परंपरागत रूप से परिवारों में जो घर का बुजुर्ग या घर का जो सीनियर सदस्य होता था वो खुद इतना जानकार होता था कि उसको क्या चीजें कब खाना है, नहीं खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब पता होता था। धीरे धीरे समय बदला, विज्ञान आया, विज्ञान ने कुछ प्रिंटिंग उपलब्ध कराई तो एक किताबें आने लगी, किताबों के बाद फिर डिजिटल मीडिया आ गया और काफी कुछ आयुर्वेद उसमें चलता है।
1: जी।
0: तो आयुर्वेद में भी शोध की, रिसर्च की जो पहले लोग कर गए हैं, अभी तो उसको डीकोड करना ही बाकी है। चूंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बाहरी जो इन्वेजन हुआ भारत में, उस इन्वेजन के कारण हमारी जो मूल चीजें थी वो या तो लुप्त हो गई या उसको प्रयास पूर्वक लुप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये विज्ञान की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से मैं बताना चाह रहा हूँ, कई सारी चीजें उसमें ऐसी आ गई जो शायद धरातल पे थी ही नहीं।
1: जी।
0: जो ये सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया में स्वानुभूत मतलब मैंने कोई चीज खा के अनुभव की और मैंने कोई ठंडा पानी पिया और ठंडा पानी पीने से मेरी एसिडिटी खत्म हो गई, मैंने अपना एक वीडियो बनाया और उस पर डाल दिया।
1: बिल्कुल।
0: आयुर्वेद कहता है, जो विज्ञान अब मानने लगा है, विज्ञान ने बहुत बाद में मानना चालू हो गया, प्रत्येक मनुष्य का डीएनए अलग है। ये जब डीएनए पे थ्योरी आई तब बात सिद्ध हुई, बट आयुर्वेद में तो बरसों बरस से इसलिए हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की तासीर अलग है, हर व्यक्ति के पर प्रभाव पड़ने वाली चीजें अलग अलग है। तो कैसे जो एक दूसरे पे काम कर रही है कोई औषधि या कोई वनस्पति या कोई आहार, वो दूसरे पे भी काम करेगा? कर ही नहीं सकता, असंभव है। आयुर्वेद तो नैनो टेक्नोलॉजी है
1: जी।
0: तो इसलिए जो एक व्यक्ति पे एप्लीकेबल है वो दूसरे पे एप्लीकेबल होगा, इसका कोई आधार नहीं है
1: जी।
0: इसलिए मेरा इस पे निवेदन है कि जो हम सोशल मीडिया देखते हैं इसको देखें, नॉलेज बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले आयुर्वेद का जो भी जानकारी रखता है, जो भी ज्ञान रखता है, उससे कंसल्ट जरूर करें, उसकी सलाह जरूर लें। छोटी से छोटी चीज भी शरीर पे अगर जो फायदा पहुंचाती है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना होता हो
1: जी।
0: कई बार कह दिया जाता है कि नहीं नहीं आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप ज्यादा रोटी खा लेंगे वो भी नुकसान करती है, ज्यादा पानी पी लेंगे तो भी नुकसान करता है, ज्यादा आंवला भी, आंवला तो कहते हैं ना अमृत है, बट ज्यादा आंवला खा लेंगे तो भी तिल्ली को नुकसान हो जाएगा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं वो डैमेज हो जाएगी, ज्यादा प्याज खा लेंगे, ज्यादा आलू खा लेंगे, ज्यादा मिर्ची खा लेंगे, जब ये सामान्य सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है, तो कोई आप मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी, सबका साइड इफेक्ट होता है।
1: आपकी बात सुन के जो मुझे ख्याल आ रहा है वो ये कि 20 सेकंड की रील में इतना सारा ज्ञान देखने को मिल रहा है आजकल, वहाँ ये बात जरूर कहना लाजमी है कि गोंद कतीरा किसी एक को ठंडक पहुँचा रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि उसका एक पूरा ट्रेंड चल जाए और सबके सब वही लेने लगे। वहीं आजकल बीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और सब लोग तुरंत उसको चालू भी कर देते हैं, गर्म पानी का भी किसी को नुकसान किसी को फायदा। तो आपकी बात से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि हर व्यक्ति अलग है, तो हर व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट है हमें उससे ज़रूर एक बार राय मशवरा करना चाहिए। इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया की रील्स देखकर कम से कम विश्वास ना करें।
0: इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसा आयुर्वेद तो आम व्यक्ति की पहुँच का है
1: जी,
0: तो किसी समय आज से 50-100 साल पहले समय मान सकता हूँ, घर की माँ या दादी नानी जो जन्म लेता था बच्चा, उसके ज्योतिषी गणना के बाद, उसकी तासीर उसको देखने के बाद, और जन्म लेने के पहले माँ को देखने के बाद ये बता दे, जो गर्भवती महिला होती थी उसको देख के बता देते थे कि लड़का होगा या लड़की होगी
1: जी।
0: उसके शरीर के आकार, स्वभाव, रूप, स्वरूप को देख के बता देते थे कि इसकी प्रकृति वात होगी, पित्त होगी, कफ होगी
1: जी।
0: ये हमारे पूर्वजों का अनुभव था, क्योंकि हमें सिखाया गया था, हमारा अध्ययन, इतना अध्ययनशील लोग थे हम, इतने ज्ञानवान लोग थे हम लोग, कि हमको ये सब चीज पता होती थी कि जो जन्म लिया हुआ बच्चा है इसकी प्रकृति क्या है। तो घर की माँ जानती थी कि उसके बच्चे की तासीर क्या है, घर की दादी, दादा, नाना, नानी जानते थे कि उसकी बच्चे की तासीर क्या है। इसलिए उसको जीवन भर किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें उसको खिलाना है, कौन सी चीजें नहीं खिलाना है, ये बचपन से जन्म लेने वाले समय घर के लोगों को पता होता था
1: जी।
0: लेकिन जो सोशल मीडिया पे ज्ञान चलता है, जो ज्ञान दे रहा है उसको नहीं पता है कि उसका ज्ञान कौन लेने वाला है, वात वाला ले रहा है, कफ वाला ले रहा है, पित्त वाला ले रहा है। उसने तो कहा मेरे घुटनों में दर्द है, गोंद कतीरा खाइए, उसमें सब्जा के बीज मिलाइए और ये खाइए, लेकिन कफ प्रकृति है, उसकी वात प्रकृति है, उसकी कौन सी प्रकृति है, कौन से ऋतु में वो लेने वाला है, कुछ भी नहीं
1: जी।
0: तो इसलिए मेरा मानना है और सलाह है ये विशेष रूप से कि कृपया उस ज्ञान को, जानकारी लीजिए, अच्छी बात है, बट उसको अप्लाई
1: बिल्कुल बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के अपने शरीर पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी अच्छे नहीं होते हैं। एक और सवाल ये है कि कई बार ऐसा कहा जाता है, लोगों से सुना जाता है कि आयुर्वेद में डायग्नोसिस हो जाता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, ये भ्रांति है या सच है?
0: इसमें दोनों बातें ठीक है
1: जी।
0: आज तो चूंकि बहुत प्रकार के इक्विपमेंट्स है, बहुत प्रकार की संसाधन उपलब्ध है, जिसके कारण कौन सी बीमारी है, किसको बीमारी है, वो पता चल जाता है
1: जी।
0: किसी समय में जो नाड़ी का एक ज्ञान हुआ करता था, अब वो लुप्त प्राय है, नहीं मिलता है ऐसा ज्ञान। तो लोग जो वैद्य होते थे, जो नाड़ी वैद्य होते थे, वो नाड़ी पर हाथ रख के बता देते कि कौन सी बीमारी आपको है, कौन से ऑर्गन में है और कौन सी बीमारी होने की संभावना है। ये जो सबसे बड़ा ज्ञान था वो ये था कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद आपको ये बीमारी इस ऑर्गन में हो सकती है अगर आपने थोड़ी सी भी इस प्रकार की लापरवाही की
1: जी।
0: जो आज भी मिसिंग है, ये किसी मशीन में, किसी इक्विपमेंट से आज के 10 साल बाद आपको कौन सी बीमारी नहीं बताई जा सकती, लेकिन हमारा नाड़ी वैद्य आज से 10 साल बाद क्या बीमारी हो सकती है वो बता दिया करता था। तो ये ज्ञान तो बहुत विकसित था। अब धीरे धीरे ये हुआ कि आज परीक्षण करना आसान है, हो जाता है, कई सारे तरीके हैं, हमारी प्रकृति क्या है ये पता चल जाए। लेकिन समाधान जो आपने पूछा है कि उसके ट्रीटमेंट में, जैसा लोगों का परसेप्शन है, क्या आपने आइडेंटिफाई तो कर ली बीमारी, लेकिन सॉल्यूशन जो आपने दिया या दवाई जो आपने दी उससे फायदा नहीं हुआ मुझे। कुछ बात उनकी सही है, बट इसका अगर बहुत गहराई में आप जाएंगे तो एक बात यह है कि जब आयुर्वेद का कोई विशेषज्ञ बताता है कि आपके जो शुगर की या ये डायबिटीज़ की या ये जॉइंट पेन की जो बीमारी आई है, ये सो एंड सो रीजंस है। मरीज का प्रयास ये होता है कि मुझे 15 दिन बाद में ब्लड टेस्ट कराऊंगा, वो ठीक हो जाएगी क्या। उसका टारगेट ये है कि मुझे 15 दिन बाद मेरी शुगर कंट्रोल आ जाए तो ही आयुर्वेद सफल है। उसका पैमाना नापने का अलग है
1: जी,
0: आयुर्वेद का उपचार का पैमाना बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद रूट ऑफ कॉज में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारे पास कोई आयुर्वेद के जो जानकार लोग हैं उनको पता है कि उनके पास कोई ऐसे चमत्कारिक सॉल्यूशन नहीं होता है कि वो क्यों, क्योंकि आयुर्वेद में उनको दिया ही नहीं है ये फैसिलिटी। और फैसिलिटी नहीं देने के पीछे कारण है, तो उसका मूल कारण ये है कि आयुर्वेद चाहता है कि कोई भी विकार आया है शरीर में, कोई भी बीमारी आई है, तो उसका जो रूट ऑफ कॉज है वो ठीक होना चाहिए। रूट ऑफ कॉज का पेशेंस जो लोगों के पास नहीं है, इसलिए लोग बहुत जल्दी राय बना लेते हैं कि डायग्नोसिस तो हो गया लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मेरा उन सबसे निवेदन ये है कि आयुर्वेद में सॉल्यूशन हर प्रकार से है।
1: अब हम आ जाते हैं वर्तमान जीवन शैली पर, क्या ये स्वास्थ्य के प्रति चिंताएं और चुनौतियां बढ़ा रही है?
0: बिल्कुल बढ़ा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, पूरे देश से एक अपील है उनकी, और उन्होंने कहा कि देश में 10% तेल का उपयोग हर व्यक्ति को कम करना चाहिए। तेल का दुष्प्रभाव शरीर पर क्या आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री इसको समझ रहे हैं
1: जी।
0: इसका मतलब एक बात ठीक है, उनके पास ये डाटा है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपेयर में जितना हम कंजम्पशन ऑफ ऑयल कर रहे हैं वो शायद ज्यादा है,
1: ज्यादा है,
0: इसलिए उनकी वो अपील है। ज्यादा ऑयल का कंजम्पशन आप देखिए, आप पहले आयुर्वेद में मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने तो आज तक पढ़ा भी नहीं, अभी भी नहीं पढ़ा है कि किसी शास्त्रोक्त में सिद्ध साहित्य में पनीर का उल्लेख है। पनीर था ही नहीं। भारत में कहा जाता है कि दूध की नदियां बहती थी, इतना गोवंश हमारे पास तब भी था, आज भी है, कि उस गोवंश से जो भी उत्पाद होता था वो दूध मुख्य उत्पाद हुआ करता था। दूध से बनने वाले जितने उत्पाद हैं, बाय प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, उससे चाहे घी बनता हो, चाहे मक्खन बनता हो, कृष्ण जी को मक्खन पसंद था, पूरा मक्खन का उपचार, लेकिन कृष्ण जी को पनीर पसंद नहीं था। जब हम मक्खन बनाना जानते थे, जब हम घी दूध का अंतिम उत्पाद घी बनाना जानते थे, तो क्या हम पनीर बनाना नहीं जानते होंगे? बिल्कुल जानते थे, लेकिन पनीर हमारी शरीर की आवश्यकता नहीं थी
1: जी।
0: लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि पनीर पे मैं क्या ही बोलूं तो अच्छा है, हर घर में क्या हो रहा है पनीर को लेके हम सब जानते हैं। बाहर हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम क्या ऑर्डर करते हैं वो हम जानते हैं। किसी भी आप शादी पार्टी में चले जाइए, कम से कम एक दो डिश तो पनीर होती है। ऐसे ही आप जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, ये फास्ट फूड स्वाद के लिए हो सकता था, ये फास्ट फूड किसी दिन विशेष के लिए हो सकता था, ये फास्ट फूड डेली के लिए तो नहीं था। आज आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं कई सारे मेट्रोज में जाता हूँ लेक्चर वेक्चर देने, तो यंग जनरेशन के लोगों से जब, नव विवाहित लोगों से जब मेरी बात होती है, क्योंकि पति पत्नी दोनों जॉब में
1: जी।
0: तो वहां पर नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, किचन लेस होम, मतलब घर में किचन की जरूरत नहीं है,
1: नहीं है।
0: तो फूड कहाँ से आ रहा है? पैक्ड फूड। अब पैक्ड फूड में निश्चित रूप से उस खराब नहीं हो बनाने वाले की चिंता ये होगी, तो कोई चीज खराब ना हो उसके लिए प्रिजर्वेटिव ही तो एक ही मात्र समाधान है, कि आपको उसको प्रिजर्व करना होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो जिस चीज में अगर प्रिजर्वेटिव मिला दिया है और वो आप खाने वाले हैं, तो शरीर का काम क्या है, जो फूड आप लेते हैं डे टू डे लाइफ में, शरीर का काम है उसको फर्मेंट करना। फर्मेंट करना मतलब सादा भाषा में बोलूं तो मैं उसको सड़ाना। और प्रिजर्वेटिव का काम क्या है? चीजों को सड़ने से रोकना। तो जो आप फूड ले रहे हैं उस फूड में प्रिजर्वेटिव शामिल है, वो कोशिश कर रहा है कि फूड ना सड़े। शरीर पूरी ताकत लगा रहा है कि जो इस व्यक्ति ने खाया है वो मैं इसको पूरा डाइजेस्ट कर लूं, इसको सड़ा दूं, इसको फर्मेंट कर लूं, और फर्मेंट करने के बाद जो शरीर को लगना वो लग जाए। तो वाइस वर्सा हो गया। तो जो आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, जो आप फ्रोजन फ्रूट खा रहे हैं, जो आप जंक फूड खा रहे हैं, जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं, सब में प्रिजर्वेटिव है। और आश्चर्य मुझे इस बात का है कि जो बीज लगा रहे हैं जिसको हम हाइब्रिड, पहले उसके अलग अलग शब्द चलते थे, उस पर नहीं जानना चाह रहा मैं, बट जो हाइब्रिड सीड है, वो हाइब्रिड सीड में इस बात का भी ट्रीटमेंट हुआ है कि उससे जो फल या सब्जी लगने वाली है उसके टेस्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, चीन से जो बीज भारत में आयात होते हैं फलों के सब्जियों के, उस बीज में टेस्ट इन्हांसर उसके बीज के समय ही डला हुआ है। मतलब वो स्वाद उस फल का नैसर्गिक भी नहीं बचा है, कलर भी, स्वाद भी, साइज भी
1: जी।
0: भिंडी आप पहले खाते थे, लौकी आप पहले खाते थे, आज भिंडी आपने, मुझे नहीं लगता बाजार में कोई भिंडी ऐसी मिलती है जो सब एकदम स्ट्रेट है, एकदम उंगली के समान सीधी, एक भी भिंडी आपको तिरछी टेढ़ी नहीं मिलेगी। एक भी लौकी आपको तिरछी आड़ी तिरछी नहीं मिलेगी, सब एकदम बढ़िया चमकती हुई फ्रेश फर्स्ट क्लास मिलेगी। किसकी देन है ये, केमिकल की?
1: बिल्कुल।
0: तो वेजिटेबल में जो पेस्टिसाइड यूज हुए
1: जी,
0: ये एक अलग भाग है। बट आपका जो प्रश्न है कि आज के समय का जो आहार है, दिनचर्या है, विशेषकर आहार, तो हम जंक फास्ट पैक्ड फूड जिसकी ओर जा रहे हैं, ये शरीर के लिए बहुत घातक है
1: जी।
0: जो मोटापे की समस्या है बहुत तेजी से देश भर में बढ़ रही है। ये मोटापा आपको जान के आश्चर्य होगा उन देशों में बहुत ज्यादा है जहां पर बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। और हम तो उससे ऊपर चल के जंक और फास्ट फूड खा रहे हैं, तो हमारा तो भगवान ही मालिक है आगे क्या होने वाला है।
1: आपकी बात सुनकर जो मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है कि पहले जिंदगी धीमी हो सकती थी पर यात्रा भी बड़ी धीमी होती थी, हॉस्पिटल तक, दवाइयों तक, बहुत लेट एज में हम लोग पहुंचते थे। आज फास्ट फूड का ज़माना है और हॉस्पिटल का जो हमारा दौड़ है वो भी बहुत फास्ट हुई है अभी पिछले कुछ सालों से। युवाओं में बहुत तेज़ी से कार्डियक अरेस्ट का, डायबिटीज़ का चलन आप भी देख ही रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो कहीं ये इतनी फास्ट रन फास्ट फूड के कारण तो नहीं है?
0: नहीं नहीं, मैंने आपको कहा ना, वो देश जहाँ पर बॉइल्ड चीजें लेते हैं, बॉइल्ड ही खाते हैं, वहां पर ओबेसिटी बढ़ रही है। उस ओबेसिटी बढ़ने का कारण ये कि मेटाबॉलिक सिस्टम कमजोर है। भारत में तो परंपरागत रूप से ऐसा था कि हमारे यहाँ दक्षिण भारत पूरा मसालों से भरपूर कहा जाता है। आज भी दक्षिण भारत के मसाले पूरे भारत में जाते हैं, इवन विदेश जाते थे, और दक्षिण भारत के कारण तो भारत में अंग्रेज आ गए थे, कोचीन में आए, और सबसे पहले वहां से उन्होंने मसालों का व्यापार करना प्रारंभ किया। उन मसालों का महत्व भारतीयों को समझना चाहिए, वो दालचीनी का, वो जायफल का, वो जावित्री का, वो बड़ी इलायची का, वो लौंग का, वो हींग का, वो इम्पोर्टेंस जो हमने छोड़ा, दुनिया आप समझ रही है। मैंने भी बताया बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने वाले मोटापे हुए। हम तो सब प्रकार की चीजें खाते थे, लेकिन हमारे मसालों का इतना साइंटिफिक यूज हमारी घर की गृहिणी करती थी कि हमें मोटापा हावी नहीं होता था।
1: बिल्कुल,
0: उन मसालों के कारण
1: जी।
0: अब धीरे धीरे हमारे जीवन में मसाले रिप्लेस हुए, और जो फास्ट फूड में अजीनोमोटो जैसे बहुत सारे मसाले, कलर एनहांसर और पता नहीं क्या क्या डलता है, वो मसाले नैसर्गिक चले गए और ये दूसरे मसाले हमारे जीवन में आते चले गए
1: जी।
0: इन मसालों का प्रभाव ये हुआ कि जो हमारा मेटाबॉलिक था वो कमजोर होता चला गया, जो प्रिजर्वेटिव हमारे जीवन में बढ़ा उसने हमारे लीवर को फैटी लीवर में कन्वर्ट करता चला गया, जो हमारी इंटेस्टाइन थी जहाँ पे अम्ल से छार, छार से अम्ल का हमारा प्रोसेस होता था, वहां पर अम्लीता बढ़ती चली गई, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, एसिडिटी आ गई, लोगों के जीवन में डेली एंटासिड आ गया, और उस एंटासिड से कई सारी समस्याएं आने लगी, बीपी बढ़ने लगी, और पता नहीं क्या क्या समस्याएं धीरे धीरे जीवन में आ गई। अब अगर ये युवा पीढ़ी अवेयर नहीं होती, अब युवा पीढ़ी अवेयर जब होगी, जब उसको पता हो, वो पता घर के पेरेंट्स से होगा, माता पिता से होगा, माता पिता बता दे, बच्चा उसको समझ ले, एक चुनौती है। तो सबसे पहले हमको भारत के साहित्य पर, भारत के नॉलेज पर
1: जी,
0: भारत की जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो एंशियंट अपनी बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य है, नॉलेज है, इस पर बिलीव सिस्टम खड़ा करना होगा
1: जी।
0: अगर वो बिलीव सिस्टम नहीं खड़ा कर पाए तो हम दिनचर्या जो हम कहते थे ना पहले, सूर्य चिकित्सा होती है, आपने सुना होगा
1: जी।
0: अभी सूर्य चिकित्सा पे एक पुस्तक आती है जिसके लेखक विदेश के हैं, जर्मनी के एक सज्जन है, उन्होंने सूर्य चिकित्सा का सिद्धांत, अंग्रेजी बुक है वो, उस पे लिखा हुआ है। अब दुनिया में हमको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? बाहर से।
1: बाहर से
0: ज्ञान किस पे मिल रहा है? सूरज पे।
1: सूरज
0: को भारत के लोग क्या मानते थे? देवता मानते थे। एक महाभारत का प्रसंग है कि उनको कहा था कि सारे वस्त्र खोल के सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें सूर्य की ऊर्जा मिल जाएगी, और वो अपना एक वस्त्र पहने रहते, और बाद में वो वस्त्र शरीर का अंग कमजोर हो जाता और वहां पे शक्ति मारते और वो खत्म हो जाता। मतलब सूर्य की एनर्जी की एनालिसिस जो हमने की, वो दुनिया तो अभी कर रहा है, बहुत समय लगेगा दुनिया को वहां पहुंचने में
1: जी।
0: उस सूर्य को हम जल चढ़ाते थे
1: जी।
0: सूर्य को जब आप जल चढ़ाएंगे तो सूर्य की जो रोशनी आपके सुबह आपके शरीर पर पड़ती है, उसके शरीर को होने वाली कई सारी बीमारियां, विशेष करके आंख से संबंधित बीमारियां, जो आज की तारीख में हर बच्चे को चश्मा चढ़ा हुआ है, वो आंख से संबंधित बीमारी का बहुत बड़ा कारण था सूर्य को नहीं देखना
1: जी।
0: अगर सूर्य की पहली किरण के उठ के साथ हमने सूर्य के दर्शन कर लिए होते, 10-12 सूर्य नमस्कार लगा लिए होते, शायद आंख की बीमारी नहीं होती। आज जो डिप्रेशन की बीमारी है जिसको हम मानसिक अवसाद कहते हैं, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, याददाश्त की हम कमजोरी कहते हैं जिसके कारण बच्चे की याददाश्त कमजोर हो जाती है, अगर उस बच्चे ने सूर्य नमस्कार लगाया होता, अगर उस बच्चे ने सुबह उठ के सूरज के दर्शन किए होते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसको आंखों से संबंधित, स्किन से संबंधित, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होती। ये हमारे शास्त्रों में था, लेकिन कितने बच्चे अभी सुबह का सूरज उठ के देख पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत अच्छा रेशो है अभी
1: जी।
0: प्रकृति में हमने पंच तत्व कहा, जिसमें पृथ्वी सबसे बड़ा तत्व है। अब उस पृथ्वी में हम कितने लोग अपने जीवन में रोज उस मिट्टी पे चल पा रहे हैं? 5 मिनट भी मुझे बताइए। घर में चलते हैं चप्पल पहन के, घर से निकलते हैं जूते पहन के, 24 घंटे में, बच्चे तो छोड़िए, बुजुर्ग भी बड़े भी उस मिट्टी के संपर्क में आ रहे, तो मिट्टी से तो हम डिस्कनेक्ट है, उस घास से हम डिस्कनेक्ट है, जिस घास पे चलने से हमारे रक्त का संचार और शुद्ध प्राणवायु शरीर में बढ़ जाती थी, वो हमारे संपर्क में ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि बच्चों को महीने में एक दिन इन प्रकृति के सभी पांचों तत्वों से कैसे उसका कनेक्ट हो सकता है
1: जी,
0: कम से कम कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए।
1: आपकी बातों से जो जाहिर सी बात है वो ये है कि अपनी जड़ों से जो जो हटा है वो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है, इसलिए लौटिए अपनी संस्कृति की तरफ, लौटिए अपनी उन अच्छी बातों की तरफ जो हमें बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी। मैं आपका आज बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप न सिर्फ हमारे स्टूडियो में आए बल्कि आपने इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और बहुत स्पष्टता के साथ लोगों में आयुर्वेद को लेकर एक समझ बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी सुनने वालों का भी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रित अतिथि विशेषज्ञ थे वैद्य प्रदीप त्रिपाठी। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और आपके साथ थी मैं मनीषा चतुर्वेदी। कार्यक्रम आमने सामने अब समाप्त होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

तो श्रोताओं, आपने अभी सुना कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। छोटी छोटी कुछ बातें जिनका ध्यान रख करके हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। वैसे तो कहा नहीं जा सकता है कि कब कौन सी बीमारी किस तरह से हमें आ घेरेगी, लेकिन अगर हमें बीमारियों के बारे में जानकारी हो तो शुरुआती लक्षण को देखते ही हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं, और अगर हम जल्दी उसके पास पहुँचते हैं तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और बहुत सी परेशानियों से हम बच जाते हैं। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमारे आहार व्यवहार की हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए, हमारी दैनिक दिनचर्या किस तरह की हो। कुल मिलाकर इस तरह की कुछ बातें इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं और आपको वो बातें पसंद भी आती हैं और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी हैं वो बातें। तो उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बहुत कुछ अभी आगे आपके लिए है, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए रेडियो आज़ाद हिंद से, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: 15 फरवरी सोमवार को स्वामी जी मद्रास से कलकत्ता जाने वाले जहाज पर चढ़े। कोलंबो से मद्रास तक लगातार व्याख्यान, वार्तालाप, साक्षात्कार आदि से वे बहुत थक गए थे। लोकमान्य तिलक ने उनसे पुणे आने के लिए बहुत अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था, परंतु प्रबल इच्छा होते हुए भी स्वामी जी ने पुणे की यात्रा स्थगित रखी। कुछ दिन विश्राम की आशा से ही उन्होंने स्थल पथ छोड़कर जल पथ से कलकत्ते की यात्रा की। वे मन ही मन सोच रहे थे,
1: हाँ, बहुत थक गया हूं। इन अभिनंदन सभाओं और व्याख्यानों को अब थोड़े दिन के लिए विराम देना पड़ेगा। मैं हिमालय की गोद में विश्राम करना चाहता हूँ।
2: स्वामी विवेकानंद के भारत लौटने का समाचार फैलने के समय से ही बंगाल प्रांत और विशेषकर कलकत्ता शहर बड़ी उत्सुकता से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके मद्रास से रवाना होने का समाचार पाकर नागरिकों की ओर से संयोजित स्वागत समिति अनेकानेक तैयारियां करने लगी।
0: स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ जब जहाज पर से खिदीरपुर में उतरे तो उन्होंने देखा कि उन्हें सियालदह से ले जाने के लिए एक खास ट्रेन खड़ी है। वे उस ट्रेन पर सवार होकर सियालदह के प्लेटफॉर्म पर उतरे। सहस्त्र कंठों से जयकार गूंज उठी, जय श्री राम कृष्ण देव की जय, जय श्री विवेकानंद की जय। स्वामी जी ने जनसमूह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाबू नरेंद्रनाथ सेन तथा अभ्यर्थना समिति के प्रमुख सदस्यों ने मुश्किल से भीड़ को पार कर उनके सम्मुख उपस्थित हो सके। उन्हें फूल मालाएं पहनाई। स्वामी जी सेवियर दंपत्ति के साथ चार घोड़े वाली गाड़ी पर सवार हुए। यहां भी युवकों ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी से घोड़ों को अलग कर खुद ही खींचने लगे। सुसज्जित तोरणों को पार कर गाड़ी रिपन कॉलेज में आ रुकी। थोड़ी देर तक भक्तों से मिलजुल कर बाग बाजार के पशुपतिनाथ बहादुर के घर अपने गुरु भाइयों के साथ भोजन किया। फिर शाम को काशीपुर के शील महोदय के मकान में आए। यहीं वे अपने साथियों के साथ ठहरे।
2: वहां दिन रात मिलने वालों का तांता लगा रहता। उसके बाद शुरू हुआ स्वागत समारोह का सिलसिला। 28 फरवरी को शोभा बाजार के राजप्रसाद में जन समारोह हुआ। लगभग 5,000 लोग उपस्थित थे। स्वामी जी ने वहां जो भाषण दिया था, लोगों ने उसे मंत्रमुग्ध होकर सुना। उन्होंने देशवासियों को उद्बोधित किया, युवकों को पुकार कर कहा,
1: मैं तुम्हारे पास इन गरीब, अज्ञ, अत्याचार पीड़ितों के लिए सहानुभूति की मांग कर रहा हूं। इसी मुहूर्त में उस पार्थ सारथी के मंदिर में जाओ जो गोकुल में दीन, दुखी, गरीब गोपों के सखा थे, जिन्होंने अपने बुद्ध अवतार के रूप में राज पुरुषों के आमंत्रण को अस्वीकृत कर एक वैश्या का निमंत्रण ग्रहण करके उसका उद्धार किया था। जाओ, उनके पास जाकर साष्टांग प्रणाम करो और उनके सामने एक महान बलिदान दो। बलिदान, जीवन का बलिदान, और वो उनके लिए जिनके लिए वे युग युग में अवतीर्ण होते हैं, जिनसे वे अत्यधिक प्यार करते हैं, दीन, दुखी, पतित, उत्पीड़ितों के लिए। तुम लोग समग्र जीवन भर इन 30 करोड़ भारतवासियों के उद्धार का व्रत ग्रहण करो जो दिन पर दिन डूब रहे हैं।
0: अपनी जन्मभूमि में खड़े होकर विवेकानंद ने कल्पना प्रिय और भावुक नाम से प्रचारित तथा उपहासित बंगाली युवकों से मातृभूमि के लिए महान बलिदान की प्रार्थना की।
1: वीर बनो, श्रद्धा संपन्न बनो, चरित्र के तेज व वीर्य को जागृत कर महान उत्साह के साथ कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। इस कलकत्ता नगरी के राजपथ में एक साधारण बालक की तरह मैं भी खेलता हुआ घूमता फिरता था। इच्छा होती है आज इसी धूल में बैठकर तुम लोगों से मन की बातें खोल कर कहूं। हे युवकों, मेरे इस कार्यभार को तुम लोग ग्रहण करो। इस कार्य की उन्नति और विस्तार को मेरी कल्पना से कहीं आगे बढ़ा ले जाओ। मैंने सूचना मात्र दे दी है, केवल दिग्दर्शन करा दिया है। तुम लोग इसकी पूर्ति करो। वर्तमान युग की जिम्मेदारी व कर्तव्य को समझ लो। अन्य किसी देश के युवकों के कंधे पर कभी इतना बड़ा भार नहीं पड़ा था। मैंने लगभग पिछले 10 वर्ष से सारे भारत का भ्रमण किया है। मेरी ये दृढ़ भावना है कि युवकों के बीच में से ही वो शक्ति प्रकट होगी जो भारत को उसके योग्य आध्यात्मिक अधिकार में प्रतिष्ठित करेगी।
0: उन्होंने कहा, सामने एक जीता जागता गुणयुक्त आदर्श न रहने पर जातीय चरित्र कभी गठित नहीं होता।
1: किसी महान आदर्श पुरुष के विशेष अनुरागी बनकर उनके झंडे के नीचे खड़े हुए बिना कोई भी राष्ट्र उठ खड़ा नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण देव में हमने इसी प्रकार के धर्मवीर, इसी प्रकार के एक आदर्श को प्राप्त किया था। यदि वो राष्ट्र उठना चाहे तो मैं ऊंचे स्वर से घोषित करता हूं, इसी रामकृष्ण देव के नाम के लिए सबको मतवाला बनना पड़ेगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय कल्याण के लिए, हमारी धार्मिक उन्नति के लिए, कर्तव्य बुद्धि द्वारा परिचालित होकर इस महान आध्यात्मिक आदर्श को तुम्हारे सम्मुख स्थापित कर रहा हूं। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, इसके लिए प्रभु का काम रुका ना रहेगा। वे मामूली धूली कणों से भी अपने कार्य के लिए सैकड़ों हजारों कर्मियों को उत्पन्न कर सकते थे। उनका नाम लेकर कार्य करना तो हमारे लिए महान सौभाग्य व गौरव की बात है।
0: अपनी जन्मभूमि में लौटकर स्वामी जी ने केवल अभ्यर्थना व संवर्धना ही प्राप्त नहीं की। पाश्चात्य देशों में जिन भारतीयों ने ईसाई पादरियों के साथ सम्मिलित होकर स्वामी के विरुद्ध तरह तरह की झूठी अफवाहों का प्रचार किया था, वे स्वदेश में भी शांत नहीं रहे। नवविधानी ब्रह्म समाजी श्री बी मुजुमदार ने स्वामी जी के आचरण व चरित्र के संबंध में अत्यंत निंदात्मक कुछ पुस्तकें लिखकर अपने शोचनीय मानसिक दैन्य का परिचय दिया था। ईसाई पादरी व ब्रह्मों के कोलाहल के साथ बंगवासी पत्रिका के पंडित भी बंगला गाली मिश्रित संस्कृत भाषा में विवेकानंद की निंदा प्रचार करने लगे।
2: परंतु जो शक्ति पास में कौड़ी न रखते हुए और विदेश में शून्य से भी 20 डिग्री नीचे की शीत वायु में खुले स्थान में रात्रि व्यतीत करने में भयभीत नहीं हुए, उन्हें उनके स्वदेश में डराना बड़ा कठिन है। इस निंदनीय प्रचार कार्य को देख उत्तेजित होने वाले सहकारियों से स्वामी जी ने केवल इतना ही कहा,
1: भला या बुरा ही सही, वो मेरे बारे में कुछ कहते तो हैं।
0: उन्हीं दिनों श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से दक्षिणेश्वर में मनाया गया। स्वामी जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने खुद घूम घूम कर सारा इंतजाम देखा। थोड़ी ही दिनों बाद स्टार रंगमंच के विशाल सभागार में उनका व्याख्यान हुआ। विषय था वेदांत। उन्होंने सरल भाषा में वेदांत को समझाया और वर्णाश्रम तथा प्रचलित धर्माचार को निशाना बनाया।
2: उसी दौरान धर्म संस्कार के लिए स्वामी जी ने बंगाल प्रांत की कुलगुरु प्रथा को मूर्ख शास्त्र ज्ञान विहीन ब्राह्मणों और वैष्णवों का धार्मिक व्यवसाय और अवैधिक व अशास्त्रीय बताया और तांत्रिक साधना के नाम से इंद्रियों को जो दास्ता पनप रही है उसकी भी तीव्र आलोचना की। स्वामी जी ने अपने इस भाषण में अपनी कार्य प्रणाली को अत्यंत स्पष्ट भाषा में घोषणा कर सर्वसाधारण को समझा दिया कि कट्टरपन के साथ वे समझौता न करेंगे। समझा दिया कि अद्वैत वेदांत के अस्त्र द्वारा वर्तमान प्रचलित विषमता को नष्ट करना ही उनका व्रत है।
0: आलम बाजार मठ के अन्याय रामकृष्ण शिष्य सन्यासियों ने अपने प्रियतम नेता नरेंद्रनाथ को सम्मान पूर्वक ग्रहण तो कर लिया, परंतु उनके प्रचारित सन्यास व कर्मयोग के नए आदर्श को अचानक मान न सके। ध्यान तप आदि साधनों की सहायता से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा ही सन्यास जीवन का आदर्श है। इस प्रचलित प्रथा का ही वे अनुसरण करते आ रहे थे। सांसारिक सुख दुख, उन्नति अवनति आदि की परवाह न करते हुए सिर्फ अपनी आत्मा की मुक्ति की चेष्टा को गलत स्वामी जी उन्हें धर्म प्रचार, शिक्षा विस्तार आदि कार्यों में लगने के लिए अनुरोध करने लगे। स्वामी जी भी हार मानने वाले न थे। वे दृढ़तापूर्वक उन्हें अपने मत में लाने के लिए चेष्टा करने लगे।
2: उन्होंने कहा, मंदिर और प्रतिमा की सीमा से भगवान को बाहर लाकर यत्र जीव तंत्र शिव के मंत्र से विराट की पूजा के लिए अग्रसर होना होगा। प्राचीन काल के सन्यासियों की तरह पर्वत की गुफाओं में अथवा कुटियों के अंदर बैठकर केवल आत्म साक्षात्कार की चेष्टा में लगे रहने से काम नहीं चलेगा। संसार के कर्म क्षेत्र में खड़े होकर मानव जाति को उच्च कार्यों में प्रेरणा देनी होगी। करोड़ों भारतीयों की अज्ञता व हृदय का अंधकार दूर करना होगा। स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों को अपने जीवन का उद्देश्य समझाकर कहा कि भारत के कल्याण की कामना से ऐसे एक नवीन सन्यासी संप्रदाय की स्थापना करनी होगी जो मानव सेवा के व्रत में अपनी अपनी मुक्ति की कामना को छोड़कर आवश्यक हो तो आनंद नरक में जाने तक को तैयार होंगे।
0: धीरे धीरे सन्यासीगण उनकी युक्ति को समझने लगे। इसके प्रथम परिणाम के रूप में स्वामी रामकृष्णानंद जो विगत 12 वर्षों में एक दिन के लिए भी श्री रामकृष्ण की पूजा आरती व अर्चना छोड़ अन्यत्र कहीं भी नहीं गए थे, स्वामी जी के अनुरोध से वेदांत के प्रचार कार्य के लिए दक्षिण में चले गए। स्वामी अभेदानंद व शारदानंद जी ने पाश्चात्य देशों में प्रचार कार्य का भार ग्रहण किया था। स्वामी जी के उत्साह से प्रेरित होकर स्वामी अखंडानंद जी ने भी मुर्शिदाबाद में दुर्भिक्ष पीड़ित नर नारियों की सेवा के लिए प्रस्थान किया। गुरु भाइयों को कर्म में लगे देख स्वामी जी को बहुत ही आनंद हुआ।
2: अनेक वर्ष के कठोर परिश्रम से स्वामी जी का वज्र जैसा दृढ़ शरीर भी अस्वस्थ हो गया। शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए वे मठ के ब्रह्मचारी और नव दीक्षित शिष्यों को गीता उपनिषद आदि स्वयं पढ़ाने लगे। डॉक्टर लोग उन्हें कुछ दिन के लिए सब प्रकार के मानसिक परिश्रम से अवकाश लेने का उपदेश देने लगे। अंत में उनकी सलाह को उचित समझकर दार्जिलिंग जाने के लिए तैयार हुए।
0: उनके साथ श्रीमान व श्रीमती सेवियर, स्वामी ब्रह्मानंद, श्री गिरीशचंद्र घोष, श्री गुडविन, डॉक्टर टर्नबुल तथा उनके तीनों मद्रासी शिष्य आला सिंगा पेरुमल जी, नरसिंहाचार्य तथा सिंगरावेलु मुदलियर भी दार्जिलिंग गए। बर्दवान के महाराजा बहादुर ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने रोज बैंक नामक भवन के एक भाग को उनके निवास के लिए दे दिया। दार्जिलिंग के श्री एमएम बनर्जी ने स्वयं प्रवृत्त होकर श्रद्धा व भक्ति पूर्वक स्वामी जी तथा उनके साथियों को अपने घर पर ठहराया। लगभग 2 मास दार्जिलिंग में रहकर भी उनके स्वास्थ्य में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। इधर बेकार रहकर दिन व्यतीत करना उनके लिए असंभव हो गया, अतः वे फिर से कलकत्ता लौट आए।
2: स्वामी जी जिस समय पाश्चात्य देशों में थे उस समय कुछ युवक आलम बाजार मठ में सम्मिलित होकर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब वे स्वामी जी से संन्यास की दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे। स्वामी जी उनके उत्साह को देख आनंदित हुए, परंतु एक व्यक्ति के संबंध में उनके गुरु भाइयों ने कुछ अड़चने प्रकट की। उस व्यक्ति का पूर्व जीवन अच्छा नहीं था, इसलिए उसे संन्यास देकर मठ में सम्मिलित करने की कुछ लोगों की इच्छा नहीं थी। स्वामी जी अपने गुरु भाइयों का अभिप्राय समझ उन्हें बुलाकर कहने लगे,
1: यदि हम पापियों को आश्रय देने में संकुचित होंगे तो फिर वे और कहां आश्रय पाएंगे। इसने जब पवित्र जीवन व्यतीत करने का संकल्प कर अब संसार को छोड़ दिया है तो इसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यदि तुम पतित व गिरे हुए व्यक्तियों के चरित्र का संशोधन करने में असमर्थ हो तो गैरिक पहनकर तुमने आचार्यत्व ग्रहण क्यों किया।
0: संन्यास व्रत ग्रहण करने के इच्छुक शिष्यों ने आकर जब स्वामी जी की चरण वंदना की तो उस समय स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा,
1: तुम लोग मानव जीवन के श्रेष्ठ व्रत को ग्रहण करने के लिए उत्साहित हुए हो। धन्य है तुम्हारा जन्म, धन्य है तुम्हारा वंश और धन्य है तुम्हारी माता जिसने तुम्हें जन्म दिया है। कुल पवित्रम जननी कृतार्थ।
0: स्वामी जी आलम बाजार मठ में तथा बाग बाजार के बलराम बसु महाशय के मकान में रहकर बड़े उत्साह से युग धर्म का प्रचार करने लगे। इस कार्य के लिए तथा श्री रामकृष्ण भक्त वृंद को संगबद्ध करने के लिए उनके मन में बहुत से संकल्प हो रहे थे। इस समय स्थिति को अनुकूल देखकर उन्होंने संघ की स्थापना करने की इच्छा प्रकट की। सन 1897 ईस्वी की 1 मई को स्वामी जी के आह्वान पर श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ व सन्यासी भक्तगण तीसरे प्रहर बलराम बाबू के मकान पर इकट्ठे हुए। स्वामी जी इन सब भक्तों को कहने लगे,
1: अनेक देशों में भ्रमण करके मेरा यह विश्वास हो गया है कि संघ के बिना कोई वृहत कार्य नहीं हो सकता, परंतु हमारे जैसे देश में संघ बनाना अथवा जन साधारण की सम्मति लेकर काम करना उतना सुविधाजनक नहीं मालूम पड़ता। इस देश में शिक्षा के विस्तार के द्वारा जब जन साधारण अधिक मात्रा में सहृदय बनेंगे, जब वे विभिन्न मतों की संकीर्ण सीमा के बाहर अपने विचारों को प्रसारित करना सीखेंगे, उस समय संघ का कार्य चल सकेगा। इसलिए संघ का एक डायरेक्टर अथवा प्रधान परिचालक रहना आवश्यक है। सभी को उनका आदेश मानकर चलना होगा। इसके बाद समय पर सभी की राय लेकर काम किया जाएगा।
0: उद्देश्य मानव समाज के हित के लिए श्री रामकृष्ण देव ने जिन सब तत्वों की व्याख्या की है तथा कार्य रूप में उनके जीवन में जो तत्व दिखाई देते थे उनका प्रचार करना तथा मनुष्य की शारीरिक मानसिक व परमार्थिक उन्नति के लिए सहायता करना इस संघ मिशन का उद्देश्य है।
2: व्रत जगत के सभी धर्म मतों को एक अखंड सनातन धर्म की रूपांतर मात्र समझते हुए सभी धर्मावलंबियों के बीच आत्मीयता की स्थापना करना, यही इस संघ का व्रत है।
0: कार्य प्रणाली मनुष्य की सांसारिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए विद्या दान देने योग्य व्यक्तियों को शिक्षा देना, उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा वेदांत व दूसरे धर्मों के भाव समाज में प्रवर्तित करना। विदेशीय कार्य विभाग भारत के बाहर दूसरे देशों में वृत्तधारियों को भेजना तथा उन स्थानों में स्थापित सभी आश्रमों की आपसी मेल व सहानुभूति को बढ़ाना तथा नए नए आश्रमों की स्थापना करना। कहना न होगा कि स्वामी जी दोबारा विलायत जाने तक सुविधा अनुसार समय समय पर समिति के अधिवेशन में उपस्थित रहकर कभी उपदेश देते थे और कभी भजन आदि गाकर श्रोताओं को मुग्ध करते थे।

0: श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना होने के बाद कोई कोई रामकृष्ण भक्त संदेह करने लगे कि स्वामी जी विदेशी पद्धति से कार्य कर रहे हैं। एक दिन सायकाल बलराम बाबू के मकान पर स्वामी जी गुरु भाइयों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। इस समय उनके एक सन्यासी गुरु भाई ने सहसा प्रश्न किया कि वे श्री रामकृष्ण का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं और श्री राम की शिक्षा के साथ उनके द्वारा प्रचारित आदर्शों का सामंजस्य कहाँ है। स्वामी जी सभी को कर्म, रोगी और दीन दुखियों की सेवा, शिक्षा का विस्तार, धर्म का प्रचार आदि करने का उपदेश दे रहे हैं। ये सब तो मन को स्वाभाविक रूप से ही बहिर्मुख कर डालते हैं और साधना के लिए हानिकारक हैं।
1: कौन तुम्हारी भक्ति और मुक्ति को लेकर माथापच्ची करता है? शास्त्र क्या कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं कौन सुनता है? यदि मैं घोर तमोगुण में डूबे हुए अपने स्वदेश वासियों को कर्म योग के द्वारा अनुप्राणित कर वास्तव मनुष्य की तरह अपने पैरों पर खड़ा कर देने में समर्थ हूं तो मैं आनंद के साथ लाख बार नरक जाऊंगा। जो लोग अपनी भक्ति मुक्ति की कामना को छोड़ दरिद्र नारायण की सेवा में जीवन को उत्सर्गित करेंगे, मैं उन्हीं का चेला हूं, भ्रत्य हूं, कृत दास हूं।
0: कहते कहते स्वामी जी भावावेग में बह गए और थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत कर उन्होंने कहा,
1: कर्म की कठिन श्रृंखला से मैंने अपने को बांध कर रखा है, क्योंकि अभी भी जगत को मेरा जो संदेश देने को है वो समाप्त नहीं हुआ। इसलिए जब भी मैं देखता हूं कि भक्ति का प्रबल प्रवाह मुझे बहाकर ले जाना चाहता है, उसी समय उन भावों को संयत कर लेता हूं। हां, मुक्ति नहीं है, अभी मुझे अनेक कर्म करने होंगे। मैं श्री रामकृष्ण का कृतदास हूं। वे जो अपने कर्मों का भार मेरे कंधों पर छोड़ गए हैं, जब तक उसे समाप्त न कर सकूं तब तक तो वे मुझे विश्राम न करने देंगे।
2: एक दिन वेदांत की चर्चा चलते समय गिरीश घोष ने स्वामी जी से पूछा,
3: अच्छा नरेन, वेद वेदांत तो अनेक पढ़े हो ना? भूखों का भोजन के लिए हाहाकार, निर्धन का दुख, लंपट आदि का विभत्स पाप और भी कितने ही प्रकार के अन्याय कुविचार व दुख जो हम अक्सर देखते हैं, इनका कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद वेदांत में लिखा है? एक महाशय की घरवाली जो प्रतिदिन 50 व्यक्तियों को भोजन दिया करती थी, आज 3 दिन से अन्न के अभाव में बाल बच्चों सहित भूखी है। एक परिवार की महिलाएं बदमाशों के हाथों लांछित हुई, कोई कोई महिला तो उत्पीड़न होकर अंत में प्राण त्याग कर बैठी। एक घर की बाल विधवा कलंक से बचने के लिए भ्रूण हत्या करने जाकर आत्महत्या कर बैठी। नरेन, वेद वेदांत में क्या इसका कोई प्रतिकार है?
0: इस प्रकार गिरीश बाबू मर्मस्पर्शी भाषा में संसार के सभी दुख, अन्याय, अत्याचार की कहानियों का वर्णन करने लगे। उन करुण कहानियों को सुनकर आचार्य देव के दोनों बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भर आए। भाव के आयोग को रोकने में असमर्थ होकर वे विचलित हृदय से उसी समय उस स्थान को छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए।
2: थोड़ी देर बाद स्वामी जी लौट आए। स्वामी सदानंद को कमरे में प्रवेश करते देख उसी समय स्वामी जी ने उन्हें रोगी व दुखियों की सेवा के लिए एक सेवाश्रम की स्थापना करने का निर्देश दिया। सदानंद जी ने तन मन से चेष्टा करने का वचन देकर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। स्वामी जी गिरीश बाबू को बोले,
1: देखो, इसी जगत के कष्टों को दूर करने के लिए, यहां तक कि एक व्यक्ति की वेदना को कम करने के लिए मैं सहस्त्र बार जन्म ग्रहण करने को तैयार हूं। अपनी मुक्ति मैं नहीं चाहता, मैं प्रत्येक को मुक्त होने के लिए सहायता करना चाहता हूं।
3: देखा, तुम्हारे गुरुदेव का हृदय कितना विशाल व दया से पूर्ण है। मैं उन्हें इसलिए सम्मान नहीं देता कि वो पंडित व प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बल्कि उनके उस असीम उदार हृदय के लिए ही मैं उन पर श्रद्धा करता हूं, जो मनुष्य के दुख कष्ट की बात सुनते ही दया से विचलित हो जाता है। देखा ना, ये सब बातें सुनकर थोड़ी देर पहले जो वेद वेदांत की व्याख्या हो रही थी, वो विद्वता विचार विश्लेषण कहां दृश्य हो गया। तुम्हारे स्वामी जी एक आधार में महान ज्ञानी वह महान भक्त हैं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

युग प्रवर्तक विवेकानंद। अभी आप ये धारावाहिक सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए।

0: देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल,
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। आपसे विदा लूं उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवाना चाहती हूं। शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि। भक्ति संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:10 पर। 6 बजे वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी की। प्रकृति की पुकार कार्यक्रम में शाम 6:30 जानकारी का विषय मृदा यानी मिट्टी। योग संवाद कार्यक्रम में शाम 7 बजे आज की चर्चा का विषय होगा देव के स्वरूप का विवेचन और सत्कार्य की प्रेरणा। शाम 7:30 हमारा विशेष कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका होगा। इसमें आज बात होगी भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय युवा वैज्ञानिकों की। 8:30 आजाद हिंद कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा मृगेंद्र कुमार दत्त पर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आयुर्वेद पर हम बातचीत करेंगे 9:00 और 9:30 सुनिएगा धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब इस प्रसारण सभा से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: भांपना चाहती हो। वो इस इंतज़ार में है कि मैं फिर उसे वही बात शुरू करूं। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देखता हूं। अरे, उसके प्यारे चेहरे पर ये कैसे भाव हैं। मैं देखता हूं कि वो अपने आप से लड़ रही है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वो अपने ख्यालों को, अपने भावनाओं को शब्दों के रूप में प्रकट नहीं कर पाती। वो हिचकिचा रही है, वो डर रही है, उसकी अपनी ही खुशी उसे तंग कर रही है।
1: नादिया, नादिया चलो घर चलते हैं।
2: नहीं जेकब, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।
1: व्हाट, तुम्हें मजा आ रहा है?
2: हाँ जेकब, बहुत ही ज्यादा मजा। क्यों ना जेकब, एक बार फिर फिसलते हैं।
1: एक बार फिर?
2: हाँ ना जेकब, चलो ना, प्लीज चलो।
1: अच्छा चलो,
0: हम फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। मैं फिर से डर से सफेद पड़ चुकी नादिया को स्लेज पर बिठा देता हूँ। हम फिर से भयानक गहराई की ओर फिसलते हैं। फिर से हवा की गर्ज और स्लेज की गूंज हमारे कानों को फाड़ती है, और जैसे जैसे शोर बढ़ता जा रहा था, मैं धीमी आवाज में कहता हूँ,
1: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, आई लव यू नादिया।
0: नीचे पहुंचकर जब स्लेज रुक जाती है, तो नादिया एक नजर पहले ऊपर की तरफ उस दलान को देखती है जिससे हम अभी अभी नीचे फिसले थे, फिर दूसरी नजर मेरे चेहरे पर डालती है। वो ध्यान से मेरे बेपरवाह और भावहीन आवाज को सुनती है। उसके चेहरे पर हैरानी है, न सिर्फ चेहरे पर बल्कि उसके सारे हाव भाव से हैरानी झलकती है। वो चकित है, और जैसे उसके चेहरे पर लिखा है, क्या बात है, ये अल्फाज किसने कहे थे, शायद इसी ने, या हो सकता है मुझे बस ऐसा लगता हो, बस ऐसे ही वे शब्द सुनाई दे गए हों।
1: आई लव यू, आई लव यू।
0: उसकी उलझन बढ़ती जाती है, वो सच्चाई से अनजान है, ये अनजानापन उसकी बेचैनी बढ़ा रही है। मुझे उस पर तरस आ रहा है, बेचारी लड़की। वो मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं देती, लगता है वो रोने वाली है।

0: नादिया नादिया चलो घर चलते हैं।
1: नहीं जेकब, बिल्कुल नहीं, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है।
0: क्या?
1: बहुत मजा आ रहा है सच्ची में। चलो ना जेकब, एक बार फिर फिसलते हैं, चलो ना।

0: और यह पहेली पहेली ही रह जाती है। नादिया चुप रहती है, वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। वो धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतज़ार कर रही है कि मैं शायद उसे कुछ कहूँगा, लेकिन वो चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए है। शायद वो कुछ सोच रही है। दूसरे दिन जैकब को चिट्ठी मिलती है जिसमें नादिया ने लिखा है,
1: जैकब, ये चिट्ठी मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ फिर फिसलने का मन कर रहा है। अगर आज तुम पहाड़ी पर फिर फिसलने जाओ तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलना।
2: और चिट्ठी के आखिर में बड़े ही प्यार से उसने अपना नाम लिखा था, नादिया, नादिया।
0: उस दिन से हम दोनों फिसलने के लिए रोज पहाड़ी पर जाते हैं और स्लेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज से मैं वही शब्द कहता हूँ,
2: आई लव यू, आई लव यू।
0: जल्दी ही नादिया को उन शब्दों का नशा हो जाता है, वैसा ही नशा जैसा शराब या मॉर्फिन में होता है। अब वो इन शब्दों की खुमारी में रहने लगी है। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले की तरह ही डर लगता है, लेकिन अब भाई और खतरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करता है, जो पहले की तरह ही उसके लिए एक पहेली बनी हुई है और उसके दिल को तड़पाती है। उसका शक हम दोनों पर है, मुझ पर और हवा पर। हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार करता है उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन अब उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन दोपहर के वक्त मैं अकेले ही उस पहाड़ी पर पहुंच गया। नादिया को उस दिन मैंने नहीं बुलाया। भीड़ के पीछे से मैंने देखा कि नादिया नीचे ढलान के पास खड़ी है। उसकी आंखें मुझे ही तलाश रही हैं। वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं आऊं और उसे लेकर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ूं, लेकिन वो मुझे नहीं पाती। वो धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है, हालांकि उसे अकेले फिसलने में डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा डर। वो बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ चुकी है, वो कांप रही है, पर वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, बिना झिझक के, बिना रुके। शायद उसने फैसला कर लिया है कि इस बार वो अकेले फिसल कर देखेगी कि वे मीठे शब्द सुनाई पड़ते हैं कि नहीं। मैं देखता हूँ कि बेहद घबराई हुई नादिया डर से अपना मुंह खोलकर स्लेज पर बैठ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है, जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसलने जा रही हो। स्लेज के फिसलने की गूंज सुनाई पड़ती है। नादिया को वो शब्द सुनाई दिए या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं बस ये देखता हूँ कि वो बेहद थकी हुई और कमज़ोर स्लेज से उतरती है। मैं उसके चेहरे पर यह पढ़ सकता हूँ कि वो खुद ही नहीं जानती उसे कुछ सुनाई दिया या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लगा, उसके लिए कुछ भी सुनना या समझना मुश्किल था। कुछ समय बाद वसंत का मौसम आया। मार्च का महीना है। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई हैं। हमारी बर्फ से ढकी रहने वाली वो सफ़ेद पहाड़ी भी काली पड़ गई है। उसकी बर्फ पिघल चुकी है, उसकी चमक खत्म हो चुकी है। अब सूरज की रोशनी उस पर शीशे की तरह नहीं चमकती। हमारा फिसलना बंद हो गया है और अब नादिया भी उन शब्दों को नहीं सुन पाएगी। उससे वे शब्द कहने वाला कोई नहीं। हवा खामोश हो गई है और मैं ये शहर छोड़कर पीटर्सबर्ग जा रहा हूं। हो सकता है कि मैं वहां हमेशा के लिए चला जाऊं। मेरे पीटर्सबर्ग रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। शाम के वक्त मैं बगीचे में बैठा था। जिस मकान में नादिया रहती है वो बगीचा उससे जुड़ा हुआ था और एक ऊंची बाड़ जो नादिया के मकान को बगीचे से अलग करती थी। अभी भी मौसम में काफ़ी ठंड है, कहीं कहीं बर्फ भी दिखाई पड़ती है। हरियाली अभी नहीं है लेकिन वसंत की सुगंध महसूस होने लगी है। शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। मैं बाड़ के पास आता हूँ और एक दरार में से नादिया के घर की तरफ देखता हूँ। नादिया बरामदे में खड़ी है और उदास नजरों से आसमान की ओर ताक रही है। वसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। ये हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गरजा करती थी जब उसने वे शब्द सुने थे। उसका चेहरा और उदास हो जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और बेचारी लड़की अपने हाथ इस तरह से आगे बढ़ाती है मानो वो उस हवा से प्रार्थना कर रही हो कि एक बार फिर से उसके लिए वो शब्द दोहराएं। और जब हवा का एक झोंका आता है तो मैं फिर धीमी आवाज में कहता हूँ,
2: मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया, आई लव यू नादिया।
0: बुझी हुई नादिया अचानक मुस्कुराने लगती है और हवा की ओर हाथ बढ़ाती है। वो बेहद खुश है, बेहद खुश और बेहद सुंदर दिख रही है। उसकी उलझन खत्म हो चुकी है, वो जान चुकी है कि ये शब्द उसे हवा कहती है। हाँ, हवा ही कहती है।

0: और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट जाता हूँ। कई साल गुजर चुके हैं, अब नादिया की शादी हो चुकी है। शादी का फैसला उसने खुद लिया था या नहीं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका पति एक बड़ा ऑफिसर है और उससे उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन उस समय को नादिया अब भी नहीं भूल पाई है। हवा के वो शब्द उसे आज भी याद हैं। ये उसके जीवन की सबसे खूबसूरत और सुखद याद है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि नादिया से वो शब्द मैंने क्यों कहे थे, क्यों मैंने उसके साथ ऐसा मजाक क्यों किया था।
1: श्रोताओं, आपने सुना, एक लड़के के द्वारा एक लड़की के साथ किया गया एक छोटा सा मजाक, अ जोक। लड़के के लिए ये दिल लगी थी, एक विनोद था, लेकिन लड़की के लिए दिल का मामला। लड़की आई लव यू सुनने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, और लड़का सिर्फ अपना मनोरंजन करता रहता है। उफ, कितनी क्रूरता है ये। शादी हो जाने के और 3 बच्चे हो जाने के बाद भी नादिया इन शब्दों को नहीं भुला पाती। क्या इतना क्रूर मजाक लड़के को उसे करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रूस के महान कहानीकार चेखव की लिखी प्रसिद्ध कहानी ए जोक, यानी एक छोटा सा मजाक का रेडियो रूपांतरण। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार थे जवाहरलाल शाह, अंजू के आनंद, अमित कुंदानी, ध्वनांकन सचिन कुमार और अमित कुंदानी, सूत्रधार मोनिका तिवारी, निर्देशन जवाहरलाल शाह और इला शंकर गुहा, प्रस्तुति रेडियो आजाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: छेड़ देवे।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज
0: ससुराल गेंदा फूल
1: और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

मैं अशोक चक्रधर एफएम रेडियो का अभिनंदन करता हूं जो 90.8 पर आप सुनते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इसका प्रसार और प्रचार निरंतर हो रहा है। ये रेडियो आज़ाद हिंद है। आज़ाद हिंद हमें याद दिलाता है नेताजी सुभाष की, याद दिलाता है हमारे स्वाधीनता संग्राम की, याद दिलाता है हमारे गौरव की। इस गौरवशाली परंपरा को मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं झूला गायन, जिसे पेश कर रही हैं आस्था गोस्वामी।
2: आज की मेरी प्रस्तुति में मैं मुख्य रूप से झूले गाऊंगी, वो ब्रज का झूला हो या नंदगांव का झूला हो या पूरब का झूला हो। तो देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ झूलास एंड लेस ऑफ कजरीज। तो सबसे पहले मैं एक

बड़े प्रेम से सजाया है और बलराम और मोहन को उस पर विराजित करके उन्हें वो झूला झुला रही हैं। तो नंदगांव का ये एक झूला

ब्रज के बाद अब मैं आपको पूरब में ले चलती हूँ और पूरब की एक चीज सुनाती हूँ। रंग अभी झूले का ही रहेगा। ये राग गौड़ मल्हार पर आधारित है बंदिश। ऋतु भी मल्हार गाने की ही है, इसीलिए इस

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया झूला गायन, जिसकी प्रस्तुतकर्ता थी आस्था गोस्वामी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। शुभ संध्या। हमारी सभा जारी रहेगी रात्रि 10 बजे तक। तो सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक, देवता ब्रह्मणस्पति एवं इंद्रा ब्रह्मणस्पति, छंद जगती एवं त्रिष्टुप।
1: स समनयः स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि ब्रह्मणस्पतिः चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मति धनादित सूर्यस्तपति तप्यतुर्वृथा। हे स्तुत्य ब्रह्मणस्पति देव, युद्ध में अग्रणी होकर संगठित रूप से आक्रमण करते हैं। सर्वदर्शी ब्रह्मणस्पति देव जब अन्न और धन को धारण करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से सूर्य उदित हो जाता है। विभु प्रभु प्रथमम् मेहनावतो बृहस्पतेः सुविदत्राणि राध्या इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुञ्जते विषः। व्यापक सामर्थ्य प्रदान करने वाला, सब प्रकार सुखदायी सिद्धिदायी यह धन महाबलशाली बृहस्पति देव ने सबके द्वारा चाहे जाने पर बरसाया है, जिसका भोग दोनों प्रकार की ज्ञानी और अज्ञानी प्रजाएं करती हैं। यो वरे व्रजने विश्वथा विभुर महामु रणवः शवसा ववक्षिथ सदेवो देवान प्रति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता परिभूर ब्रह्मणस्पति। सर्वव्यापी आनंददायी ब्रह्मणस्पति देव प्रत्येक युद्ध में अपनी सामर्थ्य से अपनी महत्ता को प्रकट करते हैं। सभी देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मणस्पति देव समस्त विश्व में संव्याप्त रहते हैं। विश्वम सत्यम मघवाना युवो रिदा पश्चन प्रमिनन्ति व्रतम वाम अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पति हविर्नोन्नम युजेव वाजिना जिगातम। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव और हे ब्रह्मणस्पति देव, आप दोनों सत्यव्रतधारी हैं। आप दोनों के कर्तव्य और नियम अडिग हैं। जुए में जुड़े अश्वों के समान आप दोनों हमारे हविष्यान्न को ग्रहण करने के लिए यज्ञ स्थल में आए। उता शिष्ठा अनुशृण्वन्ती वह नयः सभेयो विप्रो भरते मति धना वीडुद्वेषा अनुवश ऋण माददिहि सह वाजी समिथे ब्रह्मणस्पतिहि। युद्ध में बलशाली ब्रह्मणस्पति देव सभ्य ज्ञानी जनों के उत्तम धन को ही स्वीकार करते हैं और बलशाली शत्रुओं से द्वेष करते हैं। द्रुत गति से जाने वाले अश्व भी उनकी बात सुनते हैं, वे ऋण से उऋण करते हैं। ब्रह्मणस्पतेर भेवद्यथा वशम सत्यो मन्युर्महि कर्मा करिष्यतः योगा उदाजत्स दिवे वि चाभजन महीव रीति ही शव सासरत पृथक। महान कार्य में निरत ब्रह्मणस्पति देव का कार्य उनकी अभिलाषा के अनुसार सफल होता है। ब्रह्मणस्पति देव ने गौवों को बाहर निकालकर विजय प्राप्त की। सतत प्रवाहित नदियों की भांति ये गौएं स्वतंत्र रूप से चली गईं। ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वः रायः श्याम रथ्यो वयस्वतः वीरेषु वीराम उपप्रिंधि नस्त्वं यदीशानो ब्रह्मणा वेशि मे हवम्। हे ब्रह्मणस्पति देव, हम सभी व्रतों के पालक तथा अन्न युक्त धन के सदैव अधिपति रहें। आप सभी के नियंता हैं, अतः ज्ञान पूर्वक की गई हमारी स्तुतियों को स्वीकार करके हमें पराक्रमी संतति प्रदान करें। ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयम् च जिन्व विश्वम् तद्भद्रम् यदवन्ति देवा बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। हे संसार के नियंता ब्रह्मणस्पति देव, देवगण जिसे अपना संरक्षण प्रदान करते हैं उसका हर प्रकार से कल्याण होता है। अतः आप हमारे सूक्त को जानकर हमारे पुत्रों को परिपुष्ट बनाएं, ताकि उत्तम संतति से युक्त होकर हम यज्ञ में आपकी महिमा का गान कर सकें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 24 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गणेश वंदना से।

संध्या की ये बेला अपने आप में कितनी सुंदर होती है। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें जब आकाश को रंग देती हैं, ठंडी हवाएं मन को स्पर्श करती हैं, घरों में दीपक की लौ जगमगाने लगती है और मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजती है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं प्रभु की आराधना में लीन हो गई हो।

जब संध्या की आरती होती है तो दीपक की छोटी सी लौ भी हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही हो, हमारे शब्द किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें, हमारा व्यवहार किसी दुखी मन को सहारा दे सके और हमारे कर्म किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी भर सकें। यही सच्ची भक्ति है।

कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंची। प्रभु की गति भले ही हमारी अपेक्षा से अलग हो, लेकिन उनकी कृपा सदैव हमारे साथ होती है। इसलिए मन में विश्वास बनाए रखिए, मन में आशा बनाए रखिए और अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ते रहिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत भूमि में ऐसी पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और देश हित के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही भारत के एक महापुरुष थे जिन्हें हम सभी आदर और सम्मान से दादा भाई के नाम से जानते हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। वो थे दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी शासनकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और भारत के आरंभिक राजनेताओं के अग्रज और सामाजिक नेता थे दादा भाई। 4 सितंबर सन 1825 को दादा भाई का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि दादा भाई के पूर्वज बड़ौदा के पास नवसारी के रहने वाले थे, जो सुगंधित फूलों और इत्र की खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। उनके पुरखे चांदजी कामदिन बेहद खुशबूदार लाजवाब इत्र तैयार करने की कला में माहिर थे, जिनकी प्रसिद्धि नूरजहां बेगम के कानों तक पहुंची और उन्हें इनाम के बतौर जागीर दी गई। 4 की छोटी सी बाल्यावस्था में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन उनकी मां ने बेहद समझदारी से दादा भाई का पालन पोषण किया, साथ ही उन्हें शिक्षित करने में भी पूरा सहयोग दिया। दादा भाई हमेशा कहते थे कि वो जीवन में जो भी बन सके सिर्फ अपनी मां की वजह से। देशभक्ति की भावना और चरित्र निर्माण में सदैव अपनी जननी और मातृभूमि के लिए वो ऋणी रहे।

दादा भाई नौरोजी के समय सौभाग्य से उन दिनों शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हुआ करती थी, जिसका फायदा उन्हें ये मिला कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। इस बात का बेहद गहरा प्रभाव उनके जीवन पर और उनके विचारों पर भी पड़ा और वो जीवन पर्यंत मुफ्त शिक्षा के ऋणी रहे। उनका विचार था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे शिक्षा प्राप्त करने की सहूलियत मिले। दादा भाई बचपन से ही होशियार और

में उनका कार्यालय बनवाने के लिए वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन फर्म में अफीम और मदिरा का व्यापार भी होने लगा। दादा भाई को ये पसंद नहीं आया, वो फर्म छोड़कर वापस भारत लौट आए। इंग्लैंड में रहने से उन्हें इंग्लैंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हालतों की तुलना करने का अवसर मिला और भारत की दुर्दशा देखकर पहले से भी ज्यादा बेचैन हो उठे। दादाभाई नौरोजी ने सन 1859 में इंग्लैंड में दादाभाई नौरोजी एंड कंपनी नाम से खुद की एक फर्म शुरू की, जो मुख्य रूप से कपास का व्यापार करती थी। इंग्लैंड में शिक्षा पाने वाले भारतीय विद्यार्थी धीरे धीरे दादाभाई से प्रभावित हुए बिना ना रह सके और इस अवसर का लाभ उन्होंने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों की भलाई के लिए लगा दिया। एक और उद्देश्य था जो दादाभाई साधना चाहते थे, वो ये था कि सरकारी प्रशासकीय संस्थाओं का अधिक से अधिक भारतीयकरण करने का आंदोलन तीव्र हो। उनके प्रयास कुछ हद तक सार्थक भी रहे और जो विद्यार्थी उनके संपर्क में आए उनके विचारों के समर्थक हो गए। उनमें सुप्रसिद्ध मोहनदास करमचंद गांधी और फिरोज शाह मेहता जैसे नाम प्रमुख हैं।

लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध के सुधार के लिए हुई। दादा भाई की लिखी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़कर कितने ही अंग्रेज भारत से सहानुभूति रखने लगे और भारतीयों की स्थिति से अवगत हुए। सन 1886 में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 6 सालों बाद वो ब्रिटेन की लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनकी दलीलों का परिणाम सकारात्मक हुआ और भारत के सैनिक और असैनिक आय, साथ ही व्यय की जांच के लिए वेल्बी कमीशन बैठाया गया। वो ब्रिटेन की सभा से भारत के प्रति अपना पक्ष हमेशा रखते रहे। उनका कहना था कि अंग्रेजी राज की खराबियां तभी दूर हो सकती हैं जब अंग्रेज घरेलू मामलों से भारतीयों को स्वशासन के अधिकार सौंप देंगे। 81 साल की परिपक्व आयु में दिसंबर सन 1906 में दादा भाई तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वो संयम और कठोर परिश्रम को अच्छी सेहत का राज कहते थे और स्वयं पालन भी किया करते थे। लगभग आधे दशक तक दादा भाई ने भारतीयों के विश्वास का मान रखा, भारत की जनता की अटूट श्रद्धा को सदैव सर्वोपरि सम्मान दिया। वो भारतीयों के संदेशवाहक और राजदूत थे जिन्होंने ब्रिटेन और भारत के संबंधों के सुधार और भारतीयों के अधिकारों के लिए कभी समझौता नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के बीच एक अहम स्थान भी बना लिया। 30 जून सन 1917 को भारत के पितामह अपने समस्त भारतीय परिवार को छोड़कर इस संसार सागर से विदा हो गए। ये दादा भाई के कार्यों का प्रभाव था। जो पुण्य काम उन्होंने प्रारंभ किया उसे गांधी जी जैसे उत्तराधिकारी मिले। कोटि कोटि नमन हमारे ऐसे पितामह दादा भाई नौरोजी को।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
3: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार, आप
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।
1: सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 एफएम, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं वर्षा सिंह
3: और मैं हूं दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हो और इतना खूबसूरत गाना भी गा रही हो।
1: हाँ, आपने ठीक कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों?
0: बताइए, आप ही बताइए क्यों।
1: दरअसल आज मैं सुबह काफी लंबी सैर करके आई हूँ और बाहर सुबह इतनी सुहानी लगी कि मन खुश हो गया। हरे भरे पेड़, कलकल बहता पानी और ठंडी ठंडी बयार, मन को इतना अच्छा लगा कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था।
0: बात तो सही कही आपने, प्रकृति की गोद है ही इतनी खूबसूरत कि वहाँ से उन नजारों से नजर ही नहीं हटती है।
1: मैंने तो सोच लिया है, जब भी फुर्सत मिलेगी तो बाहर इन नजारों के बीच जरूर जाऊंगी।
0: वर्षा, आप जानती हैं
1: जी
0: कि प्रकृति ने हमारे लिए चारों ओर ऐसी चीजें और ऐसा वातावरण दिया है कि हमारे मन को तो भाता ही है, साथ ही हमें ये स्वस्थ भी रखता है। यही तो है परी और आवरण, यानी पर्यावरण हमारी धरती का।
1: जी हाँ, पर्यावरण प्रकृति का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है जो हमें मिला है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सब इसे संभाल कर और बना कर रखें।
0: बात तो सही कही आपने, ये एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र है जहाँ हम जीवित रहते हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं।
1: हाँ, पर्यावरण से मतलब उस परिवेश से है जिसमें हमारी पृथ्वी विद्यमान है। पशु पक्षी, सूर्य का प्रकाश, जल, पेड़ पौधे, हवा और हम मनुष्य तथा सभी जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
0: हाँ, इसके संतुलन को बनाए रखने में भी सभी की समान भागीदारी है। थोड़ी भी गड़बड़ी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाएगी।
1: हाँ, हर जीवित प्राणी अपनी विशेषताओं के साथ विकसित होता है। जैसे जलीय प्राणी पानी में सांस लेते देखे जा सकते हैं, और हवा में रहने वाले तो हवा में रहते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इन्हें अपने वातावरण से यदि हम अलग करें तो इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही पर्यावरण हर एक जीव के आसपास की दुनिया है जो उन्हें जीवित रखती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पर्यावरण पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, जीव जंतु और मनुष्यों जैसे जीवित और वायु, जल और भूमि जैसे निर्जीव तत्वों से बना है।
0: प्रकृति ने अपनी कार्य प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।
1: इनमें हम मनुष्य उन सभी प्राणियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और उनका उपयोग करते हैं।
0: हाँ जी, अब जैसे हवा की बात करें तो ये न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए भी जरूरी है। हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, जीवन देने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और नाइट्रोजन जैसी कई गैसें वायुमंडल में पाई जाती है।
0: और इस पर्यावरण में जलमंडल भी नदियों, महासागरों, समुद्रों आदि जैसे कई जल निकायों से बना है।
1: इसी तरह स्थल मंडल चट्टान और मिट्टी से बना है और जीव मंडल सभी जीवित प्राणियों का घर है।
0: वर्षा, हम ईश्वर प्रस्थ दुनिया में रहते हैं, इसमें से कुछ तत्व प्राकृतिक और कुछ हम मानवों द्वारा निर्मित है। हमारे आसपास की चीजें ही मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं।
1: लेकिन पर्यावरण के बिगड़ने के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। पर्यावरण का विनाश एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान हम मनुष्यों को ही करना चाहिए।
0: जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और पेड़ पौधे, ये सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। हम मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालते हैं।
0: अब देखिए ना वर्षा जी, हमारी अच्छी बुरी आदतें जैसे पेड़ पौधों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना, ये सब पर्यावरण को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, हमारी गलत आदतें जैसे पानी दूषित करना या जबरन पानी को बहाना, वृक्षों की जरूरत से ज्यादा कटाई करना, ये सारी बातें पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।
0: हाँ वर्षा जी, अब तो वो समय आ गया है कि हम अपनी इन बुरी और गलत आदतों के कारण पर्यावरण को प्रभावित करने का नतीजा प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर भुगत रहे हैं।
1: हमारे पर्यावरण में जैविक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
0: सामान्य शब्दों में अगर इसको समझें तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों और प्रक्रियाओं तथा घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है।
1: पर्यावरण तो हमारे चारों ओर रहता है और हमारे जीवन की हर एक घटना इस पर निर्भर होती है। यानी किसी भी जीव जंतु के बीच ऐसा संबंध होता है जो पर्यावरण आश्रित होता है।
0: हाँ, पर अब मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण हम कह सकते हैं कि इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है दीपक। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति अब नष्ट होती जा रही है। हर जगह घने जंगलों को काटकर समाप्त किया जा रहा है।
0: हाँ, जबकि हमारे कवियों और लेखकों ने इन्हीं प्राकृतिक मनोहारी रूपों को अपने शब्दों में बांधा है जिसे हम पढ़ते हैं, परंतु जो खूबसूरती देखकर उन्हें देखने को नहीं मिलती है।
1: आपका

0: की आवश्यकता। सुबह पक्षियों के मन को और शरीर को ताजा कर देती है
1: और हमारे शरीर को मिलने वाली ये ताजगी हमें पूरे दिन स्फूर्ति से भर देती है, ऊर्जावान बनाए रखती है। तभी तो कहते हैं कि सुबह की सैर हमारे

0: से फिर वो परिणाम नहीं मिलता उसके।
1: मतलब कुछ कर्म की तरफ उसका रुझान नहीं है
0: जी।
1: अच्छा, मन और शरीर कैसे काम करते हैं इसकी भी चर्चा

0: जी जी
1: तो योग जो है वो दुख के संयोग का वियोग कराता है, गीता में भगवान ने कहा।
0: जी जी।
1: और ये तभी होगा जब दुख का संयोग जिन कारणों यानी जिन कर्मों से हो रहा है उन कर्मों को उपयोग के द्वारा लौकिक वैदिक फल की भी सिद्धि होती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं आप कि जो साक्षी चेतना है उसमें जिस तरह के विषय की अनुभूति होगी उसी तरह के विषय के अनुसार जो है मन में विचार आएगा और उसी विचार के अनुसार कर्मेंद्रियां कर्म करेंगी। ऐसा कहा भी है इन्होंने कि मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों के द्वारा, लेकिन आपके जीवन में बुरा हो या आप नहीं चाह रहे हो, आप चाह रहे हो जीवन में अच्छा हो लेकिन मैं कुछ अच्छा न करूं ये नहीं संभव हो सकता। तो इसलिए बार बार यहाँ पर वशिष्ठ जी इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों को सजग कर रहे हैं कि आप अपने प्रयत्न को करें और प्रयत्न के द्वारा जो है आप संसार में जो कामना चाहते हैं उसकी। कह रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हैं और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य दैत्यराजों के गुरु बने हैं।
0: अच्छा।
1: तो बिना पुरुषार्थ के इस संसार में अगर कोई किसी प्रकार के फल की कामना करता है तो ये निहायत ही बेमानी होगी और ये कभी भी संभव नहीं है। आपको बिना पुरुषार्थ के आप चाहें कि मनचाहा परिणाम पालें, ये शास्त्रों के अभ्यास और गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न से जो है पुरुषार्थ की सिद्धि की जा सकती है और यही जो है संसार में समस्त शास्त्रों का सार संग्रह है कि कल्याणकामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाए। यही सारे शास्त्र भटकाव की स्थिति है जहां आपको लगता है कि ऐसा करके। और एक बात और देखिए कि अगर हम निरपेक्ष होकर के अपना आत्मन्वेषण करें तो आपको लगेगा कि आपसे बेहतर आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता।
0: बिल्कुल ये सच है।
1: लेकिन हम हमेशा दूसरों से अपनी पुष्टि चाहते हैं या दूसरे हमको नया नया चीज बताने पाना चाहता। आप देखें जगत में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए इसकी लंबी लिस्ट लेके लोग बैठे हैं कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। लेकिन अगर उनसे पूछ दिया जाए कि जो आप चाह रहे हैं उसमें आपका योगदान क्या है तो शायद वो मौन हो जाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के बदलते हैं तो दुनिया में बदलाव की संभावना होती है। जितने भी महापुरुषों की कहानी है वो कभी भी आप देखिए तो दुनिया में क्या हो रहा है इसको बदलने के लिए नहीं, सबसे पहले वो बदलाव उन्होंने खुद में किया है।
0: बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि अगर आप दुनिया को बदलने चले तो आप हमेशा परेशान।
1: जब मिलेंगे तो आपके अंदर जो होगा अशुभ कर्म से आप अपने चित्त को हटाएंगे और शुभ कर्म में अपने चित्त को लगाएंगे तो फिर ऐसे में परिणाम तो फिर शुभ होगा ही होगा। तो इसके लिए ये तीनों की जरूरत है। गुरु का मतलब यहां ये भी ध्यान रखें।

0: रोज रज निज मन मुकुर सुधार, कि मेरे मन के दर्पण को गुरु के चरण धूल से साफ किया जाए। अब आप सोचिए कि आप दर्पण की धूल साफ करते हैं, वो कहते हैं कि गुरु के चरण की धूल से, क्योंकि वो सदचिंतन करता है, सदव्यवहार करता है, और संसार के लोग हो सकता है सद की बात करते हों, सदविचार तो करते हों, लेकिन सदकर्म नहीं करते हों, तो गुरु सदकर्मी होता है, इसीलिए वो प्रेरक है। और अपने यहाँ तो वैदिक परंपरा में कहते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, क्योंकि बच्चे में देवत्व का जो विकास। आचार्य में भी देवत्व होना चाहिए, आचार्य देवो भव, तब वो दैवी गुणों से संपन्न होगा, और दैवी गुणों से संपन्न होकर के ही वो शुभ कर्म का कर्ता बनेगा। शुभ कर्म का कर्ता बनेगा तो शुभ फल की प्राप्ति भी करेगा, जीवन में संतोष भी होगा, शांति भी होगी। किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो आपके अंदर पहले तो देवत्व का खुद विकास होना चाहिए। आप सामान्य जीवन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने एक जीवन को जन्म दिया, अब वो जीवन किन पद चिन्हों पर चलेगा और उस पर चल करके सुरक्षित पल्लवित और पुष्पित होगा, वो पद चिन्ह तो आप ही के द्वारा निर्धारित करने।
1: और अक्सर मातृ देवो भव पितृ देवो भव को जिस अर्थ मिल जी। अच्छा, तो आपने सत्कर्म सद्बुद्धि की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो सद्बुद्धि है वो विकसित कैसे होती है।
0: सद्बुद्धि विकसित होती है सदशास्त्रों और सत्संग के सेवन से। बिना इसके जो है आप सद्बुद्धि के साथ नहीं हो सकते, दुर्बुद्धि आपकी होगी, क्योंकि विषय जो है वो हमेशा आपके इंद्रियों को अपने वश में केन केन प्रकारेण उन विषयों की प्राप्ति में लग जाएंगे। सद्बुद्धि जो है आपको विवेक देगी, विवेक के द्वारा आप सद का चिंतन करेंगे और सत्संग कर पाएंगे। सत्संग का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि बैठ के सद चर्चा सुने, ये नहीं है। शब्द देखिए, शब्द ये कह रहा सत्संग, संग कि सत का संग करो, यानी सत
1: के बहुत से प्रश्न थे जो उन्होंने अपने गुरु के समक्ष रखे और जिसका निराकरण वो कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने भी श्री राम के सम्मुख कुछ प्रश्न रखे हैं, इस पर अगर चर्चा हो तो।
0: अच्छा, बिल्कुल जी। वशिष्ठ जी राम से कहते हैं कि श्री राम बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर पराक्रमी बुद्धिमान वो क्या दैववश हैं। आप देखिए प्रेरक प्रसंगों में कैसे कैसे लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी आपदाएं आती हैं कि लगता है जीवन यहीं समाप्त हो गया, लेकिन वहां उस जगह पर वो ऐसा संकल्प लेते हैं कि पूरी दुनिया उनको देखने की तरफ उत्सुक हो जाती है और वहां पर वो इतिहास रच देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मन का संकल्प
1: जी।
0: तो ऐसे में वो कहते हैं कि बताओ कौन दैव की प्रतीक्षा किए हैं। इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष के प्रभाव से ब्रह्मणत्व प्राप्त किया। जो विश्वामित्र आपको लेने आए हैं, ये अपने पौरुष से जो ब्रह्मर्षि बने हैं, राजर्षि से ब्रह्मर्षि का इन्होंने यात्रा की है, ये पौरुष का परिणाम है। क्रमी है, बुद्धिमान है, पंडित है, वो दैव की प्रतीक्षा में रह करके अपने उन गुणों को विकसित किया है। वो जो कुछ भी किया है वो प्रयत्न से सिद्ध किया है, यानी क्रियमाण जो आपका वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ से उसकी सिद्धि हुई है, इसलिए पुरुषार्थ ही करने योग्य है। और दैव का जो है सहारा लेना मेरा पुरुषार्थ है, न कि कोई ऐसी घटना जो अनायास घटी।
1: अनायास घटी है, बिल्कुल। तो वशिष्ठ जी ने ये प्रश्न श्री राम के समक्ष रखा और उसके बाद फिर वशिष्ठ जी के समक्ष श्री राम ने एक जिज्ञासा रखी कि दैव क्या है, जो लोक में प्रचलित है, तो इसे समझाइए कि वशिष्ठ जी ने कहा क्या।
0: श्री राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से कि भगवान आपका है, वह दैव क्या है, किसे कहते हैं दैव। ये राम जी कहते हैं, क्योंकि लोक में तो राम जी भी देख रहे हैं ना कि दैव भरोसे लोग बैठे हुए हैं। और आपने सुना होगा रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी कहते हैं दैव दैव आलसी पुकारा, जब विनय कर रहे हैं राम जी, तो ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि ये लोक प्रचलन में तो है, तो इसको बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, अवश्यंभावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ अशुभ भोग है उसी को दैव शब्द कहा जाता है। अब देखिए कितना सुंदर कहा कि पुरुषार्थ के द्वारा किए हुए कर्म का जो फल भोग है अधीन है, दैवाधीन कर्म नहीं है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कर्म के अधीन जो फल है उसको हम दैव कहते हैं, ये वशिष्ठ जी कहते हैं उसी को दैव कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है उसी को दैव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध
1: धन है। तो मन में एक सहज प्रश्न आता है कि मनुष्य के कर्म का निर्धारण कौन करता है।
0: क्या बात है। वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम, मनुष्य के मन में जो पहले से अनेक प्रकार की वासनाएं थी वे ही इस समय कायिक वाचिक और कर्म रूप में परिणत हुई है। मन की जो वासनाएं हैं वही आप वासना

0: वासनाएं होती हैं, शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जन्म मरण का जो चक्र है वो भी मन की वासनाओं की वजह से है, तृष्णा की वजह से है कि मन में तृष्णा रह जाती है, इस नाते उस भोग के लिए फिर आपको एक शरीर धारण करना पड़ता है। अगर तृष्णा शांत कर दी जाए तो फिर जन्म मरण का जो भावरोग जिसको आप पूछा था तो वो भावरोग से मुक्ति मिल जाए। या विभिन्न संज्ञाओं के द्वारा कहा गया है मन को चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की ही संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है।
1: चित्त वासना
0: कर्म दैव और निश्चय, ये सब मन की ही संज्ञाएं, इसको व्यक्ति कठिनता से समझता है लेकिन है ये सत्पुरुष कहते हैं ये सब मन के ही विभिन्न नाम हैं क्योंकि ये सब मन में ही उत्पन्न होते हैं। निश्चय भी आप मन से करते हैं, कर्म भी बिना मन के नहीं होता, दैव जो कह रहे हैं आप फल, वो फल भी किसी कर्म का ही परिणाम है तो वो भी मन का ही हिस्सा है। चित्त में जो साक्षी है, चेतना है, उस चेतना के अनुसार शरीर कर्म करता है। तो ऐसे में मन और शरीर का दोनों का गहरा संबंध है, तो शरीर के द्वारा जो कर्म होता है या चित्त में जो वासनाएं हैं वो सब कहीं ना कहीं मन की ही संज्ञाएं हैं, उसको एक रूप में मन का नाम दिया जा सकता है।
1: अच्छा, अभी हमने बात की कि कर्म का निर्धारण वासना से होता है।
0: 12, शुभ कर्म की तरफ लगाए और अशुभ मार्ग से हटाए। तो वासना का जो बहाव है वो देखें तो वो शुभ और अशुभ, इसलिए देख सकते हैं वासनाएं दो प्रकार की मानी गई हैं, शुभ वासना और अशुभ वासना। अब ये दोनों किसी न किसी फल की वासना में हमेशा फल की कामना होगी क्योंकि फल तो रहेगा ही, तभी तो शुभ कर्म की पूर्ति होगी। तो ऐसे में जो ये दोनों बहाव है, वासनाएं इसी रूप में बहती हैं, शुभ और अशुभ, नदी जैसे बहाव है, दो पार्ट हैं उसके। ठीक है,
1: और जिस वासना के हम अधीन हुए उस तरह का हमारा कर्म हो जाता है
0: या उस तरह का कर्म करके हम उस फल को प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो कहते हैं कि ऐसे में जो विवेकवान लोग हैं के द्वारा ये सिद्ध होगा, आप सोचें कि अपने आप हो जाएगा, दैव भरोसे बैठने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप पुरुषोचित कर्म करेंगे तब जाकर के इसकी सिद्धि होगी।
1: अच्छा, इसमें चित्त के विषय में भी चर्चा है आगे, तो मैं चाहती हूँ ये बताएं आप कि मनुष्य का चित्त कैसा होता है, क्या बताया गया है।
0: वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य का चित्त है वो शिशु के समान चंचल है, उसे अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में जाता है, इसलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य मार्ग में लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मन शांत बैठेगा, एक संत है वो कहते हैं तो ऐसे में मन जो है हमेशा प्रवाह में रहेगा।
1: तो एक तरह से बच्चों की तरह उसकी प्रकृति है और उसको उस तरह से हमें समझना चाहिए। तो शशिकांत जी, आज बहुत ही अच्छी चर्चा रही, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए और इतनी सुंदर व्याख्या की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
0: नमस्कार।
1: आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, दानी का समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: श्रोताओ, भारत केवल विविधताओं और समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, ज्ञान, साहस और कर्मठता से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन।
1: भारत की प्रतिभा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं, नैतिक पहचान को और मजबूत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से समाज के यथार्थ को आवाज दी और लता मंगेशकर ने अपनी स्वर साधना से भारतीय संगीत को विश्व भर में पहचान दिलाई।
0: और जब बात आधुनिक भारत की प्रतिभाओं की होती है तो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, खिलाड़ियों, कलाकारों और युवाओं की उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सफलता हो, ओलंपिक में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हो या विश्व मंच पर भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां, हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा अपनी चमक बिखेर रही है।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
0: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो।

0: हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाए, क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वह खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: स्वागत है आपका ज्ञान, जिज्ञासा और खोज की उस दुनिया में जहां हर सवाल एक नई संभावना को जन्म देता है, जहां एक छोटा सा प्रयोग भविष्य की बड़ी खोज बन सकता है और जहां युवा मस्तिष्क अपनी सोच और प्रतिभा से दुनिया को चौंका सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति समर्पित है भारत के उन युवा वैज्ञानिक मस्तिष्कों को जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और परिणाम आया तो 5 के गले में सजा स्वर्ण पदक। यह उपलब्धि केवल 5 विद्यार्थियों की सफलता नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक सोच, हमारे शिक्षकों की मेहनत और हमारी युवा प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है और यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण भी है।
1: श्रोताओं, ये कहानी उस भारत की है जो सदियों से ज्ञान की धरती रहा है, जिसने दुनिया को शून्य का रहस्य समझाया है, जिसने विज्ञान, गणित और दर्शन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिस धरती पर आर्यभट्ट ने आकाश को समझने का प्रयास किया, जिस भारत ने सीवी रमन की खोज से प्रकाश की दुनिया में नई रोशनी पैदा की और आज उसी भारत की युवा प्रतिभा ने भौतिकी के विश्व मंच पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया है।
0: किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों में नहीं होती, बल्कि उन युवा मस्तिष्कों में होती है जो ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में उस देश का भविष्य लिखते हैं। श्रोताओं, ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है।
1: 5 युवा, 5 प्रतिभाएं और 5 स्वर्ण पदक। जी हाँ श्रोताओं, आज भारत ऐसे ही 5 युवा मस्तिष्क पर गर्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ 5 पदकों की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्रतिभा की, परिश्रम की, ज्ञान की और उस भारत की जिसकी युवा शक्ति भविष्य के नए अध्याय लिख रही है।
0: ये उन 5 युवा सितारों की कहानी है जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर अपने ज्ञान से रोशन किया भारत का नाम, भारत का मान और भारत का तिरंगा। आज विज्ञान पत्रिका में जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, कितनी कठिन होती है इसकी परीक्षा, कैसे चुने जाते हैं भारत के ये युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी और आखिर कैसे भारत ने विज्ञान के इस विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खुलने जा रहा है विज्ञान की दुनिया का एक नया पन्ना।
1: आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है IPHO। इसकी स्थापना 1967 में पोलैंड के वार्सो में हुई थी। IPHO का आयोजन प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में किया जाता है, जिसमें 5 महाद्वीपों के 80 से अधिक देशों के प्रतिभाशाली युवा भौतिकी विज्ञानी भाग लेते हैं। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए भौतिकी विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता, इसे आप भौतिक भी कह सकते हैं। इसका मुद्दा के प्रयोगों, विश्लेषणात्मक और आयोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर रखना है।
0: बस सिर्फ अभिषेक का नाम नहीं, ये उस जैसा काम है। पूछती है यह जैसे करते आकाश में क्यों चलते हैं, आकाश की गति कैसी है, पदांतर छिप रहा है और जब इन सवालों की तरह दुनिया के श्रेष्ठ युवा विद्यार्थी एक मंच पर आते हैं तो भारत भी अपनी प्रतिभा के साथ वहाँ मौजूद होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के विश्व मंच पर भारत के 5 युवा विद्यार्थियों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। लेकिन श्रोताओं, यह उपलब्धि केवल 5 पदकों की कहानी नहीं है, यह उस वैज्ञानिक भारत की कहानी है वर्षों से अपने जिज्ञासा तर्क और खोज की भावित किया है।
1: कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO एक वैश्विक ओलंपियाड है जो प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। IPHO का उद्देश्य जटिल समस्या समाधान प्रायोगिक मूल्यांकन के माध्यमिक भौतिकी का आकलन करना है। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण करने
0: प्रत्येक छात्र होती है या उच्च शिक्षा को प्रेरित उद्देश्य किया गया भौतिकी शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता है।
1: शिक्षा प्राप्त कर छात्रों ने माध्यमिक पूरी भाग सकते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा शुरू न की हो। राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपिक के लिए हड़ताल करना अनिवार्य है। PHO कार्यक्रम विशेष रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों यानी कक्षा 11 और बाहर के
0: छात्रों के वस्तु प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा कक्षा 12 के भौतिकी पाठ्यक्रम को कवर करती है। IPHO में भाग लेने के पात्र हो जाते हैं। अभिविन्यास सह चयन शिविर OCSA भारतीय राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड से लगभग शीर्ष 35 छात्रों को अभिविन्यास सह चयन शिविर के लिए चुना जाता है। HBCSE छात्रों को उनकी अवधारणाओं, प्रायोगिक ज्ञान, समस्या समाधान और कौशल पर काम करने के लिए इस शिविर का आयोजन है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी यानी PHO के लिए प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण शिविर छात्रों को भौतिकी की अवधारणाओं पर प्रशिक्षित करता है और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भागीदारी अंतिम चरण IPHO या अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड है जिसमें सभी प्रतिभागी देशों के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। IPHO परीक्षा 2 और सैद्धांतिक परीक्षा
1: विद्यालय स्तर भौतिकी चैंपियन है। इसका संस्करण 5 से 8 जुलाई 2026 कोलंबी बुकार शहर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 85,381 छात्र शामिल हुए। ये अपने देश के सर्वश्रेष्ठ भौतिक विद्यार्थी थे।
0: भारत ने कोलंबिया के बुकारा मंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन किया जिसमें उसकी टीम के सभी 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीत। देश ने पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल किया।
1: श्रोताओं, ये उपलब्धि एक ऐसी प्रतियोगिता में हासिल हुई जिसमें 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया था जो विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती ताकत और राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिता है। मौका जब इस ओलंपियाड वैश्विक मंच पर पूरी टीम ने एक साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले 2018 में भारत ने ये कमाल किया था।
0: स्वर्ण पदक जीतने वाले 5 भारतीय छात्र इंदौर मध्य प्रदेश से, नई दिल्ली गग, मुंबई महाराष्ट्र से हरित जोशी, अहमदाबाद रिद्धेश श्रेष्ठ और सभी को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। आशा है कि इसके अधिक से लोग आपकी इस ऐतिहासिक सफलता को जानेंगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे।
1: JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करने वाले और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटी आईआईटी के लिए कनिष्क बेहतरीन अनुभव बताया। कनिष्क के अनुसार कोटा में जो अकादमिक सपोर्ट ने मिला वो सर्वश्रेष्ठ था। फाइनल में आपके हवा पढ़ाई
0: कोचिंग अब तक प्रति कुल 88 और एक ब्रॉन्ज मेडल शामिल।
1: 4 चरण मिली फलता में हम आगे बात करें तो इस मुकद पहुंचने के लिए को कठिन प्रक्रिया गुजरता है। पहले चरण में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स ओरसेट NSEP परीक्षा में कोटा 130 चुने गए। इसके बाद होमी बस और साइंस एजुकेशन दूसरे चरण में 20 छात्रों ने अगले दौर में जगह बनाई।
0: तीसरे चरण के ओरिएंटेशन सिलेक्शन कैंप के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय चयन किया गया में 4 छात्र कोचिंग। अगले चरण में कोलंबिया के बुकारा मा में आयोजित फाइनल मुकाबले में 87 देशों के 381 दिग्गजों के बीच भारतीय टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर तिरंगा लहराया।
1: इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत का प्रभावशाली रिकॉर्ड और भी मजबूत हुआ है जिसमें पिछले एक दशक में प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम पर जगह बनाई है। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञात प्रश्नों को तेजी से हल करना सिखाते हैं, जबकि ओलंपियाड में ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वहाँ पहले गहरी समझ, वैज्ञानिक सोच, समस्या समाधान की क्षमता काम आती है।
0: और यह लेवल 5 की नई उन शिक्षण संस्थान की जिन्होंने बच्चों को HCSE के अनुसार भारत के लगभग 64% ओलंपियाड पदक विजेता आगे चलकर PhD करते हैं, लेकिन लगभग 32% ही भारत में स्थायी रूप से कार्य करते हैं। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि को पहचान और उन्हें हम लेकिन उन्हें देश में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। IPHO का सिलेबस केवल 12वीं तक सीमित नहीं है, इसमें स्नातक स्तर के ये टॉपिक शामिल हैं: यांत्रिकी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, विद्युत और चुंबकत्व में ट्रांजिएंट्स, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकीय भौतिकी, प्रकाशिक तरंगे और आधुनिक भौतिकी के बेसिक्स।
1: ये सफलता देश के राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम की मजबूती को दर्शाती है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है। HBCSE ओलंपियाड कार्यक्रम के लिए भारत के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है और एक कठोर बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया, ओरिएंटेशन कैंप और गहन कोचिंग के माध्यम से विज्ञान और गणित में प्रतिभाशाली पूर्व विश्वविद्यालय छात्रों की पहचान, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, हमारे युवा भौतिकविदों की ये अभूतपूर्व उपलब्धि राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।
0: उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 स्वर्ण पदक जीतना और संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त करना भारत के छात्रों की प्रतिभा, समर्पण और वैज्ञानिक सोच के साथ HBCSE TIFR ओलंपियाड कार्यक्रम के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने छात्रों के अभिभावकों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता कई और युवाओं को विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी और वैज्ञानिक शिक्षा और नवाचार में भारत की स्थिति भी मजबूत करेगी। DAE ने भारतीय टीम के नेताओं HBCSE TIFR के प्रोफेसर अन्वेश मजुमदार और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की डॉक्टर लीना जोशी, वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों IISER कोलकाता के प्रोफेसर आनंद दास गुप्ता और गोगेट जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरी की निशा केलकर के साथ वैश्विक प्रतियोगिता के लिए टीम तैयार करने के लिए HBCSE में फिजिक्स ओलंपियाड मेंटर पूल को भी बधाई दी।
1: HBCSE के निदेशक प्रोफेसर अर्णब भट्टाचार्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भारत की निरंतर सफलता दशकों से जारी निरंतर मार्गदर्शन, संस्थागत सहयोग और शिक्षकों एवं छात्रों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को वैश्विक पहचान दिलाने में DAE के वर्षों के निरंतर समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में मिली सफलता विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी और वैज्ञानिक प्रतिभाओं के पोषण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश के भविष्य के नेतृत्व के लिए मजबूत नींव बनाने के प्रति DAE की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
0: JEE जैसी परीक्षाएं विद्यार्थियों को कठिन प्रश्नों को कम समय में हल करना सिखाती हैं, लेकिन ओलंपियाड में दुनिया कुछ अलग ही है। यहाँ प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसे आपने जीवन में पहली बार देखा हो। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, यहाँ सिर्फ याददाश्त नहीं जिज्ञासा काम करती है, सिर्फ सूत्र नहीं सोच काम करती है, सिर्फ अभ्यास नहीं नई समस्या को समझने की क्षमता काम करती है। और यही कारण है कि इन 5 युवाओं की उपलब्धि इतनी विशेष है।

0: इन युवा प्रतिभाओं ने ये साबित किया है कि भारत की प्रयोगशालाओं, विद्यालयों और कक्षाओं में बैठी प्रतिभा को यदि सही अवसर मिले तो वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकती है। तो आइए आज इन 5 युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को दिल से सलाम करें, उनके माता पिता को बधाई दें, उनके शिक्षकों को नमन करें, उनके प्रशिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों का अभिनंदन करें और अपने देश के हर उस बच्चे से कहें, सपने बड़े रखो, सवाल पूछो, जिज्ञासु बनो और सीखने से कभी मत रुको, क्योंकि अगला स्वर्ण पदक, अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज और भारत का अगला विश्व स्तरीय वैज्ञानिक शायद आपके बीच ही बैठा हो।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।
0: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वो खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: आप सुन रहे थे भारत के 5 युवा भौतिकी सितारों की ये स्वर्णिम गाथा। भारत की प्रतिभा को सलाम, जय हिंद। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन विजयकांत नायक और
0: मनीषा चतुर्वेदी,
1: लेखन विनीता जैन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका। भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय युवा वैज्ञानिक पर हमारा विशेष कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निर्देशन एवं नृत्य संयोजन सुश्री संगीता शर्मा का है। सहायक दल साहिल श्रीवास्तव।

होने से महापापों का विनाश होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इन पंच कन्याओं को ब्रह्मांड के कभी दूषित ना होने वाले पांच तत्वों का प्रतीक माना जाता है। अहल्या से अभिप्राय पृथ्वी उसी की तरह सहनशील और राख में रहकर भी तपस्या से चमकने वाली। द्रौपदी से अभिप्राय अग्नि यज्ञ वेदी से जन्मी और अग्नि की तरह पवित्र और तेजस्वी। कुंती से अभिप्राय वायु जीवन भर बिना किसी ठहराव के संघर्षों के थपेड़ों को सहने वाली। तारा से अभिप्राय आकाश आकाश के तारों की तरह विशाल बुद्धि और सूझबूझ की स्वामिनी। मंदोदरी से अभिप्राय जल रावण के पाप रूपी मरुस्थल में जल की तरह शांत और शुद्ध रहने वाली। जैसे पानी में मिट्टी मिलने पर भी पानी का मूल स्वभाव शुद्ध रहता है, वैसे ही इन पांचों महानारियों का चरित्र सांसारिक कष्टों के बीच भी सदा निर्मल रहा है। तो आइए आज देखते हैं इन्हीं पंच कन्याओं में से एक रावण के पाप रूपी मरुस्थल में भी जल की तरह शांत और शुद्ध रहने वाली महारानी मंदोदरी की कथा।

0: आपकी पुत्री अत्यंत रूपवती और सद्गुणी है, और क्यों ना हो अप्सरा हेमा की पुत्री जो है।
1: मैंने निर्णय कर लिया है, मैं इसी से विवाह करूंगा। शीघ्र व्यवस्था कीजिए।
2: विवाह प्रस्ताव का तुम्हारा ढंग अहंकार से भरा हुआ है। मैं इस प्रस्ताव को नहीं मान सकता।
1: विवाह की तैयारी जब हो जाए तो विधि विधान से हमें आमंत्रित करिए।
3: पिताश्री, आप दुविधा में ना पड़े। मैं लंकापति दशानन से विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। वो भी शिव के परम भक्त है, महाज्ञानी, महायोद्धा है, एक बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी भी है। संभवतः वही मेरे सपनों के स्वामी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजाद हिंद।
1: नमस्कार मित्रों, आजाद हिंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन। आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूं इतिहास।
2: और मैं हूं तारीख। मेरा भी नमस्कार आप सभी आजाद हिंद के श्रोताओं को। इतिहास
1: जी,
2: मेरी तो एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल होता है
1: कि आज कौन सी शौर्य गाथा है।
2: जी बिल्कुल, है ना? बताइए ना
1: जी। आज फिर बारी है बंगाल के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बंगाल और बंगाल के क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान है, ये तो आप और हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, पुलिन बिहारी दास और मास्टरदा, ऐसे कितने और भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान से देश को आजादी दिलाई।
2: इतिहास
1: जी,
2: अभी भी आपने नहीं बताया कि वो कौन से क्रांतिवीर हैं जो हमारी
1: रॉय

0: तरह मिदनापुर भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का शिकार था।
1: मिदनापुर में उन दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे।
0: हुकूमत के अत्याचारों का शिकार

0: और गोली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हालत इसके बाद भी लगातार बिगड़ती गई और 8 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का जो प्रण किया था उसकी पहली कड़ी में वे सफल रहे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अधिकारियों के आगे वो झुके नहीं। जेम्स पेड्डी की जगह एक और अंग्रेज को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका नाम था रॉबर्ट डगलस।
0: रॉबर्ट डगलस ने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट इंतजाम भी किए, लेकिन क्रांतिकारियों के इन धमकियों से सरकारी कामकाज रोका तो नहीं जा सकता था। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी।

0: श्री डगलस इस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। मजिस्ट्रेट डगलस फाइल के कागजातों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे। इतने में दो नौजवान डगलस के कमरे में घुसे। दोनों ने एक साथ डगलस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक आठ गोलियां डगलस के शरीर में समा गईं।
1: गोलियां चलाकर दोनों नौजवान

और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी का नाम था प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। उसकी तलाश हिजली जेल में कैदियों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों का

0: हल्का प्रतिरोध है हमारे बलिदानों से। अंग्रेज सरकार को यह सबक लेना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जाग जाना चाहिए।
1: हिजली जेल में कैदियों पर 16 सीढ़ियों से प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें

0: मारी गई। इसी घटना के बारे में प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा था। जो उनकी जेब से बरामद किया गया था।
1: घायल डगलस को अस्पताल ले जाया गया। प्रद्योत भट्टाचार्य को पुलिस ने बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया।
0: प्रद्योत भट्टाचार्य पर विशेष अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा
1: जी बर्क को मिदनापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। पिछले दो अधिकारियों की हत्या से नए अधिकारी बर्क घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के और भी कड़े इंतजाम किए थे।
0: 2 सितंबर 1933 को के अंगरक्षक भी उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बर्ग मैदान में उतरे और खेलने लगे। जिस खिलाड़ी से गेंद छीनने के लिए वे आगे बढ़े, उस खिलाड़ी ने

0: अनाथ बंधु पांजा। 6 गोलियां खाकर
1: और बर के अंगरक्षकों ने उस पर गोली चला दी। क्रांतिकारी मृगेंद्र नीचे गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पांजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मृगेंद्र
1: चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय थे।
0: इन तीनों पर मुकदमा चला। और उन्हें फांसी किसको? मिदनापुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
1: अपने 3 अधिकारियों की मौत के बाद अंग्रेज सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों से आखिरकार हार माननी पड़ी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर एक और भारतीय को ही चुना गया।

0: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य। आप आयुर्वेद रत्न, नारी परीक्षण, स्वास्थ्य और प्रकृति की बेहतर समझ से दूसरों को भी स्वास्थ्य लाभ हेतु मार्गदर्शन देते हैं। आप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश शाखा के महासचिव थे। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में छात्र सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम आज आपसे यही सवाल करना चाहेंगे
1: दो शब्दों में विभाजित करने की कोशिश करें तो आयु और वैद्य
0: जी
1: दो चीज वेद तो वेद मतलब ज्ञान ज्ञान का भंडार जैसे अपने जानते हैं हम चार वेद उसी पे वेदांत की जहां तक हम बात करते हैं तो आयुर्वेद से अलग परे हटके भी भारत की संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि हम पंच
0: जी।
1: आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर तीन प्रकार के चीजों से मिश्रित है जिसको हम दोष के रूप में ऐसा ही एक कहा जाता है धातु जो शरीर की स्ट्रेंथ है विभिन्न रूप में शरीर में अलग अलग रस मज्जा मांस इत्यादि है जिसको हम धातु के रूप में परिभाषित करते हैं और तीसरा है मल जो विजाती तत्व टॉक्सिन शरीर इसको जीने के लिए हर प्रकार की चीजें जो प्रकृति में है जैसा कि मैंने बताया सब चीजों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है प्रकृति प्रभाव का आकलन इस प्रभाव का शरीर पे प्रभाव उससे होने वाली

0: जीवन जीने की कला ही आयुर्वेद है, लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कला विस्मृत हो रही है लोगों के दिलो दिमाग से। क्या कहना चाहेंगे?
1: से समकालीन आयुर्वेद का भी उद्भव है ऐसा माना जाता है, इसलिए जो अभी तक

0: जिसको हमने अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब कहा है, इन सब में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का उल्लेख आता है
1: जी।
0: तो प्रकृति के उद्भव से लेके आज तक आयुर्वेद है
1: जी।
0: और अगर कोई चीज इतनी पुरानी है, इतनी सनातन है, परंपराओं से चली आ रही है प्रकृति में, तो निश्चित तत्व से हम निर्मित हैं। तो उन पंच तत्व को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, चाहे वो मानवीय हो, चाहे वो वैज्ञानिक कारणों से विकास के कारण आ गए हो, या अन्य अन्य कारणों से नैसर्गिक रूप से कुछ ना कुछ चेंजेस होते, जोड़ में बहुत सारी चीजें मिली, जीवन के बहुत सारे प्रमाण मिले, तो उसको हम फुटप्रिंट के रूप में याद करते हैं
1: जी।
0: तो अभी मानव उत्पित फुटप्रिंट है एक पॉलिथीन, तो प्रकृति में जो तत्व था ही नहीं, मानव ने विकास के कारण, अपनी आवश्यकताओं के कारण, उसकी सहजता के लिए उसने एक चीज का इजाद प्रकृति में है, वो पानी को प्रभावित कर रही है, वो मिट्टी को प्रभावित कर रही है, वो सामान्य जन जीवन नहीं थी। हमने अपनी आवश्यकता के लिए उसको विकसित किया और वो टॉक्सिसिटी से भरपूर थी। अब वो पन्नी हमारे शरीर को प्रभावित करने वाली जब तक उसका अस्तित्व है
1: जी।
0: तो जीवन शैली में जो भी ऐसी चीज है जो विजाती है, जो टॉक्सिसिटी रखती है, वो मन उसके साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है, विकास समय की आवश्यकता है
1: बिल्कुल
0: उस

विकास को हम मनुष्य जो रिसर्च हमारी है, जो रिसर्च के हमारे सारे दुनिया जिसमें कर रही है काम, अगर वो प्रकृति के अनुकूल हो तो वो अपने आप मानव के लिए अनुकूल हो जाएगी, मनुष्य जीवन के लिए, इवन जितने भी जीवित जिनको हम कहते हैं, चाहे वो ये सब चलता रहेगा। इसके चलते चलते हम अपने स्वास्थ्य के लिए जितना मूल मंत्र है उसको समझना चाहिए। आयुर्वेद भी बस इतनी ही बात कहता है कि आपके शरीर में

0: जी
1: हर शरीर अपने हिसाब से कहता है कि मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे नमकीन खाना पसंद है, मुझे कड़वा अच्छा नहीं लगता है, मुझे और किसी प्रकार का रस अच्छा लगता है। तो जैसे मनुष्य की मानवीय
0: ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि अपने शरीर की रुचि को पहचानिए, लेकिन अभी जो एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि शक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए, मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए, और किसी को अगर मीठा अच्छा लग रहा है तो ये सबके लिए एक जैसी चीज जो सुनने में आ रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप?
1: प्रकृति ने आपको मीठे के नाम पे कुछ दिया था,
0: हाँ

0: मुक्ति के लिए, भरपूर फल ऐसे दिए थे, भरपूर सब्जियां ऐसी दी थी जिसमें नैसर्गिक मिठास होती
1: है।
0: लेकिन हम उससे एक कदम आगे गए। और जो कहते हैं ना, उपयोग के लिए कई सारी चीजों को विकसित कर लिए, यही आयुर्वेद और यही संतुलन सामंजस्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य, मनुष्य के स्वयं के शरीर के साथ सामंजस्य संतुलन
1: है, या ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं।
0: हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज के समय बहुत प्रासंगिक है
1: जी।
0: हमारे एक सबको समान रूप से सम्मिलित करके देखना। जब आयुर्वेद जब पहले आया था, जिस समय आयुर्वेद का उदय हुआ, जब मैंने बताया, तो प्रकृति के साथ साथ ही आयुर्वेद है, कुछ भी अलग नहीं था, ये सब एक ही ब्रांच से निकले हुए जैसे कि होता ही है, लोगों को अपनी एक ब्रांच पकड़ के उनको लगता है कि हम इसको अकेले लेके बढ़ने वाले, अकेले लेके प्राकृतिक चिकित्सा अलग हो गई, योग अलग हो गया। इवन दो प्राकृतिक चिकित्सा को देखने वाले लोगों ने कई बार, तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे आश्चर्य भी होता है, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन नेचुरात्मकता का अभाव था, जबकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा एक दूसरे के पूरक है। आयुर्वेद के बिना प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक अंग ही है, तो उसको अलग करके तो देखना ही नहीं चाहिए।
1: बिल्कुल
0: वैसा ही योग का है। जब मैंने पहले कहा कि जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की कला, ये आयुर्वेद बताता है, तो आयुर्वेद में चाहे

फास्ट फूड डेली के लिए तो नहीं था। आज आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं कई सारे मेट्रोज में जाता हूँ लेक्चर वेक्चर देने, तो यंग जनरेशन के लोगों से जब

0: नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, किचन लेस होम। मतलब घर में किचन की जरूरत नहीं है,
1: नहीं है।
0: तो फूड कहां से आ रहा है? पैक फूड। अब पैक्ड फूड में निश्चित रूप से उस खराब नहीं हो, बनाने वाले की चिंता ये होगी। तो कोई चीज खराब ना हो उसके लिए प्रिजर्वेटिव ही तो एक ही मात्र समाधान।

15 फरवरी सोमवार को स्वामी जी मद्रास से कलकत्ता जाने वाले जहाज पर चढ़े। कोलंबो से मद्रास तक लगातार व्याख्यान वार्तालाप साक्षात्कार आदि से वे बहुत थक गए थे।

लोकमान्य तिलक ने उनसे पूना आने के लिए बहुत अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था, परंतु प्रबल इच्छा होते हुए भी स्वामी जी ने पूना की यात्रा स्थगित रखी। कुछ दिन विश्राम की आशा से ही उन्होंने स्थल पथ छोड़कर जल पथ से कलकत्ते की यात्रा की।

0: की। वे मन ही मन सोच रहे थे,
1: हाँ बहुत थक गया हूं, इन अभिनंदन सभाओं और व्याख्यानों को अब थोड़े दिन के लिए विराम देना पड़ेगा। मैं हिमालय की गोद में विश्राम करना चाहता हूं।
2: स्वामी विवेकानंद के भारत लौटने का समाचार फैलने के समय से ही बंगाल प्रांत और विशेषकर कलकत्ता शहर बड़ी उत्सुकता से उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। उनके मद्रास से रवाना होने का समाचार पाकर नागरिकों की ओर से संयोजित स्वागत समिति अनेकानेक तैयारियां करने लगी।
0: स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ जब जहां स्पर से खिदीरपुर में उतरे तो उन्होंने देखा कि उन्हें सियालदह से ले जाने के लिए एक खास ट्रेन खड़ी है। वे उस ट्रेन पर सवार होकर सियालदह के प्लेटफॉर्म पर उतरे। सहस्त्र कंठों से जयकार गूंज उठी। जय श्री राम कृष्ण देव की जय, जय श्री विवेकानंद की जय।

0: स्वामी जी ने जनसमूह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बाबू नरेंद्रनाथ सेन तथा अभ्यर्थना समिति के प्रमुख सदस्यों ने मुश्किल से भीड़ को पार कर उनके सम्मुख उपस्थित हो सके उन्हें फूल मालाएं पहनाई। स्वामी जी सेवियर दंपत्ति के साथ चार घोड़े वाली गाड़ी पर सवार हुए। यहां भी युवकों ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी से घोड़ों को अलग कर खुद ही खींचने लगे। सुसज्जित तोरणों को पार कर गाड़ी रिपन कॉलेज में आ रुकी। थोड़ी देर तक भक्तों से मिलजुल कर बाग बाजार के पशुपतिनाथ बहादुर के घर अपने गुरु भाइयों के साथ भोजन किया। फिर शाम को काशीपुर के शील महोदय के मकान में आए। यहीं वे अपने साथियों के साथ ठहरे।
1: वहां दिन रात मिलने वालों का तांता लगा रहता। उसके बाद शुरू हुआ स्वागत समारोह का सिलसिला। अट्ठाईस फरवरी को शोभा बाजार के राजप्रसाद में जन समारोह हुआ। लगभग 5,000 लोग उपस्थित थे। स्वामी जी ने वहां जो भाषण दिया था, लोगों ने उसे मंत्रमुग्ध होकर सुना। उन्होंने देशवासियों को उद्बोधित किया। युवकों को पुकार कर कहा,
2: मैं तुम्हारे पास इन गरीब अज्ञ अत्याचार पीड़ितों के लिए सहानुभूति की मांग कर रहा हूं। इसी मुहूर्त में उस पार्थ सारथी के मंदिर में जाओ जो गोकुल में दीन दुखी गरीब गोपों के सखा थे, जिन्होंने अपने बुद्ध अवतार के रूप में राज पुरुषों के आमंत्रण को स्वीकृत कर एक वैश्या का निमंत्रण ग्रहण करके उसका उद्धार किया था। जाओ उनके पास जाकर साष्टांग प्रणाम करो और उनके सामने एक महान बलिदान दो। बलिदान जीवन का बलिदान, और वो उनके लिए जिनके लिए वे युग युग में अवतीर्ण होते हैं, जिनसे वे अत्यधिक प्यार करते हैं। दीन दुखी पतित उत्पीड़ितों के लिए तुम लोग समग्र जीवन भर इन 30 करोड़ भारतवासियों के उद्धार का व्रत ग्रहण करो जो दिन पर दिन डूब रहे हैं।
0: अपनी जन्मभूमि में खड़े होकर विवेकानंद ने कल्पना प्रिय और भावुक नाम से प्रचारित तथा उपहासित बंगाली युवकों से मातृभूमि के लिए महान बलिदान की प्रार्थना की।
2: वीर बनो, श्रद्धा संपन्न बनो,

तेज व वीर्य को जागृत कर महान उत्साह के साथ कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। इस कलकत्ता नगरी के राजपथ में एक साधारण बालक की तरह मैं भी खेलता हुआ घूमता फिरता था। इच्छा होती है आज इसी धूल में बैठकर तुम लोगों से मन की बातें खोलकर कहूं।

हे युवकों, मेरी भावना है कि युवकों के बीच में से ही वो शक्ति प्रकट होगी जो भारत को उसके योग्य अध्याय

0: जातीय चरित्र कभी गठित नहीं होता।
1: किसी महान आदर्श पुरुष के विशेष अनुरागी बनकर उनके झंडे के नीचे खड़े हुए बिना

व्यतीत कर रहे थे। अब वे स्वामी जी से संन्यास की दीक्षा ग्रहण करना चाहते थे। स्वामी जी उनके उत्साह को देख

0: यदि मैं घोर तमोगुण में डूबे हुए अपने स्वदेशवासियों को कर्म योग के द्वारा अनुप्राणित कर वास्तव मनुष्य की तरह अपने पैरों पर खड़ा कर देने में समर्थ हूं, तो मैं आनंद के साथ लाख बार नरक जाऊंगा। जो लोग अपनी भक्ति मुक्ति की कामना को छोड़ दरिद्र नारायण की सेवा में जीवन को उत्सर्गित करेंगे, मैं उन्हीं का चेला हूं, भृत्य हूं, कृत दास हूं।
1: कहते कहते स्वामी जी भावावेग में बह गए और थोड़ी देर बाद अपने आप को शांत कर उन्होंने कहा,
0: कर्म की कठिन श्रृंखला से मैंने

अपने को बांध कर रखा है, क्योंकि अभी भी जगत को मेरा जो संदेश देने को है वो समाप्त नहीं हुआ। इसलिए जब भी मैं देखता हूं कि भक्ति का प्रबल प्रवाह मुझे बहाकर ले जाना चाहता है, उसी समय उन भावों को संयत

अभी मुझे अनेक कर्म करने होंगे। मैं श्री रामकृष्ण का कीर्तिदास हूं। वे जो अपने कर्मों का भार मेरे कंधों पर

0: तब तक तो वे मुझे विश्राम न करने देंगे।
1: एक दिन वेदांत की चर्चा चलते समय गिरीश घोष ने स्वामी जी से पूछा,
2: अच्छा नरेन, वेद वेदांत तो अनेक पढ़े हो ना, भूखों का भोजन के लिए हाहाकार, निर्धन का दुख, लंपट आदि का विभत्स पाप, और भी कितने ही प्रकार के अन्याय कुविचार व दुख जो हम अक्सर देखते हैं, इनका कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद वेदांत में लिखा है? एक महाशय की घरवाली जो प्रतिदिन 50 व्यक्तियों को भोजन दिया करती थी, आज 3 दिन से अन्न के अभाव में बाल बच्चों सहित भूखी है। एक परिवार की महिलाएं बदमाशों के हाथों लांछित हुई, कोई कोई महिला तो उत्पीड़न होकर अंत में प्राण त्याग कर बैठी। एक घर की बाल विधवा कलंक से बचने के लिए भ्रूण हत्या करने जाकर आत्महत्या कर बैठी। नरेन, वेद वेदांत में क्या इसका कोई प्रतिकार है?
3: इस प्रकार गिरीश बाबू मर्मस्पर्शी भाषा में संसार के सभी दुख, अन्याय, अत्याचार की कहानियों का वर्णन करने लगे। उन करुण कहानियों को सुनकर आचार्य देव के दोनों बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भर आए। भाव के आयोग को रोकने में असमर्थ होकर वे विचलित हृदय से उसी समय उस स्थान को छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए।
1: थोड़ी देर बाद स्वामी जी लौट आए। स्वामी सदानंद को कमरे में प्रवेश करते देख उसी समय स्वामी जी ने उन्हें रोगी व दुखियों की सेवा के लिए एक सेवाश्रम की स्थापना करने का निर्देश दिया। सदानंद जी ने तन मन से चेष्टा करने का वचन देकर गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। स्वामी जी गिरीश बाबू को बोले,
0: देखो, इसी जगत के कष्टों को दूर करने के लिए, यहां तक कि एक व्यक्ति की वेदना को कम करने के लिए मैं सहस्त्र बार जन्म ग्रहण करने को तैयार हूं। अपनी मुक्ति मैं नहीं चाहता, प्रत्येक को
2: विशाल इसलिए समान नहीं देता कि वो पंडित व प्रतिभा रहती है, बल्कि उनके उस असीम उदार हृदय ही ज्ञान।
4: रहे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम लोकार्पण कर अधिदेश शासन विभाग स्वास्थ्य संचालन प्रस्तुत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आर दिशा।
1: रेडियो
2: चैनल
3: भट्टाचार्य
0: भट्टाचार्य।